आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
6: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
8: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
9: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
10: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456 या 9707-06-575।
11: श्रोता दोस्त, अभी बज गई बात सुबह के 6, आज 6 बजते ही राव रेडियो दोस्त दीपाली हाजिर पड़ी वो प्रोग्राम लेके जौन हाँ आपन दे आपन देखभाल। सबसे पहले स्वीकार करी आपन दोस्त दीपाली के स्नेह भरल भोजपुरिया नमस्कार। दोस्त लोग, रउआ तो जानत ही बानी कि ये प्रोग्राम में हम बतावेनी ढेर सारा हेल्थ टिप्स और ब्यूटी टिप्स। तो चलिए बिना देरी के लिए शुभ आरंभ कर लियो अपना कार्यक्रम के, जिसमें हम बताएं सबसे पहले असरकारी कुछ घरेलू उपचार। इसे जोड़ के दर्द में एक ग्लास गर्म पानी में नींबू निचोड़ के दिन में 8-10 बार पी, इसे जोड़ में आराम मिली। जोड़ पर नीम के तेल के हल्का मालिश करे पर आराम मिलेला। लौकी के गुद्दा तलवा पर मले से ओकर जलन शांत होला। कोनो भी भाग या हाथ पैर में जलन होके पर तरबूज के छिलका के सफेद भाग में कपूर और चंदन मिला के लेप करे से जलन शांत होला। घमौरी में सरसों के तेल में बराबर के पानी मिला के फेट ली व घमौरी पर लगाई, इसे शीघ्र आराम मिली। सिर दर्द होके पर गुनगुना पानी में अदरक व नींबू के रस व थोड़ा सा नमक मिला के पिए से आराम मिलेला। मच्छर की काली खांसी ठीक ना होके पर बांस के एक टुकड़ा के जला के ओ भस्म के शहद में मिला के 3-4 बार चाटे से बच्चा की खांसी 3 से 4 दिन में ठीक हो जाए। तो दोस्त लोग ई तरह असरकारी कुछ घरेलू नुस्खा, अब चलिए हम बता दें कुछ लाभकारी घरेलू नुस्खा। जख्म पर पड़ल कीड़ा के नाश करे खातिर हींग पाउडर बुरक दी। दाढ़ दर्द खातिर हींग रुई के फाहा में लपेट के दर्द की जगह रखी। शीत ज्वर में ककड़ी खा के छाछ सेवन करी। शराब के बेहोशी में ककड़ी सेवन कराई। अरहर के पत्ता के रस पिलावे से अफीम के नशा कम हो जाला। आधा छटाक अरहर दाल पानी में उबाल के ओकर पानी पिलावे से भांग के नशा कम हो जाला। अजवाइन के कुछ देर चबावे के बाद 1 कप गर्म पानी पी लेवे से पेट दर्द से छुटकारा मिल जाला। नींद ना आवे के बीमारी में ज्यादा मात्रा में दही खाई या 1 गिलास पानी में 2 छोटा चम्मच शहद मिला के पियल लाभप्रद होला। दाढ़ में दर्द होके तल लौंग के तेल लगावे से दर्द समाप्त होला। तेज सिर दर्द होके पर पिपरमेंट गर्म करके सिर पर लगावे से आराम मिलेला। हिचकी आवे पर तुलसी व शक्कर खाके पानी पिए से लाभ होला। मुंह में छाला होके पर नारियल खाए से छाला शीघ्र ठीक हो जाला। भूख ना लागत होके सौंफ के चूर्ण में शहद मिला के दिन में 2 बार 1-1 चम्मच खाएं। मसूड़ा फूल जाए पर सरसों के तेल में नमक मिला के आहिस्ता आहिस्ता मसूड़ा पर मसाज करे से तकलीफ खत्म हो जाला। बिना दूध व शक्कर के अदरक वाला चाय पिए से पेट दर्द ठीक होला। दोस्त लोग अब हम बतावे जात पानी कुछ आसान उपाय सेहत बनावे खातिर। खान पान के गड़बड़ आदत, कसरत ना कैल और तनाव के अलावा धूम्रपान एवं शराब पिए से रक्तचाप बढ़ल, उच्च कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह के खतरा युवा अवस्था में ही बढ़ रहल बा। जैसे दिल के दौरा पड़े के आशंका पैदा होला, रवा जीवन शैली में बदलाव लाके ये जोखिम के कम कर सकता नहीं। जैसे में अर्जुन के पेड़ के छाल भी धमनी में अवरोध दूर करे और रक्तचाप के नियंत्रित करे में काफी उपयोगी सिद्ध भइल बा। छाल के 2 तरह से लिहल जाला। एकर 5 ग्राम चूर्ण खाली पेट ली या 10 ग्राम के 250 ग्राम दूध और 250 ग्राम पानी में खाली पेट रोज सुबह ली। स्वाद खातिर मिश्री या खंड मिलावल जा सकेला। ये मिक्सचर में शहद ना मिलाई काहे कि इसमें सैचुरेटेड फैट होला। एक अन्य रसायन दिल के कमजोर करेला। अर्जुन के छाल से गर्मी निकलेला जबकि शक्कर से ठंडक आवेला। ये तरह दोनों के कोनो मेल नहीं थे। ये प्राकृतिक उपचार के अलावा सेहतमंद जीवन जिए खातिर नियमित परहेज से रहल, नियमित शारीरिक व्यायाम कैल और डॉक्टर के नियम पूर्वक जांच करावे के भी सलाह भी दिहल जाला। हमेशा याद याद रखें कि दिल के दौरा पड़ल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति होला। सीना में दर्द के शिकायत के अनदेखा ना करी और ना ही खुद से दवा उपचार ली, बल्कि हृदय के उपचार कोनो विशेषज्ञ के देखरेख में होके के चाहिए। तो दोस्तों चलिए अब जानल जाओ खुजली के घरेलू इलाज। त्वचा में खुजली चले, दाद हो जाए, फोड़ा फुंसी हो जाए पर खुजला खुजला के हाल बेहाल हो जाला और ये लोग के सामने शर्म भी आवेला। यदि रुआ कोनो क्रीम या दवा लगावे के नहीं चाहत या लगावे पर भी आराम नहीं के होत, तो घर पर ही ये चर्म रोग नाशक तेल बना के लगाई, इसे ये व्याधि दूर हो जाए। जैसे में तेल बनावे के विधि ई है कि नीम के छाल, चिरैता, हल्दी, लाल चंदन, हरड़, बहेड़ा, आंवला और अडूसा के पत्ता सबके समान मात्रा में ली। तिल्ली के तेल आवश्यक मात्रा में ये सब आठों द्रव के 5-6 घंटा तक पानी में भिंगा के निकाल ली और पीस के कल्क बना ली। पीठी से 4 गुना मात्रा में तिल के तेल और

0: सेहत के ख्याल रही खुशहाल, आजमाई ई सब अचूक नुस्खा के। आज सुनत रही रेडियो रंजन 90.4। नमस्कार।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करें 87-894-18744।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
9: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: नमस्कार, मैं हूँ जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा। शिव दानी है, शिव देना सिखाता है। अब आगे।
11: अरे ए, रुको रुको, मेरा नंदू पकड़ लिया।
12: ऐसे तुम्हारी बाइक लेने के लिए हम सॉरी बेटा, मैं कोई चोर नहीं हूँ। देखो तुम मुझे बाइक दे दो, मैं जल्द ही बहुत अमीर बनने वाला हूँ, तब मैं ऐसी ही बाइक खरीदूंगा तुम्हें, चाहे तो गाड़ी भी खरीदूंगा।
11: अरे अंकल, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ही नई बाइक खरीद लीजिए ना, मेरा नंदू तो एक ही है।
12: बेटा मुझे पैसों की जरूरत है।
11: ये आप क्या कह रहे हैं अंकल, अगर आप ऐसे ही बातें बदलते रहेंगे तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा।
12: नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाना बेटा, मैं समझता हूँ। यहाँ ये बेंच पे बैठो, बैठ के बात करते हैं।
11: एक मिनट, पहले मैं मेरी बाइक की चाबी ले लेता हूँ। ठीक है, आप सीधे पॉइंट पर आ जाइए।
12: अरे आ रहा हूँ आ रहा हूँ। सुनो, एक दिन मेरी बीवी बोली कि उसको अमीर बनने का तरीका पता चल गया है।
13: नमस्ते बाबा जी।
14: बम बम भोले, कहो क्या समस्या है आप लोगों की?
13: बाबा हमें अमीर बनना है।
15: राधा, वो बाबा जी, हमें बस अपनी सोसाइटी में इज्जत से रहना है और उसके लिए हमें पैसों की जरूरत है।
14: तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है कि धन लक्ष्मी ने तुमसे मुंह मोड़ लिया है।
13: मुझे पता था, तुम्हारे ही कारण हम मिडिल क्लास हैं। बाबा जी इसका कोई उपाय
14: है ना? उपाय है, आप शिव जी की पूजा पूरे मन से नहीं करते हैं, इसलिए धन लक्ष्मी आपसे नाराज है।
13: हम अब से ना पूरी श्रद्धा से पूजा करेंगे।
14: सिर्फ वो काफी नहीं है, पर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हमारा शिव मंदिर है यहीं पास में, हमने वो पूरा मंदिर सोने से बनाया है, और भाई हम कभी शिव जी को कोई कमी महसूस नहीं होने देते हैं। अगर आप उस मंदिर को सोने से बनी हुई शिव जी की मूर्ति दान करते हैं तो फिर आपके जितना अमीर तो और कोई नहीं होगा।
12: सोने की? पर
13: हाँ बाबा, हम सोने की मूर्ति का इंतजाम करेंगे। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। चलो चलो अभ्यास।
12: तुमने क्या सोच के हाँ कर दिया राधा, सोना कितना महंगा होता है भूल गई? कहाँ से लाएंगे इतने पैसे?
13: अरे हम अपनी सेविंग्स तोड़ देंगे, फिर तो मैनेज हो जाएगा ना।
12: सेविंग्स?
13: अरे उसके बाद तो अमीर बन जाएंगे, ये सेविंग्स का चक्कर ही खत्म, इस खटारा गाड़ी में भी घूमने की जरूरत नहीं होगी।
12: उसके बाद हमने अपने सेविंग्स तोड़कर शिवजी की मूर्ति बनाई, पर हम अमीर हुए ही नहीं। बाबा ने कहा कि शिवजी को वो मूर्ति पसंद नहीं आई, उन्हें बड़ी सी मूर्ति चाहिए। हमने अपनी गाड़ी भी बेच दी और राधा की खानदानी ज्वेलरी भी बेच के गोल्ड लोन ले लिया, पर 50,000 कम पड़ गए, और राधा हमारे सारे फ्रेंड्स को झूठ बोल चुकी थी कि हम अमीर लोग हैं, इसलिए उनसे मांग भी नहीं सकते थे ना। राधा मुझसे नाराज हो गई। मैं बस बाहर टहलने आया था जब तुम्हारी बाइक देखी, और सोचने लगा कि ये बाइक बेच के कितने पैसे आएंगे, फिर मैंने तुम्हारी बाइक
11: चोरी कर लिया।
12: हाँ बस 50,000 दे दो, फिर तो अमीर हो जाऊंगा ना, तो रिटर्न कर दूंगा।
11: अंकल आपको सच में लगता है कि शिवजी को सोने की मूर्ति चाहिए?

0: होगी जो कुछ शमशान में घूमते रहते हैं उन्हें क्यों कोई सोने का मंदिर पसंद आएगा।
1: बेटा पर वो शिवजी हैं, भगवान हैं, उन्हें हमारी भक्ति और प्यार दिखना चाहिए ना।
0: अंकल आपका प्यार और भक्ति शिवजी देखते ही रहते हैं क्योंकि वो हर जगह है, हर इंसान में है, हर हर महादेव। जब वो स्वयं देवी पार्वती का दिया हुआ सोने का नगर स्वीकार नहीं कर पाए तो आपकी मूर्ति या इंसानों का मंदिर कैसे स्वीकार करेंगे।
1: ये क्या कह रहे हो बेटा।
0: बताता हूँ। तो हुआ ये कि कैलाश में एक दिन देवी पार्वती कुछ सोच रही थी।
2: देवी पार्वती इतनी गंभीरता से किस विषय पर विचार कर रही हो।
3: प्रभु वो।
2: हाँ प्रिय कहो।
3: कभी कभी लगता है कि सभी देव सुंदर महलों में रहते हैं और देवाधिदेव शमशान में। इससे देवों की प्रतिष्ठा पर भी तो आ जाती होगी ना प्रभु।
2: प्रिय तुम भी ना, कहना क्या चाहती हो।
3: यही कि आपको भी महल में ही रहना चाहिए प्रभु।
2: ये कैसे संभव है प्रिय।
3: आपके लिए क्या संभव है महादेव, आपको तो महल में ही रहना चाहिए और आपका महल तो इंद्र के महल से भी विशाल और भव्य होना चाहिए। ऐसा महल जो तीनों लोकों में कहीं ना हो।
2: किंतु पार्वती।
3: किंतु परंतु कुछ नहीं महादेव, आप मेरी इतनी सी मनोकामना पूरी नहीं कर सकते।
2: ऐसा नहीं है प्रिय, तुम्हारे लिए मैं महल का निर्माण कर भी लूं तो मैं वहाँ कैसे रहूंगा। मैं ठहरा योगी, मुझे कहाँ महल में चैन पड़ेगा।
3: क्यों प्रभु, महल में रहने में क्या समस्या है आपको।
2: वहाँ रहने के बहुत नियम विधान होते हैं, मुझ जैसे अघौड़ों के लिए महल में रहना उचित नहीं है प्रिय। तुम क्यों हट कर रही हो।
3: हट ही सही प्रभु, आप शमशान और बर्फों पर नहीं, अब आप महल में ही रहेंगे।
2: बहुत हट्टी हो तुम पार्वती, तुम्हारे सामने मुझे हारना ही पड़ता है। ठीक है, देव शिल्पी विश्वकर्मा को बुलावा भेज दीजिए।
0: विश्वकर्मा जी ने खूबसूरत जगह खोजकर महल का निर्माण शुरू कर दिया।
3: हे महादेव, कितना सुंदर महल बनाया है विश्वकर्मा जी ने। देखिए प्रभु, ये महल चारों ओर से पानी से ढका है और वो देखिए कितने सुंदर तीन पहाड़ है सामने और वहाँ पर कितने सुंदर फूल और वनस्पतियाँ हैं। आपने तो मुझे प्रसन्न कर दिया विश्वकर्मा जी।
4: धन्यवाद देवी, मुझे प्रसन्नता है कि आपको ये महल पसंद आया।
3: विश्वकर्मा जी, आप मेरे आदेश पर तुरंत नगर निर्माण का कार्य आरंभ कीजिए।
4: माता, आपकी आज्ञा अनुसार ये नगरी अद्भुत नगरी होगी, स्वर्ण की नगरी।
3: अद्भुत। ऋषि विश्वकर्मा, इस महल के आचार्य के रूप में मैं आपको नियुक्त करती हूँ। आप गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाइए और सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित कीजिए।
1: अति सुंदर, कितना तेज है इस महल का।
5: प्रभु के महल का तेज भी उन्हीं की तरह है सुंदर।
2: इसमें कोई दो राय नहीं कि ये महल बहुत भव्य है, किंतु मुझ जैसे योगी का मन यहाँ कैसे लगेगा। देवी पार्वती तो मानने से रहीं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ये ठीक रहेगा। आचार्य विश्वकर्मा आइए, कहिए मैं आपको दक्षिणा के रूप में क्या दे सकता हूँ।
4: महादेव, मैं आपसे क्या मांगू, आप जो कुछ भी इच्छा पूर्वक देना चाहें दे दीजिए।
3: आप निसंकोच मांगिए, महादेव आपको आपकी इच्छा अनुसार दक्षिणा अवश्य प्रदान करेंगे।
4: यदि मैं महादेव से ये भव्य नगरी मांग लूं तो क्या मुझे वो दे देंगे। ये मैं क्या सोचने लगा।
2: हाँ आचार्य, आप अपनी इच्छा प्रकट कीजिए।
4: महादेव, अब कैसे कहूँ, साहस नहीं हो रहा, किंतु आप चाहते ही हैं कि मैं अपनी इच्छा प्रकट करूं, तो क्या आप दक्षिणा में मुझे ये भव्य नगरी, यही नगरी दे सकते हैं।
3: आचार्य।
2: शांत हो जाओ देवी, हमने ही आचार्य को उनकी इच्छा पूर्वक दक्षिणा मांगने का विचार दिया, तो क्यों नहीं विश्वकर्मा जी। जाइए, मेरे वचन अनुसार आज से ये नगरी लंकापुरी आपकी है, आयुष्मान भव।
3: किंतु प्रभु, आप ये कैसे कर सकते हैं? मैंने ये नगरी, ये महल केवल आपकी प्रतिष्ठा के लिए बनवाई थी, और अब आप दोबारा उसी जीवन शैली में जाना चाहते हैं? मैं आपको समझ नहीं पा रही हूँ महादेव।
2: प्रिय, तुम मुझे समझने में यही तो भूल कर देती हो। देवी, मैं ठहरा योगी, अघोरी। मैं सरल जीवन शैली ही व्यतीत करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा सामर्थ्य मुझे मुखस्थ जीवन शैली जीने के लिए अनुमति नहीं देता, किंतु मैं स्वयं सरलता का समर्थन करता हूँ। मोह माया के जाल में फंसने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये भव्य महल और जीवन शैली सब थोड़े समय के लिए ही रहता है। सुमिरन, ध्यान, योग और सरल जीवन मनुष्य को भी ईश्वर के निकट रहने में सहायता करता है।
0: ये कह के शिवजी ने देवी पार्वती की बनाई हुई सोने की लंकापुरी को ठुकरा दिया। जब शिवजी ने स्वयं देवी पार्वती का दिया हुआ नगर स्वीकार नहीं किया, तो आप तो इंसान हैं, उनके भक्त हैं, आपसे वो ये सब स्वीकार क्यों करेंगे?
1: तुम सही कह रहे हो बेटा, पर अगर सोने से भी वो खुश नहीं होंगे तो मैं अमीर कैसे बनूंगा?
0: अंकल, आप अब भी समझ नहीं रहे हैं। जब आपके शिव इस मोह माया से परे हो सकते हैं, तो उनके भक्त होकर आप क्यों नहीं? क्या आपको रोजी रोटी नहीं मिल रही है? क्या आपके सर पर कोई छत नहीं है या पहनने के लिए कपड़े नहीं है?
1: वो सब तो है।
0: शिव जी का तो ना खुद का कोई घर है और ना कपड़े हैं। वो भिक्षा मांगते हुए पूरे संसार में घूमते हैं, फिर भी वो आपसे ज्यादा खुश हैं, क्योंकि आप जितना भी कमा लें, अंत में आप अकेले ही रह जाएंगे, और शिवजी बस उन्हें अपने पास बुलाएंगे जो चाहत और लालच से ऊपर हो।
1: तुम सही कह रहे हो बेटा, मैं तो लालच में आकर जो है उसी को खो जाता। तुमने बचा लिया मुझे। मैं अभी घर जाकर राधा को भी समझाऊंगा, शिवजी की यही कहानी सुनाऊंगा और हमारे सारे फ्रेंड्स को सच बताऊंगा। थैंक यू नील, तुमने मेरी आंखें खोल दी।
0: अरे, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं। बस ऐसे दक्षिणा या भगवान के नाम पर जो गिफ्ट्स या पैसे मांगते हैं, उनसे सावधान रहिए। हाँ, और याद रखिए, कोई भी भगवान पैसे या कीमती चीजें नहीं मांगता, उन्हें चाहिए तो बस आपका प्यार और भक्ति।
1: हाँ बेटा, अब ये बात अच्छी तरह समझ गया, थैंक यू बेटा।
0: चलिए, अब मैं अपने नंदू के साथ चलता हूँ।
1: अरे अरे बेटा, तुम्हारा नाम तो मैंने पूछा ही नहीं।
0: नील।
1: मेरे घर चलो नील, राधा से भी मिलवाऊंगा।
0: नहीं अंकल, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, मुझे चलना चाहिए।
1: सॉरी बेटा, मेरी वजह से लेट हो गया है ना। कहाँ जा रहे हो वैसे?
0: वहीं शिवजी के पास, अमरनाथ।
1: अच्छा, तो ठीक है, मैं भी राधा के साथ आऊंगा।
0: ठीक है, तो फिर वहीं मिलते हैं। हर हर महादेव।
6: हम लोग जो है ना भिड़ू, बहुत अजीब किस्म के प्राणी है। भगवान को खुश करने के लिए हम महंगे से महंगा चढ़ावा चढ़ाते हैं लेकिन कभी ये नहीं सोचते भिड़ू, जो भगवान को चढ़ा रहे हैं वो किसने दिया अरे भगवान ने दिया है, तो भगवान की दी हुई चीज को तू फिर से भगवान को देगा तो भगवान खुश कैसा होगा? अगर तेरा कुछ ज्यादा ही मन कर रहा है भगवान को देने का, तो वो दे जो तेरा अपना है, जो तूने खुद बनाया है, जैसे कि मोह, माया, लालच, अहंकार, ये सब त्याग दे, ये सब भगवान के चरणों में डाल दे, भगवान भी खुश और तू भी खुश, मतलब सादा जीवन, उच्च विचार। क्योंकि शिव सादगी से प्यार करता है, शिव सादगी सिखाता है। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा शिवा।
7: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
9: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
10: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
9: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
9: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
10: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
9: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
10: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
11: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
12: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
11: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
12: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
11: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
13: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
14: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
13: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
14: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
13: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
14: जानकारी है तो कॉल करें 62052 61112 पे।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 99393-65923।

मिल जाए अगर दरबार तेरो पलक

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। संत रविदास संकल्प अभियान को लेकर निकली भव्य कलश यात्रा, गुड़ इकाई की स्थापना करने पर मिलेगा अनुदान, 25 अगस्त को होगा सिंहासनी महोत्सव का आयोजन, नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार और विद्यार्थी सहयोग पोर्टल से अब होगा समस्याओं का समाधान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती पर सामाजिक समरसता, समानता, मानवता एवं भाईचारे के संदेश को जन जन तक पहुंचाने तथा अनुसूचित जाति समुदाय के पात्र लाभुकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से 100% आच्छादित करने के उद्देश्य से बिहार सरकार के द्वारा प्रारंभ श्री गुरु संत रविदास समरसता संकल्प अभियान के तहत आज भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इसका शुभारम्भ शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने थामे के ऐतिहासिक रसू मंदिर से किया। सामाजिक आस्था से जुड़े इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, जनप्रतिनिधि, जीविका दीदी, विकास मित्र और स्थानीय नागरिकों ने उत्साह पूर्वक सहभागिता की। जिलाधिकारी ने बताया कि 27 अगस्त से 15 फरवरी 2027 तक जिले के सभी टोलों में प्रत्येक गुरुवार को विशेष शिविर का आयोजन होगा। इसके माध्यम से अनुसूचित जाति समुदाय के पात्र परिवारों एवं व्यक्तियों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। कुल 22 योजनाओं से पात्र अनुसूचित जाति के लाभुकों को 100% आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए संबंधित विभागों द्वारा पात्र लाभुकों की पहचान, आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता, आवेदन की प्रक्रिया और योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए समन्वित रूप से कार्य किया जाएगा। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने बताया कि कलश यात्रा के माध्यम से अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया गया है। 23 अगस्त से यह कलश यात्रा विभिन्न निर्धारित स्थानों एवं सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचेगी, जहां स्थानीय स्तर पर लोगों को अभियान के उद्देश्यों और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अभियान को लेकर एक कार्यक्रम तक सीमित न रखते हुए इसे व्यापक जन भागीदारी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि गुरु संत रविदास के सामाजिक समरसता के संदेश को गांव-गांव और टोले-टोले तक पहुंचाया जा सके। बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत इच्छुक निवेशक गुड़ उत्पादन इकाई स्थापित करते हैं तो उन्हें सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि 6 लाख से 15 लाख रुपए तक का अनुदान है। इसके लिए गवर्नमेंट के ccsbihar.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। गोपालगंज के भोरे, कटिया, विजयपुर एवं पंचदेवरी तथा पश्चिमी चंपारण के ठकराहा प्रखंड के चयनित ग्रामों में इकाइयां स्थापित की जानी है। 5 से 20 PCD क्षमता की लघु इकाई पर पूंजी लागत का 50% अथवा अधिकतम 6 लाख रुपए और 21 से 40 TCD क्षमता की मध्यम इकाई पर 50% अथवा अधिकतम 15 लाख रुपए का अनुदान दे बताया जा रहा है। सिंहासिनी महोत्सव की पूर्व निर्धारित तिथि 24 अगस्त 2026 को सोमवार होने तथा उस दिन शिवालयों में संभावित अप्रत्याशित भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा एवं प्रशासनिक व्यवस्था के मद्देनजर महोत्सव की तिथि में समिति द्वारा परिवर्तन किया गया है। आयोजन समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि सिंहासिनी महोत्सव का आयोजन अब 25 अगस्त यानी मंगलवार को अपराह्न 3 बजे से 5 बजे तक बैकुंठपुर में किया जाएगा। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि एवं समय के अनुसार महोत्सव में सहभागिता करें तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आयोजन को सफल बनाने में सहयोग करें। गोपालगंज शहर के ही अजय कुमार गुप्ता से नौकरी दिलाने के नाम पर 11,07,500 रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ठगी के मामले में पीड़ित के द्वारा जब आवेदन दिया गया तो इस मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए गोपालगंज के ही रहने वाले अभियुक्त रजनीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी मूल रूप से पूर्वी चंपारण का रहने वाला बताया जा रहा है। इसे गोपालगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके द्वारा कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार भी की गई है। बताया जा रहा है कि सचिवालय में यह अपने आप को अधिकारी बताकर पीड़ित से रुपए ले लिया था और इनके रुपए ठग लिए थे। अब इसे पुलिस गिरफ्तार कर इस पर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। सिद्धवलिया थाना की पुलिस ने एक युवती से छेड़खानी और दुष्कर्म के प्रयास करने के मामले में आरोपी विवेक कुमार पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। यह सिद्धवलिया के बुचिया निवासी जगदीश माझी का पुत्र बताया जा रहा है। पुलिस ने आज इसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विद्यार्थियों की शैक्षणिक एवं छात्रावास से संबंधित समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं जवाबदेह समाधान की दिशा में सरकार द्वारा प्रयास शुरू किया गया है। विद्यार्थी सहयोग पोर्टल छात्र छात्राओं एवं युवाओं के लिए महत्वपूर्ण पहल है। इस पोर्टल का उद्देश्य विद्यार्थियों की समस्याओं को सहजता से प्रशासन तक पहुंचाना तथा निर्धारित समय सीमा में उनके समाधान की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यार्थी सहयोग पोर्टल विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम है। विद्यार्थियों को अपनी समस्याओं एवं सुझावों के लिए कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इसी उद्देश्य से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। 12 सितंबर को व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर लगातार बैठक की जा रही है। जनता से भी निवेदन किया जा रहा है कि जिनके भी सुलहनीय वाद हैं, वे लोग इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों का समापन करवा सकते हैं। इसके लिए आप अपने संबंधित अदालत या राष्ट्रीय लोक अदालत के या जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में पहुंचकर आवश्यक जानकारी ले सकते हैं। आज भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर बैठक किया गया और अधिक से अधिक वादों को चिन्हित किया गया और वादकारियों को नोटिस भेजने के लिए आवश्यक निर्देश दिया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर के द्वारा पटना में 4 दिवसीय प्रयोगशाला कौशल एवं उद्यमिता, मृदा, पशु एवं मानव स्वास्थ्य के लिए वन हेल्थ दृष्टिकोण विषय पर व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में विद्यार्थियों को व्यवहारिक प्रयोगशाला कौशल, आधुनिक नैदानिक तकनीकों का तथा उद्यमिता के अवसरों से परिचित कराया गया। माझा थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे 2 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक आरोपी सुरेश महतो और दूसरा रवि कुमार है। ये दोनों लंगटू हाता थाना माझागढ़ के निवासी हैं। इन पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था। पुलिस ने आज इन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सदर अस्पताल में वैष्णव जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारिता समिति के द्वारा अस्पताल परिसर की सफाई एवं वस्त्र धुलाई का कार्य किया जा रहा है। जीविका दीदियों की सहायता के लिए 2 पर्यवेक्षकों की आवश्यकता है, जिसमें 10वीं पास महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। ऐसे लोग एकडेरवा के जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारिता समिति से संपर्क कर सकते हैं। आज जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर बैठक की गई, जिसमें जिला सूचीबद्धता समिति की बैठक में जिला शिकायत निवारण समिति के साथ भी बैठक हुई और इसमें निजी अस्पतालों से प्राप्त आवेदन पर भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर गोपालगंज के शल्यम हॉस्पिटल को भी 3 स्पेशलिटी अनाउंसमेंट के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही 40 शिकायतों में 39 का ससमय निष्पादन कर और 1 शिकायत के वापस लिए जाने की जानकारी भी दी गई। बैठक में सिविल सर्जन, जिला पंचायती राज अधिकारी सहित तमाम संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे। आज जिलाधिकारी के जनता दरबार में 32 फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। प्राप्त आवेदनों पर अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ त्वरित राहत देने के लिए टीएम ने सख्त निर्देश दिया। आवेदन लेकर आने वाले प्रत्येक व्यक्तियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनने के बाद निष्पादन में टालमटोल या अनावश्यक विलंब की स्थिति में अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई। डीएम ने कहा कि ऐसी स्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आवेदनों का समय से निपटारा करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने भी अपने कार्यालय में जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना और उसे निष्पादित करने के लिए पदाधिकारियों को निर्देशित किया। इधर थामे थाना की पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत फरार चल रहे एक प्राथमिकी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी उपेंद्र सिंह पिता स्वर्गीय रामानंद सिंह, जो थामे थाना क्षेत्र के चनावे गांव का रहने वाला है, आज इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पिछले 24 घंटों में अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने 29 लोगों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया है और इन सभी आरोपियों को आज न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसमें शराब की तस्करी, कोर्ट के द्वारा जारी वारंट और अन्य कांडों में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इस दौरान पुलिस ने सैकड़ों लीटर शराब को भी जब्त किया है और कई वाहन को भी पकड़ा है। फुलवरिया थाना की पुलिस ने भी 237 लीटर देशी शराब के साथ एक मोटरसाइकिल को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर धोबहा झरही नदी के पास छापेमारी की, जहां शराब बेचने के लिए 237 लीटर देशी शराब को इकट्ठा किया गया था। पुलिस वाहन को देखकर सभी तस्कर फरार हो गए। पुलिस ने घटना स्थल से शराब को जब्त कर लिया है। साथ ही शराब के परिवहन में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। वाहन मालिक और चालक के विरुद्ध कांड दर्ज कर अब आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर, संत रविदास संकल्प अभियान को लेकर निकली भव्य कलश यात्रा, गुड़ इकाई की स्थापना करने पर मिलेगा अनुदान, 25 अगस्त को होगा सिंहासनी महोत्सव का आयोजन, नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार और विद्यार्थी सहयोग पोर्टल से अब होगा समस्याओं का समाधान। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
8: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-89693।
10: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
11: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
12: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपकी आरजे दिव्या। हर साल 29 जुलाई को वर्ल्ड ORS दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मकसद लोगों को समझाना कि ORS क्या होता है। तो ORS एक आसान

0: बनाना इतना जरूरी क्यों है? क्या ORS सच में जान बचा सकता है?
1: बिल्कुल, ORS कोई महंगी दवाई नहीं है, बस थोड़ा सा नमक, चीनी और साफ पानी से बना एक घोल है। लेकिन इसका असर कमाल का होता है। जब किसी को डायरिया या उल्टी होती है तब शरीर से बहुत सारा पानी और नमक बाहर निकल जाता है। ऐसे में ORS उस कमी को पूरा करता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है।
0: हाँ भाभी, कई बार लोग सोचते हैं कि अस्पताल जाना ही इलाज है।
1: बिल्कुल, लेकिन अगर समय पर ORS दे दिया जाए तो बच्चे की हालत बिगड़ने से रोकी जा सकती है। WHO भी इसे एक लाइफ सेविंग टूल मानता है। ORS डे हमें याद दिलाता है कि डायरिया से मौतें रोकी जा सकती हैं, बस सही समय पर सही कदम उठाने की जरूरत है। इसीलिए सभी लोगों को ORS के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
0: भाभी, ये ORS आखिर होता क्या है और ये कैसे काम करता है?
1: ORS नमक, चीनी और साफ पानी से बना एक घोल है। जब किसी को दस्त या उल्टी होती है तो उसके शरीर से पानी और नमक बाहर निकल जाता है। ORS पानी और जरूरी चीजों की कमी को पूरा करता है।
0: अच्छा, तो इसका असर फटाफट होता है क्या?
1: हाँ बिल्कुल, इसमें ग्लूकोज होता है जो आंतों में पानी और नमक को जल्दी सोखने में मदद करता है। नमक और पानी शरीर की ताकत और नसों के संचालन के लिए जरूरी है। अगर ORS सही टाइम पर दे दिया जाए तो चक्कर आना, बेहोशी आना या बड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है। ये छोटी सी चीज बड़ी बीमारी को टाल देती है।
0: भाभी, अब तक तो हमें लगता था कि ORS दस्त में ही काम आता है, पर क्या इसका इस्तेमाल और भी बीमारियों में हो सकता है?
1: ORS दस्त के साथ साथ कई परेशानियों में बहुत काम आता है। जैसे अगर उल्टी हो रही हो या पेट में इन्फेक्शन हो तो शरीर से पानी और नमक निकल जाता है, उस समय भी ORS बहुत फायदा करता है।
0: और गर्मी में जब ज्यादा पसीना आता है तब?
1: तेज गर्मी या ज्यादा मेहनत करने पर भी शरीर थक जाता है और पानी की कमी हो जाती है। ऐसे में ORS पीने से शरीर फिर से हाइड्रेट हो जाता है। बच्चों को भी अगर थोड़ी सी भी कमजोरी या सूखापन लगे तो थोड़ा थोड़ा ORS देना चाहिए। अगर पेट दर्द के साथ दस्त भी हो रहा हो तो ORS बहुत जरूरी है। ये मरीज की हालत को बिगड़ने से रोकता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये जल्दी असर करता है। घर पर ही बना सकते हैं और सेफ है। अगर ORS सही टाइम पर दिया जाए तो कई बार अस्पताल जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती।
0: अच्छा भाभी, एक बात बताइए, डिहाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी की कमी के क्या क्या लक्षण होते हैं?
1: अगर किसी को बार बार उल्टी या दस्त हो रहा है या तेज गर्मी में बहुत पसीना निकल रहा है तो शरीर में पानी की कमी हो सकती है। ऐसे में कुछ लक्षण धीरे धीरे दिखने लगते हैं, जैसे मुंह सूखने लगता है, बार बार प्यास लगती है, पेशाब बहुत कम आता है और उसका रंग भी गाढ़ा हो जाता है। इंसान थका थका सा लगता है, कभी कभी चक्कर भी आने लगते हैं, सिर दर्द हो सकता है और बच्चों की बात करें तो वो अचानक सुस्त पड़ सकते हैं, रोने में आवाज नहीं निकलती या बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं।
0: ओह, और अगर हालत और बिगड़ जाए तो?
1: फिर तो और भी खतरा बढ़ जाता है। आंखें अंदर धसी सी लगती हैं, शरीर की चमड़ी रूखी हो जाती है, सांस तेज चलने लगती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, कई बार तो आदमी को होश भी नहीं रहता। और यदि 6 से 7 घंटे तक पेशाब नहीं आए तो समझिए मामला सीरियस है।
0: ऐसे में क्या करना चाहिए भाभी?
1: ऐसे में एक पल भी नहीं गंवाना चाहिए, तुरंत ORS घोल बनाकर पिलाना शुरू कर देना चाहिए। अगर हालत ज्यादा खराब लगे तो मरीज को अस्पताल ले जाना चाहिए।
0: दोस्तों, अब आपको ORS के फायदे तो समझ में आ गए होंगे। भाभी, लेकिन एक बात बताइए कि इसे सही ढंग से कैसे बनाया जाता है?
1: ORS बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन सही तरीके से बनाना जरूरी है। एक पूरा पैकेट ORS का लेना है और उसे 1 लीटर उबाल कर ठंडे किए गए पानी या फिल्टर वाले पानी में अच्छे से घोल लेना।
0: अरे, इसमें कुछ मिलाना होता है क्या, जैसे शरबत या दूध?
1: ORS में कभी भी दूध, शरबत या कोई और चीज नहीं मिलानी चाहिए। बस साफ पानी में ORS पाउडर मिलाना चाहिए। एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि ORS घोल को 24 घंटे के अंदर ही खत्म कर देना है, उसके बाद बचा हुआ घोल फेंक देना चाहिए।
0: और भाभी, इसे कितना कितना देना चाहिए?
1: बच्चों को हर बार दस्त होने के बाद थोड़ा थोड़ा करके देना है। बच्चों को करीब 50 से 100 मिलीलीटर और बड़ों को 200 से 400 मिलीलीटर तक दिया जा सकता है। अगर किसी को उल्टी हो जाए तो धीरे धीरे ORS देना चाहिए ताकि उल्टी दोबारा ना हो।
0: भाभी, ORS को लेकर आपने बहुत कुछ समझाया, लेकिन क्या लोग इसे इस्तेमाल करते वक्त कुछ गलतियाँ भी करते हैं?
1: हाँ, ये गलतियाँ छोटी लगती हैं पर असर बड़ा करती हैं। सबसे पहली गलती लोग घोल बनाते समय करते हैं। एक पैकेट को या तो बहुत कम पानी में घोल देते हैं या फिर बहुत ज्यादा में। ऐसा करने से उसका असर गड़बड़ा जाता है।
0: मतलब जितना लिखा है उतना ही पानी मिलाना चाहिए?
1: बिल्कुल, अगर लिखा है

0: कि एक पैकेट को एक लीटर पानी में मिलाना है तो बस उतना ही पानी लेना है, ना कम ना ज्यादा। दूसरी गलती ये होती है कि लोग पुराना या एक्सपायरी वाला ORS इस्तेमाल कर लेते हैं, जो नुकसान कर सकता है।
1: अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि ORS नहीं है तो शरबत या मीठा जूस पिला दो, वो काम करेगा।
0: ये बहुत बड़ी गलती है। मीठे या फ्लेवर वाले ड्रिंक जैसे कोल्ड ड्रिंक या जूस ORS का काम नहीं करते, वो उल्टा पेट को और बिगाड़ सकते हैं। ORS एक खास संतुलन के साथ बना होता है जो जूस या शरबत में नहीं मिल सकता।
1: भाभी, ORS बच्चों और बड़ों दोनों को दिया जाता है, लेकिन क्या तरीका और मात्रा एक जैसी ही होती है?
0: तरीका थोड़ा अलग होता है। बच्चों को ORS धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में देना चाहिए, जैसे हर कुछ मिनट पर एक एक घूंट। खासकर छोटे बच्चों और दूध पीते बच्चों को चम्मच या ड्रॉपर से देना चाहिए।
1: और अगर बच्चा बहुत छोटा हो या उसे बार बार उल्टी हो रही हो
0: तो बहुत ध्यान से देना है। उल्टी हो तो 10 मिनट रुक कर थोड़ा थोड़ा करके देना चाहिए। बड़े लोगों को 200 से 400 मिलीलीटर ORS एक बार में भी दे सकते हैं, खासकर गर्मी में लू लगने या ज्यादा मेहनत के बाद। लेकिन अगर किसी को शुगर या किडनी की बीमारी हो तो बिना डॉक्टर की सलाह के ORS ना दें।
1: भाभी, अगर घर में ORS का पैकेट ना हो और किसी को दस्त या डिहाइड्रेशन हो जाए तो ऐसे में क्या किया जाए?
0: ऐसी हालत में घबराने की जरूरत नहीं है। ORS पैकेट ना हो तो घर पर भी ORS बना सकते हैं। ये इमरजेंसी में बहुत काम आता है।
1: कैसे बनाते हैं घर पर ORS?
0: बहुत आसान है। एक लीटर साफ पानी लेना है, उसमें 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक डालकर अच्छे से घोल लीजिए। घोल पूरा मिल जाए तब तक चलाते रहिए।
1: इसका स्वाद कैसा होना चाहिए?
0: न ज्यादा मीठा न ज्यादा नमकीन, बस हल्का सा मीठा नमकीन स्वाद आना चाहिए। अगर ज्यादा नमक चीनी या कम पानी डाल देंगे तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। घरेलू ORS भी 24 घंटे से ज्यादा नहीं चलाना चाहिए। जो बच जाए वो फेंक देना चाहिए और अगली बार फिर से ताजा बनाना चाहिए।
1: और अगर तबीयत फिर भी ना सुधरे तो क्या करना चाहिए?
0: तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। घरेलू ORS बस इमरजेंसी में काम आता है। इलाज का पूरा भरोसा डॉक्टर की सलाह पर ही होना चाहिए।
1: आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई, और मैं हूँ आपकी दोस्त RJ दिव्या। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे घोल की, जो सुनने में जितना साधारण लगता है असल में उतना ही जबरदस्त है। बात हो रही है ORS की। टिकन भाभी, अभी तक आपने ORS और घरेलू नुस्खों के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन क्या सरकार भी इस दिशा में कुछ खास काम कर रही है?
0: अरे बिल्कुल सही कह रही है। सरकार ने बच्चों को डायरिया से बचाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे सबसे पहले आते हैं स्टॉप डायरिया कैंपेन।
1: इस कैंपेन में क्या होता है?
0: इसमें गर्मी और बरसात के मौसम में खासकर ध्यान रखा जाता है। 5 साल से छोटे बच्चों के घर घर जाकर ORS और जिंक की गोलियां दी जाती हैं और लोगों को बताया जाता है कि साफ पानी पीना, हाथ धोना और साफ सफाई बहुत जरूरी है।
1: और भी कुछ योजनाएं हैं क्या?
0: हाँ जी, एक और खास मुहिम है IDCF, यानी इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट। इसका मतलब है गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा। इसमें अस्पतालों, आंगनबाड़ी और स्कूलों में ORS जिंक कॉर्नर बनाए जाते हैं। आशा और आंगनबाड़ी दीदी को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो लोगों को ORS कैसे बनाना है ये सिखाए और डायरिया से बचाव की सलाह दे।
1: बहुत बढ़िया। और छोटे बच्चों की देखभाल के लिए भी कुछ योजनाएं हैं?
0: HBNC या गृह आधिकारिक नवजात शिशु देखभाल और HBYC या छोटे बच्चों के लिए गृह आधारित देखभाल योजनाएं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और विकास को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई पहल है। सरकार की HBNC और HBYC योजनाएं, जहां आशा दीदी बच्चों के जन्म के बाद उनके घर जाती हैं, माँ को स्तनपान, पोषण और साफ सफाई के बारे में बताती हैं, ताकि बच्चा तंदुरुस्त रहे और डायरिया से बचा रहे।
1: और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए क्या किया जा रहा है?
0: उनके लिए RBSK यानी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसमें 10 से 18 साल तक के बच्चों की जांच की जाती है, ताकि अगर किसी बच्चे को पोषण की कमी या दूसरी समस्याएं हैं तो समय पर पता चल सके, फिर उसका आसानी से इलाज हो सके।
1: और वैक्सीन का क्या रोल होता है?
0: UIP यानी यूनिवर्सल टीकाकरण प्रोग्राम के तहत बच्चों को रोटा वायरस का टीका दिया जाता है। ये डायरिया से बचाव में असरदार है और माँ को माँ योजना के जरिए स्तनपान करवाने की अहमियत बताई जाती है।
1: भाभी, ये सब सुनकर तो लग रहा है कि सरकार ने हर मोर्चे पर तैयारी कर रखी है।
0: सरकार का मकसद है कि ORS और जिंक हर घर तक पहुंचे। कोई भी बच्चा या बड़ा डायरिया से पीड़ित हो तो तुरंत उसे सही इलाज मिल जाए। साथ ही लोगों को ये भी सिखाया जा रहा है कि हाथ धोने की आदत बहुत जरूरी है। खाना खाने से पहले, शौच के बाद बच्चों खाना खिलाने से पहले साफ सफाई और साबुन से हाथ धोना जरूरी है। साफ सफाई से भी बीमारियों से बचा जा सकता है। लोगों को समझाया जाता है कि बीमारियों को लेकर लापरवाही ना करें। जैसा कि किसी को बार बार पतले दस्त हो या उल्टी हो रही हो तो बिना देर किए ORS देना शुरू करें और जरूरत महसूस हो तो डॉक्टर के पास भी जरूर जाएं। सरकार की पूरी कोशिश है कि लोगों को जानकारी भी मिले और इलाज भी वक्त पर मिले, ताकि कोई बच्चा सिर्फ डायरिया की वजह से अपनी जान न गंवाए।
1: भाभी, आज ORS के बारे में जरूरी बातें जानने को मिले, और सच कहूँ तो इतना आसान इलाज अगर किसी तक पहुँच जाए तो ना जाने कितनों की जान बच सकती है।
0: बिल्कुल, ORS कोई महंगा इलाज नहीं है, पर असर ऐसा कि डायरिया से पीड़ित बच्चे, बूढ़े, सबको राहत मिलती है। बस जरूरत है सही जानकारी और समय पर इस्तेमाल की,
1: और यही वर्ल्ड ORS डे सिखाता है। हर घर तक ORS पहुंचे और सभी को पता हो कि डायरिया में क्या करना है।
0: बिल्कुल, ORS बहुत जरूरी है। डायरिया में जब पानी की कमी हो जाती है तो यही ORS धीरे धीरे बच्चे को ठीक करता है। उल्टी भी हो रही हो तो भी डरने की जरूरत नहीं, चम्मच चम्मच करके आराम से पिलाना है।
1: तो भाभी, ये मान ले कि ORS कोई मामूली चीज नहीं है, ये तो जिंदगी बचाने वाला घोल है।
0: हाँ, और इसी वजह से सरकार कोशिश कर रही है कि ORS हर घर तक पहुँचे। आशा दीदी हो या आंगनबाड़ी बहने, सभी इस काम में लगे हुए हैं, और हम सब की भी जिम्मेदारी है कि अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में बताएं।
1: तो फिर इस 29 जुलाई वर्ल्ड ORS डे पर संकल्प लेते हैं कि ORS हर घर में हो। कई बार सबसे आसान चीज ही सबसे बड़ी इलाज बन जाती है। दोस्तों, मिलते हैं सेहत सही लाभ कई के अगले एपिसोड में एक और जरूरी हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक याद रखिए, सेहत सही तो लाभ कई। श्रोताओं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए, और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97746164।
4: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
5: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
6: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
8: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
8: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: सुनिए,
11: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
10: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
11: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
10: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
6: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
6: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
7: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
8: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
7: अरे, ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
8: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
7: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
8: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
9: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
5: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
8: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
8: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
7: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
6: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
7: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
6: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
8: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
6: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
8: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HFD लक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 1,01,354 रुपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
6: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
8: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 97714-86164।

0: और श्रोताओं, इन्हीं गीतों और संगीतों के साथ हम चाहेंगे आप सभी से अनुमति।
1: Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 AM. Thanks for tuning in. Have a superb day.
0: Namaskar.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गईं। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला चीन की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी से। और एम्स्टर्डम में पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज शाम भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
1: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किला से दिए गए स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल हैं।
1: 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सप्तधारा की, सप्त शक्तियों की बात की है। और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की है। सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि घुसपैठ रोकने और देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाना जरूरी है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता।
0: गृहमंत्री ने अवैध प्रवासियों की पहचान, उन्हें हटाने और वापस भेजने की कार्रवाई जारी रखने की बात कही। श्री शाह ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, उसे पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। गृहमंत्री ने 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता संभालने के 3 दिन के भीतर 3 नए आपराधिक कानून लागू कर अपना वादा पूरा किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। देहरादून में हुई भारत नेपाल संयुक्त कार्यसमूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने आपसी सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: चर्चा के दौरान सीमा पार अपराधों और आपराधिक गतिविधियों से निपटने के उपायों, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने, एकीकृत जांच चौकी, सड़क और रेल नेटवर्क पर बात हुई। दोनों पक्षों ने अतिक्रमण हटाने और सीमाओं के रखरखाव पर भी चर्चा की। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत और क्षमता विकास को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया और इन क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने नेपाल में होने वाली संयुक्त कार्य समूह की अगली बैठक की तारीख पर भी सहमति जताई। समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
0: भारत की अध्यक्षता में जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी के साथ कल संपन्न हो गई। घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
4: एक ऐसा पर्यटन का भविष्य जो अधिक रेजिलिएंट हो, जो इनोवेशंस को अपनाए और उसके साथ साथ में सस्टेनेबिलिटी की आधारशिला का निर्माण करे, क्योंकि भारत के लिए पर्यटन केवल मॉन्यूमेंट्स की विजिट तक सीमित नहीं, अभी तो हमारी संस्कृति को जानने, हमारी संस्कृति की पहचान कराने का और इस तरह का अनुभव कराने का एक सशक्त माध्यम भी है, जिसके माध्यम को हम उनको अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक विविधता के साथ में जोड़ सकते हैं।
0: भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और खेल मंत्रियों की बैठक आज से शुरू होगी। ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों की बैठक आज होगी, जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कल आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि चीनी की कीमत पिछले कुछ हफ्तों में 48 रुपए से बढ़कर करीब 55 रुपए प्रति किलो हो गई है और सरकार लगातार कीमतों पर नजर रख रही है। कीमत पर नियंत्रण के लिए सरकार ने चीनी कारोबारियों पर 400 टन की भंडारण सीमा लगाई है। ये सीमा 1 अगस्त से 30 नवंबर तक लागू है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट मल्हार कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने युवाओं, विशेष रूप से जेंजी से धैर्य और दायित्व के साथ व्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार पाने वाले शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। ये कार्यक्रम दूरदर्शन और शिक्षा मंत्रालय के स्वयं प्रभा चैनल पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। आलमगीर गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल कर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को हराया, जिन्हें 88 वोट मिले। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
5: भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज से केवल 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंक कर पहला स्थान हासिल किया। उधर कुश्ती में भारत की महिला पहलवान काजल धोचक ने स्लोवाकिया में अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 76 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में काजल ने चीन की जिंगरू सन को 7-0 से हराया। इधर BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टेन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया यी फैन और झांग शुशियान को 16-21, 21-15, 21-13 से हराया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। उधर अमिस्टल फैन में FIH महिला हॉकी विश्व कप के पहले मैच में भारतीय टीम को कल नीदरलैंड से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। और पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पाकिस्तान पर 5-3 की शानदार जीत के बाद भारत ने पूल डी में दूसरा स्थान हासिल किया है।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में आज गरज के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ दो वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वर्तमान में अमेरिका के नियंत्रण में है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दक्षिण कैरोलिना में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोक दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
6: धन्यवाद कनक। दिल्ली में स्वाइन फ्लू का संक्रमण, नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण की पहली खबर है। दैनिक जागरण लिखता है, राजधानी में एक दिन में स्वाइन फ्लू के 114 मरीज मिले। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, कुल मामले पिछले साल से 7 से 8 गुना बढ़े, केंद्र ने स्वाइन फ्लू पर दिल्ली के अस्पतालों को किया अलर्ट। हिंदुस्तान ने लिखा है, फेफड़े हो रहे प्रभावित। चीनी की बढ़ती कीमत पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा 15 दिन की भंडारण सीमा तय करने पर जनसत्ता ने अपने संपादकीय में चीनी की कड़वाहट शीर्षक से लिखा है, भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी रोकना है तो ये स्वागत योग्य, मगर सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि छोटे कारोबारियों पर नियमों का अनावश्यक

0: किराए के घर में बदलने की योजना नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर है। और अमर उजाला ने अपने अंतिम पृष्ठ पर बताया है, पाकिस्तान में दिल्ली की चाट और ढाका में खूब पसंद की जा रही बनारसी साड़ियां, न्यूयॉर्क से कराची तक भारतीय व्यंजनों का क्रेज।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गईं। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 620313956।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
7: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील।

0: कुमार रंजन के पास।
1: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
2: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91 626 64 498 पे।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
3: कॉल करें 87-894-18744।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-029-94-921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 अमर जेड पर।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434468 पे।

0: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 62052 1612 पे।

0: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
6: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
5: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
6: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
5: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: जाएगी और इसके बाद परियोजना का काम आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आग्रह पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात कर राज्य के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय नदी जोड़ परियोजना के पहले चरण के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराने और दूसरे चरण के तकनीकी अनुमोदन में तेजी लाने का अनुरोध किया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस संबंध में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण और जल शक्ति मंत्रालय को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में बिहार को सिंगल नोडल एजेंसी स्पर्श के माध्यम से अतिरिक्त केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए इसे 30 सितंबर तक लागू करने पर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के विकास को लेकर केंद्र से हर संभव सहयोग का आश्वासन मिला है।
1: इसमें हाई लेवल डैम जो बनने हैं उस पर चर्चा हुई और बिहार में जो लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सपोर्ट मिल रहा है उसके ऊपर भी चर्चा हुआ कि कई चीजें जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, चाहे वो इरिगेशन के प्रोजेक्ट है, सब में भारत सरकार का पूरा सकारात्मक पक्ष रहा कि पूरी तरह बिहार को सहयोग करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार अगले 4 वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था को 4 गुना करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार बदलाव के करीब खड़ा है और बिल्ड बिहार विलीव इन बिहार की सोच के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बिहार के विकास की भावी दिशा, निवेश, शिक्षा, आधारभूत संरचना, रोजगार और जल प्रबंधन से जुड़े विषयों पर बोल रहे थे।
1: बिहार अगले 4 वर्षों में आज जो इकोनॉमी है इससे 4 गुना इकोनॉमी के साथ भारत के साथ खड़ा हुआ दिखेगा, इसलिए बिहार को आगे बढ़ाना है। बिहार क्योंकि बदलना है और बिहार समृद्धि का रास्ता खोलेगा करेगा, बिहार बदलाव के रास्ते पर चलता रहेगा।
0: केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार मौजूद है और घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चीनी की कमी नहीं है। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि लगातार कीमतों पर नजर रखी जा रही है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमत बढ़ने का कारण इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी का इस्तेमाल नहीं है, इसके बजाय कम उत्पादन, त्योहारों से पहले बढ़ी मांग, खराब मौसम से गन्ने की फसल को नुकसान और कुछ कारोबारियों द्वारा जमाखोरी जैसे कई कारण जिम्मेदार हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए बिहार की 2 शिक्षिकाओं का चयन किया गया है। बांका जिले के बिदायटी स्थित उर्दू प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका खुशबू कुमारी और गोपालगंज जिले के कुचाईकोट स्थित मध्य विद्यालय की शिक्षिका पुष्पा प्रसाद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से जारी सूची में देशभर के कुल 48 शिक्षकों के नाम शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में चयनित शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। राज्य के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए अब शिक्षा ऋण के अधिक विकल्प मिलेंगे। उच्च शिक्षा सचिव ने बताया कि 2 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि 2 से 4 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से दी जाएगी। इसके अलावा पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में इस वर्ष जनवरी से अब तक विशेष कार्यबल एसटीएफ ने 1716 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के पुलिस उपमहानिरीक्षक संजय कुमार सिंह ने बताया कि इस वर्ष अपराधियों के साथ 19 मुठभेड़ हुई, जिनमें 3 अपराधी मारे गए और 18 घायल हुए।
2: 1716 ऐसे अपराध कर्मी गिरफ्तार किए गए जो या तो टॉप 10 की श्रेणी में थे, नोटोरियस थे, या अदर टाइप ऑफ हार्ड कोर क्रिमिनल की श्रेणी में आते हैं। उन 1716 में से 63 ऐसे थे जिनके विरुद्ध में किसी न किसी प्रकार से राज्य स्तरीय या रेंज के स्तर पे या जिला स्तर पे इनाम की राशि घोषित थी। हम लोगों ने टोटल 27 वैसे अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया जो राज्य के बाहर कहीं पर भी हाइड आउट लेके और वहां पे रहते थे।
0: पुलिस उप महानिरीक्षक ने बताया कि एसटीएफ के द्वारा चलाए गए अभियान के दौरान 1 AK-47 राइफल, 2 इंसास राइफल और 398 देसी हथियार जब्त किए गए। साथ ही इस दौरान 33 मिनीगन फैक्ट्रियों का भी उद्भेदन किया गया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पटना, बक्सर, भोजपुर और मुंगेर जिले में नदी कई स्थानों पर उफान पर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पटना के गांधी घाट पर जलस्तर खतरे के निशान से 62 सेंटीमीटर जबकि हाथीदह में 26 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से मनेर और बख्तियारपुर के दियारा क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। दानापुर के दियारा क्षेत्र में भी गंगा का पानी 5 पंचायतों के निचले इलाकों में पहुंचने लगा है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मनेर में शेरपुर तिघवारा 6-लेन पुल का निर्माण कार्य रोक दिया गया है। इधर भोजपुर के बड़हरा में भी गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि से तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बक्सर में भी नदी उफान पर है। वहीं मुंगेर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ चंडिका स्थान के गर्भगृह में पानी प्रवेश कर गया है। इस बीच जल संसाधन विभाग ने जलस्तर में और बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। हमारे पश्चिम चंपारण संवाददाता ने बताया कि बगहा में गंडक नदी की तेज धार से मंगलपुर के पास 6 कटौरोधी संरचनाएं ध्वस्त हो गई हैं।
1: गंडक नदी का कटाव तेज होने के कारण ग्रामीण रात भर जाकर अपने घर और आसपास के इलाकों की निगरानी कर रहे हैं। कटावरोधी संरचनाएं ध्वस्त होने के चलते आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जल संसाधन विभाग ने ध्वस्त बेडवारों को दुरुस्त करने के साथ बाढ़ से बचाव के उपाय शुरू कर दिए हैं। विभाग के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि मंगलपुर के पास नदी का दबाव बढ़ा है और क्षतिग्रस्त संरचनाओं की मरम्मत की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार।
0: इधर राज्य की कई अन्य नदियों का जलस्तर भी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। डुमरिया घाट में गंडक का जलस्तर लाल निशान से 53 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। लालगंज में भी गंडक खतरे के निशान को पार कर गई है। कोसी नदी का जलस्तर बलतारा में 52 सेंटीमीटर ऊपर है जबकि डुमरई, विजयघाट और कुर्सेला में भी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बेनीबाद में बागमती का जलस्तर लाल निशान से 14 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। दानापुर और SMVT बेंगलुरु के बीच यात्रियों को अब प्रतिदिन ट्रेन की सुविधा मिलेगी। रेलवे ने फिलहाल चल रही दानापुर SMVT बेंगलुरु स्पेशल ट्रेन को नियमित करने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के तहत इस ट्रेन का दानापुर से 1 सितंबर से जबकि बेंगलुरु से 3 सितंबर से नियमित परिचालन शुरू होगा। पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया थाना क्षेत्र के बनकटवा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 727 पर आज तड़के सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे चल रहे ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम देख रहे लोगों के बीच जा घुसी। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हो गए। घायलों का GMCH बेतिया में इलाज चल रहा है। गया जिले के नगर प्रखंड के पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। गौरतलब है कि राकेश कुमार को इसी वर्ष 9 फरवरी को निगरानी जांच ब्यूरो ने 50,000 रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। उन्हें जुलाई महीने में जमानत मिली थी। सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी थाना क्षेत्र के बाजितपुर गाँव में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 छात्राओं की मौत हो गई जबकि 1 छात्रा की हालत गंभीर बताई जाती है। प्रारंभिक जांच में दोनों की मौत जहरीले पदार्थ के सेवन से होने की आशंका जताई गई है। पटना की CBI अदालत ने अर्धसैनिक बल में भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कर अभ्यर्थियों को पास कराने के मामले में 2 पूर्व सैनिकों को 2-2 साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 10-10,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया है। पूर्वी चंपारण जिले के लखौड़ा में एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने 88,000 रूपये की जाली भारतीय करेंसी के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। नालंदा और लखीसराय में शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची उत्पाद विभाग की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। दोनों घटनाओं में 9 पुलिसकर्मी घायल हो गए। कटिहार जिले के रोशना चौकी क्षेत्र में पुलिस ने लगभग 231 लीटर शराब बरामद की है। मौके से दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पटना के ज्ञान भवन में चल रहे मेगा जॉब फेयर में तीसरे दिन कल 3,487 युवाओं का रोजगार के लिए चयन किया गया। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की ओर से आयोजित 5 दिवसीय रोजगार मेले में 20,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, कोसी पर उच्च स्तरीय डैम की डीपीआर जल्द। दैनिक जागरण ने लिखा है, पीएम विद्यालक्ष्मी से 10 लाख रुपए तक मिलेगा शिक्षा ऋण। प्रभात खबर की सुर्खी है, पैलेट गन मामले में राहुल गांधी ने दिया धरना, फिर दर्ज हुई प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने लिखा है, अफसरों की मनमानी पर सरकार का बड़ा प्रहार, मानने का कॉल मिस हुआ तो अधिकारियों को खुद करना होगा कॉल बैक। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, अशोक धाम भगदड़ जांच रिपोर्ट में अफसरों को क्लीन चीट। आज अखबार ने लिखा है, अब 1 साल वकालत कर भी बन सकेंगे जज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कोसी नदी पर उच्च स्तरीय बांध की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर तैयार करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, सरकार अगले 4 वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था को 4 गुना करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। बांका की खुशबू कुमारी और गोपालगंज की पुष्पा प्रसाद राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित। और गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से पटना, बक्सर, भोजपुर और मुंगेर जिले के निचले और तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434468 पे।
9: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
10: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
9: अरे, ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
10: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
9: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
10: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
7: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
9: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
11: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
12: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
11: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
12: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
11: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
13: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
13: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
13: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
14: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
15: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
14: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
15: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
14: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
15: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
14: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
15: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
14: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
16: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
17: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
18: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। तो दोस्तों, हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आपको कॉल करना होगा हर रविवार 12 बजे से हमारे स्टूडियो के नंबर 80029-94-21 80029-94-21 पर। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं रेडियो रिमझिम के इस रोमांचकारी खेल के रूल्स को। इस हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे 10 प्रश्न, हर प्रश्न के होंगे 3 ऑप्शन, जिसमें से होगा एक सही जवाब और आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय। यदि आप 10 सेकंड में जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप इस खेल से बाहर हो जाएंगे। 10 प्रश्न के सही जवाब देने वाले प्रतिभागी को मिलेगा रेडियो रिमझिम के तरफ से एक एक्साइटिंग गिफ्ट और हमारे स्टूडियो में आने का मौका। तो दोस्तों, आपको अपने तरफ से इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके मोबाइल में पर्याप्त बैलेंस हो। साथ ही हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के दौरान शांत जगह से कॉल करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी से सहायता ना ले और इंटरनेट पर जवाब सर्च ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट को और लेते हैं पहले प्रतिभागी का कॉल।
19: सलाम अस्सलामुअलैकुम मैम।
20: वालेकुम सलाम। रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
19: थैंक यू।
20: नाम बता दीजिए।
19: इमरान अंसारी।
20: कहाँ से बात कर रहे हैं इमरान जी?
19: भैरोपट्टी
20: जी। ये कहाँ पड़ता है?
19: खबे हवाई अड्डा के पास।
20: अच्छा, तो क्या करते हैं इमरान जी?
19: अभी पढ़ाई करते हैं।
20: किस क्लास में पढ़ते हैं?
19: अभी 4th क्लास में पढ़ते हैं।
20: अच्छा, तो आप इससे पहले भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लिए हैं?
19: हाँ लिए है। तो आप नहीं थी, सर थे।
20: सर थे। ओके। हाँ तो इमरान जी आप 4th क्लास में पढ़ते हैं। किस स्कूल में पढ़ते हैं आप?
19: एवीएम पब्लिक स्कूल।
20: ये कहाँ पढ़ता है?
19: ये बरका यहाँ पर।
20: जी, आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
19: मम्मी का नाम खातून, पिता का नाम निराजन।
20: क्या करते हैं आपके पापा?
19: फार्मर है।
20: अच्छा, अच्छी बात है। और मम्मी?
19: मम्मी हाउस वाइफ।
20: और आपका आगे का लक्ष्य क्या है?
19: अभी आगे चल के सोचेंगे, अभी नहीं सोचे।
20: अभी आप सोचे नहीं है आपको क्या बनना है आगे चल के?
19: ओके।
20: आप कितने भाई बहन हो? तीन भाई बहन हो। ओके, तो आप बड़े हो?
19: नहीं, आप सबसे छोटे हैं।
20: ओके इमरान जी, आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं तो लिया जाए आपसे आपका पहला प्रश्न। ओके, तो चलिए इमरान जी आपसे आपका पहला प्रश्न ये है

0: भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन सी सरदार पटेल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन नंबर ए
0: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कंफर्म है? ओके, तो लॉक करें। तो चलिए इमरान जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तो तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए? ओके, तो आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 22 और ऑप्शन सी है 24। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन नंबर सी
0: 24। ओके, तो लॉक करूँ? इमरान जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तो तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए? ओके, तो चलिए इमरान जी, आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी।
1: मैम ऑप्शन नंबर बी।
0: कंफर्म है?
1: ओके,
0: इमरान जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तो तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए? ओके, आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है अकबर और ऑप्शन सी है बाबर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम आप

0: प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम ऑप्शन नंबर बी
0: इंदिरा गांधी। लॉक करें?
1: ओके,
0: तो चलिए इमरान जी, आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप छठे प्रश्न के लिए? आज से आपका छठा प्रश्न ये है। महात्मा गांधी ने दंडिया मार्च किसके खिलाफ किया था? ऑप्शन ए है कर कानून, ऑप्शन बी है शिक्षा कानून और ऑप्शन सी है अंग्रेजों का नमक कानून। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम ऑप्शन नंबर सी।
0: कन्फर्म है? लॉक करें? ओके, तो चलिए इमरान जी, आपके छठे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप सातवें प्रश्न के लिए? आज से आपका सातवां प्रश्न ये है। अंजता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है मूर्तिकला, ऑप्शन बी है चित्रकला और ऑप्शन सी है संगीत। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम ऑप्शन नंबर ए
0: मूर्तिकला। कंफर्म है? ओके, तो चलिए इमरान जी, आपके सातवें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए मूर्तिकला को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके सातवें प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा चित्रकला। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट संडे फिर ट्राई करिएगा।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
4: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: कुल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
8: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
9: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
8: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
9: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
10: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
9: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
10: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
9: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
10: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029994।

0: 9921 8029 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
1: नमस्कार मिस।
2: नमस्कार, रेडियो रिंजन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाम बता दीजिए।
1: कुमार।
2: हाँ,
1: सुमन कुमार
2: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं सुमन जी?
1: पिंडरा गांव से
2: जी। क्या करते हैं?
1: पढ़ते हैं।
2: किस क्लास में पढ़ते हैं?
1: ग्रेजुएशन चल रहा है।
2: ओके, तो आपका आगे का लक्ष्य क्या है? पढ़ के क्या करना है?
1: टीचिंग लाइन में जाना है।
2: तो तैयारी चल रही है उसकी?
1: नहीं, अभी ग्रेजुएशन चल रहा है।
2: चलिए, अच्छी बात है। तो आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
1: माता जी का नाम श्रीमती दिगन देवी और पिताजी का नाम मिस्टर सूरज
2: जी। आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं, तो तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
1: बिल्कुल।
2: तो सुमन जी, लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
1: यस।
2: ओके, तो सुमन जी, आपसे आज का आपका पहला प्रश्न ये है

0: पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी अमेरिका और ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ग्रेट ब्रिटेन को लॉक किया।
0: कंफर्म है?
1: जी।
0: तो लॉक कर दूं?
1: यस।
0: ओके। तो चलिए सुमन जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तो तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस।
0: ओके। तो आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, संत कबीर किस पे विश्वास रखते थे? संत कबीर किस पे विश्वास रखते थे? ऑप्शन ए जैन धर्म में, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म में, ऑप्शन सी एक ईश्वर में। आपका समय शुरू होता है अब।
1: एक ईश्वर में लॉक करिए।
0: कंफर्म है?
1: बिल्कुल।
0: ओके। तो चलिए सुमन जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: यस।
0: ओके। आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, सौंदर्य का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सौंदर्य का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी जापान और ऑप्शन सी फिनलैंड। आपका समय शुरू होता है अब।
1: जापान को लॉक करिए।
0: कन्फर्म है?
1: लॉक के सारे।
0: ओके। तो लॉक कर देना।
1: यस।
0: ओके। तो चलिए सुमन जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। और बता दे कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर जापान बिल्कुल सही है। तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: यस।
0: आपका चौथा प्रश्न आपसे ये है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है एनीमोमीटर, ऑप्शन बी है रेनगोज और ऑप्शन सी है नेफोस्कोप। आपका समय शुरू होता है अब।
1: रेनगोज को लॉक करिए।
0: रेनगोज
1: जी।
0: कंफर्म है?
1: लग के सारे।
0: ओके। तो चलिए सुमन जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी रेनगोज को लॉक करते हैं। और बता दे कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा नेफोस्कोप, ना कि रेनगोज। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट संडे फिर ट्राई करिएगा।
1: धन्यवाद।
2: हेलो
0: जी, रेडियो के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिए।
2: रंजन बोल रहे हैं आदमपुर से।
0: जी, क्या करते हैं रंजन जी?
2: पढ़ाई करते हैं
0: जी। किस क्लास में पढ़ते हैं?
2: बीएड।
0: बीएड
2: और
0: बीएड फाइनल ईयर चल रहा है कि फर्स्ट ईयर है? अभी
2: सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है। अभी
0: सेकेंड सेमेस्टर किस चलिए? तो बीएड करके क्या करना है? टीचर बनना है?
2: हाँ, टीचर गवर्नमेंट जॉब कोई।
0: बता दीजिए आप अपने मम्मी पापा का नाम।
2: टीचर सिंह मैम इंदल यादव और मम्मी का नाम है लाल।
0: आप इससे पहले भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं?
2: हाँ किए हैं।
0: विनर बने हैं कभी?
2: बहुत पहले बने हुए थे एक बार।
0: ओके। तो आज के लिए आप तैयार हैं आप पहले प्रश्न के लिए? ओके। तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न। ओके। आज का आपका पहला प्रश्न ये है,

0: भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए है बंगला, ऑप्शन बी है तमिल और ऑप्शन सी है तेलुगु। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बंगला को फिक्स कीजिए।
0: कन्फर्म है?
1: कन्फर्म नहीं है।
0: ओके, लॉक कर दें?
1: कर दीजिए।
0: तो चलिए रंजन जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए बंगला को लॉक करते हैं। और बता दें, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, नाम बता दीजिए।
2: अबलम सिद्दीकी पापा काली से बोल रही हूँ।
0: क्या करती है?
2: जी मेरा इंटर फाइनल है अभी, मैं ब्यूटिशियन कर रही हूँ।
0: ओके, कौन से सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रही है?
2: ब्यूटिशियन कोर्स।
0: अच्छा, ब्यूटिशियन कोर्स कर रही है 12th के बाद?
2: यस।
0: अच्छा, पढ़ाई छोड़ दी है उसके बाद?
2: जी मैम।
0: ओके, तो आपके मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: मैम अनवरा, मम्मी का नाम है हसन तारा खातून।
0: जी, और आप अपना नाम एक बार और बताइए।
2: शबनम सिद्दीकी।
0: जी, क्या करते हैं आपके मम्मी पापा?
2: जी मम्मी हाउस वाइफ है और पापा बाहर रहते हैं।
0: तो आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की हैं, तो तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
2: यस मैम।
0: किया जाए आपसे आज का आपका पहला प्रश्न?
2: यस मैम, कीजिए।
0: ओके, तो चलिए शबनम जी, आपसे आपका पहला प्रश्न ये है

0: बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए कंधार, ऑप्शन बी फरगना और ऑप्शन सी तक्षशिला। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम फरगना का शासक था।
0: कंफर्म है?
1: यस मैम, सही है, हिस्ट्री में।
0: ओके, तो लॉक कर देना।
1: यस मैम, कीजिए।
0: ओके, तो चलिए शबनम जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी फरगना बिल्कुल सही उत्तर है। तो तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: हाँ मैम, तैयार हूँ।
0: ओके, तो आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? ऑप्शन ए
1: मैम शुक्र ग्रह को कहा जाता है।
0: कंफर्म है?
1: यस मैम, कंफर्म है एकदम 100%।
0: ओके, तो चलिए शबनम जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर सही है। तो तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: हाँ तैयार हूँ।
0: ओके, आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी लखनऊ और ऑप्शन सी देहरादून। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना।
0: भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है?
1: ऑप्शन
0: ए भोपाल, ऑप्शन बी लखनऊ और ऑप्शन सी देहरादून।
1: मैम देहरादून।
0: कन्फर्म है?
1: नहीं फिर भी।
0: तो लॉक करें?
1: कीजिए।
0: ओके, तो चलिए शबनम जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी देहरादून को लॉक करते हैं। और बता दे कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल सही है। तो तैयार हैं चौथे प्रश्न के लिए?
1: हाँ हाँ तैयार हूँ।
0: ओके, आपसे चौथा प्रश्न ये है, इनमें से कौन सीसा एवं जस्ते का मिश्रण धातु है? इनमें से कौन सीसा एवं जस्ते का मिश्रण धातु है? ऑप्शन ए सोल्डर, ऑप्शन बी कासा और ऑप्शन सी जर्मन सिल्वर।
1: मैम ऑप्शन
0: ए है सोल्डर, ऑप्शन बी है कासा और ऑप्शन सी है जर्मन सिल्वर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन मैम बी।
0: हाँ
1: बी, ऑप्शन नंबर बी
0: कासा।
1: कीजिए।
0: कंफर्म है?
1: नहीं।
0: ओके, तो लॉक कर देना।
1: जी,
0: तो चलिए शबनम जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी कांसा को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा जर्मन सिल्वर। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट संडे फिर ट्राई करिएगा।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
6: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: मैं बनूंगा।
6: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमज़ ज़ेड पर।
8: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94921, 8029-94921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
10: अस्सलाम वालेकुम मैम।
11: वालेकुम सलाम। रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
10: थैंक यू मैम।
11: नाम बता दीजिए।
10: मैम, मेरा नाम औरंगजेब अली है।
11: जी,
10: औरंगजेब अली।
11: औरंगजेब अली कहाँ से बात कर रहे हैं औरंगजेब जी?
10: पाखोपाली।
11: जी, क्या करते हैं?
10: पढ़ाई करते हैं।
11: किस क्लास में पढ़ते हैं?
10: मैम 5।
11: ओके, इससे पहले भी आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं?
10: नहीं मैम, 2-3 महीना हो गया
11: कॉल किए।
10: हाँ
11: जी, तो आप विनर बने थे
10: क्या मैम?
11: आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए थे तो विनर बने हैं?
10: नहीं मैम,
11: नहीं बने हैं। तो तैयार है आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
10: यस मैम।
11: तो लिया जाए आपसे आपका पहला प्रश्न।
10: यस मैम।
11: ओके औरंगजेब जी, आपसे आपका पहला प्रश्न ये है

0: भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1942 और ऑप्शन सी 1947। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम ऑप्शन बी 1942।
0: कन्फर्म है?
1: यस मैम।
0: लॉक करूं?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 1942 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: आज से आपका दूसरा प्रश्न ये है, सिकंदर भारत किस वर्ष आया था? सिकंदर भारत किस वर्ष आया था? ऑप्शन ए 326 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 100 ईस्वी पूर्व और ऑप्शन सी 500 ईस्वी पूर्व। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन ए 326 ईस्वी पूर्व।
0: कन्फर्म है?
1: यस मैम।
0: ओके, तो लॉक करो?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए औरंगजेब जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 326 ईस्वी पूर्व बिल्कुल सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए? ओके, आपका तीसरा प्रश्न आपसे है, सम्राट अशोक के शिलालेख किस लिपि में मिले हैं? सम्राट अशोक के शिलालेख किस लिपि में मिले हैं? ऑप्शन ए नागरी, बी गुरुमुखी और सी ब्राह्मणी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ब्राह्मणी।
0: कन्फर्म है?
1: यस मैम।
0: लॉक करें?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए औरंगजेब जी आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं।
1: यस मैम।
0: और बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, तो आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्रिटेन और ऑप्शन सी है अमेरिका। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैं अमेरिका।
0: कन्फर्म है?
1: यस मैम।
0: लॉक करूं?
1: यस।
0: ओके, तो चलिए औरंगजेब जी आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर अमेरिका बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप पांचवे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, वेद किस धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ है? वेद किस धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है हिंदू धर्म और ऑप्शन सी है इस्लाम धर्म। आपका समय शुरू होता है अब। हेलो।
1: हाँ मैम, ऑप्शन फिर से बोलिएगा।
0: ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है हिंदू धर्म और ऑप्शन सी है इस्लाम धर्म। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम ऑप्शन बी हिंदू धर्म।
0: कंफर्म है?
1: यस मैम।
0: ओके, औरंगजेब आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हिंदू धर्म को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप छठे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: आपसे आपका छठा प्रश्न ये है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम ऑप्शन फिर से बोलिएगा।
0: ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, बी है 26 जनवरी 1950 और सी है 26 नवंबर 1949।
1: सी 26 नवंबर 1949।
0: कंफर्म है?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए आपके छठे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 बिल्कुल सही है। तैयार है आप सातवें प्रश्न के लिए?
1: यस।
0: ओके, आपसे आपका सातवां प्रश्न ये है। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन ए है द हिंद, ऑप्शन बी है समाचार दर्पण और ऑप्शन सी है बंगाल गजट। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन सी बंगाल गजट।
0: कंफर्म है? आपकी आवाज कट रही है।
1: यस मैम कंफर्म है। ऑप्शन सी बंगाल गजट।
0: लॉक करें?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए औरंगजेब जी आपके सातवें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके सातवें प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप आठवें प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, आपसे आपका आठवां प्रश्न ये है। जुलाई 2025 में भारत का कौन सा मिशन चंद्रमा से जुड़ा है? ऑप्शन ए है चंद्रयान 2, ऑप्शन बी है चंद्रयान 3 और ऑप्शन सी है चंद्रयान 4। आपका समय शुरू होता है अब। जुलाई 2025 में भारत का कौन सा मिशन चंद्रमा से जुड़ा है?
1: ऑप्शन बोलिएगा मैम।
0: ऑप्शन ए चंद्रयान 2, ऑप्शन बी है चंद्रयान 3 और ऑप्शन सी है चंद्रयान 4।
1: ऑप्शन चंद्रयान 4 को लॉक
0: कीजिए। कंफर्म है?
1: यस मैम।
0: ओके, चलिए औरंगजेब जी आपके सातवें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके सातवें प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप आठवें प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: आपसे आपका आठवां प्रश्न ये है। किस राज्य में जुलाई 2025 में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु। आपका समय शुरू होता है अब। आप किसी से हेल्प ले रहे हैं? मुझे आवाज आ रही है।
1: नहीं मैम।
0: आपके बगल से किसी की आवाज आ रही है?
1: हेलो। हेलो
0: जी, बोलिए
1: मैम। ऑप्शन बोलने कुछ लेना दीजिए। ऑप्शन फिर से बोलिएगा। डाउट है कुछ?
0: क्या डाउट है? अभी तो इतनी साफ क्लियर आवाज गई है। आपके बगल में कोई है?
1: मैम बगल में तो नहीं, हम बाहर हैं इसलिए थोड़ा शोरगुल है।
0: शोरगुल उस तब से तो नहीं आ रही थी।

0: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बाल मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
0: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94-921 8029-94-921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
11: अस्सलाम वालेकुम मैम।
12: वालेकुम सलाम। रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाम बता दीजिए।
11: सानिया से बिक्की।
12: सानिया, कहाँ से बात कर रही हैं सानिया जी?
11: थारे।
12: जी, क्या करती हैं?
11: पढ़ती हूँ, 7th class।
12: किस क्लास में पढ़ती हैं?
11: मैं 7th class में पढ़ती हूँ।
12: 7 में पढ़ती हैं अभी?
11: जी
12: जी। आप इससे पहले भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग ली हैं?
11: मैम हो गया 2.5 महीना पहले ली थी।
12: जी, विनर बनी है?
11: जी मैम, 9th प्रश्न का आंसर मेरा गलत हो गया, 8 प्रश्न को दे दिया अच्छे से।
12: अच्छा,
11: टेंसर ला रहे थे मैम, आप नहीं थी।
12: ओके ओके, कोई बात नहीं। तो आज के लिए आप तैयार हैं आज का पहले प्रश्न के लिए?
11: यस मैम।
12: तो लिया जाए आपसे आपका पहला प्रश्न।
11: यस मैम, पूछिए।
12: ओके, तो चलिए सानिया जी, आपसे आपका पहला प्रश्न ये है

0: भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है लखनऊ और ऑप्शन सी है देहरादून। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम देहरादून।
0: कंफर्म है?
1: जी।
0: लॉक करें?
1: जी।
0: ओके, तो चलिए सानिया जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी देहरादून को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तो तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए? ओके, तो आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है सानिया जी, किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र और ऑप्शन सी बृहस्पति। आपका समय शुरू होता है अब।
1: शुक्र।
0: कंफर्म है?
1: नहीं, फिर भी कीजिए।
0: ओके, तो लॉक कर देना।
1: जी जी।
0: तो चलिए सानिया जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी शुक्र को लॉक करते हैं। और बता दे आपको कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: हाँ मैम।
0: ओके, तो आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, सिकंदर भारत किस वर्ष आया था? सिकंदर भारत किस वर्ष आया था? ऑप्शन ए 326 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 100 ईस्वी पूर्व और ऑप्शन सी 500 ईस्वी पूर्व। आपका समय शुरू।
1: ऑप्शन नंबर वन 326।
0: कन्फर्म है?
1: जी मैम।
0: ओके, तो चलिए सानिया जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: हाँ मैम।
0: ओके, आज से आपका चौथा प्रश्न ये है, आर्यभट्ट किस क्षेत्र के महान विद्वान थे? आर्यभट्ट किस क्षेत्र के महान विद्वान थे? ऑप्शन ए इतिहास, ऑप्शन बी भूगोल और ऑप्शन सी खगोल और गणित। आपका समय शुरू होता है अब।
1: जी मैम, खगोल और गणित के विज्ञान थे।
0: ओके, लॉक करो।
1: हाँ मैम।
0: तो चलिए सानिया जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी खगोल और गणित को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप पांचवे प्रश्न के लिए?
1: हाँ मैम।
0: ओके, तो आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन ए द हिंद, ऑप्शन बी बंगाल गजट और ऑप्शन सी समाचार दर्पण। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बंगाल गजट होगा शायद।
0: कंफर्म है?
1: नहीं, मैं सुनी हूँ शायद यही होगा।
0: द हिंद या फिर समाचार दर्पण नहीं हो सकता?
1: नहीं मैम, मैंने कहीं सुनी हूँ, मेरे को कंफर्म याद नहीं है। बंगाल गजट मैं सुनी हूँ।
0: अच्छा
1: जी,
0: तो क्या लॉक करूँ?
1: अच्छी पता नहीं सही होगा कि गलत होगा।
0: ओके, चलिए सानिया जी, आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बंगाल गजट को लॉक करते हैं। और आपको बता दूं कि आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप छठे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम। देखिए मैम, मैं सुनी थी, सही हो गया।
0: तो आपसे आपका छठा प्रश्न ये है, नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया जाता है? नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए,
1: मैं आवाज कर रहा है प्लीज फिर से।
0: आपका छठा प्रश्न ये है, नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया जाता है? नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए सुनहरी क्रांति, ऑप्शन बी इंद्रधनुष क्रांति, ऑप्शन सी रजत क्रांति। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम ऑप्शन नंबर बी।
0: ऑप्शन बी।
1: मैं क्वेश्चन नहीं सुन पाई।
0: ऑप्शन फिर से दो या क्वेश्चन फिर से बोलो?
1: मैम फिर से क्वेश्चन बोल दीजिए प्लीज, मैं सुन नहीं पाई थी।
0: ओके, क्वेश्चन आपका ये है, नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया जाता है?
1: मैम रजत क्रांति।
0: ऑप्शन सी।
1: जी मैम जी जी।
0: कन्फर्म है?
1: नहीं।
0: तो लॉक कर दो।
1: मैम ऑप्शन था,
0: ऑप्शन ए था सुनहरी क्रांति। क्या लॉक करूँ? कौन सा लॉक करूँ?
1: सुनहरी क्रांति और तीन,
0: सुनहरी, इंद्रधनुष और रजत। जल्दी बोलिए, आपका टाइम खत्म हो रहा है।
1: इंद्रधनुष कर दीजिए तब, सही हो या गलत हो।
0: जी आप कहीं सर्च कर रही हैं?
1: नहीं मैम, मेरे पास कोई है भी नहीं, मैं कहाँ से सर्च करूँगी।
0: ओके चलिए ठीक है, तो चलिए आपके छठे प्रश्न का उत्तर, क्योंकि आप इतना बार क्वेश्चन और आंसर पूछ रही हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है और आप बोल रही है मेरी आवाज़ कट रही है।
1: नहीं मैम, आपकी आवाज़ आ रही थी, ऑप्शन दो बार आप बोली, मेरे को ठीक से सुनाई नहीं दिया।
0: अच्छा ठीक है, और आपके छठे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी इंद्रधनुष क्रांति को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप सातवें प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: आपसे आपका सातवां प्रश्न ये है, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है पेरू और ऑप्शन सी है कोलंबिया। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम पेरू होगा।
0: कंफर्म है?
1: यस पेरू देखते हैं। यस मैम कंफर्म है।
0: ओके तो लॉक करो।
1: जी मैम।
0: ओके तो आपके सातवें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी पेरू को लॉक करते हैं। जी और आपको बता दें कि आपके सातवें प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल सही है। तो तैयार है आप आठवें प्रश्न के लिए?
1: हाँ मैं तैयार हूँ।
0: ओके आपसे आपका आठवां प्रश्न ये है, किस मेघ को मोती का माता कहा जाता है? किस मेघ को मोती का माता कहा जाता है? ऑप्शन ए पक्षा मेघ, ऑप्शन बी कपासी मेघ और ऑप्शन सी अस्तरी मेघ। आपका समय शुरू होता है अब।
1: फर्स्ट आंसर क्या बताएं? ऑप्शन फिर से।
0: ऑप्शन ए पक्षा मेघ, ऑप्शन बी कपासी मेघ और ऑप्शन सी अस्तरी मेघ।
1: ऑप्शन ऑप्शन बी मैम।
0: कपासी मेघ।
1: जी
0: कन्फर्म है?
1: ऑप्शन कपासी मेघ सुनी थी शायद।
0: लॉक करूं?
1: मैम क्या बताएं, मेरे को याद नहीं आ रहा, सही हो कि गलत होगा, आठ प्रश्न है।
0: कुछ भी तो बताना पड़ेगा ना, आपका टाइम निकल रहा है, 10 सेकंड का टाइम होता है।
1: ऑप्शन एक बार और बस।
0: आपके पास में कौन है?
1: भतीजा।
0: आपके पास से किसी का आवाज आ रहा है?
1: मैम वो मेरा भतीजा है, मैं खेल रही हूँ तो वो सुन रहा है, यहीं पे है, मेरा छोटा है मैम, अभी वो 3 क्लास में पढ़ रहा है, मैं ही उसको यहाँ से पढ़ा रही थी।
0: आपको रूल पता है ना,
1: चीटिंग नहीं कर रहे हैं।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में, सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
3: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता: जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94921 8029-94921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
6: हेलो
7: जी, रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है
6: जी।
7: नाम बता दीजिए।
6: रंजीत कुमार।
7: कहाँ से बात कर रहे हैं रंजीत जी?
6: बलगुट नवादा
7: जी। क्या करते हैं आप?
6: मैं पढ़ते हैं।
7: किस क्लास में पढ़ते हैं?
6: अभी बीएससी कर रहे हैं
7: जी। तो आपका आगे का लक्ष्य क्या है?
6: बिहार एसआई
7: जी। आप इससे पहले भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं?
6: जी
7: जी। विनर बने हैं?
6: 2-3 बार बने हैं।
7: चलिए अच्छी बात है। आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
6: मेरे पिता का नाम है श्री जग महतो और मेरी माता का नाम है श्रीमती इंदु देवी
7: जी। क्या करते हैं आपके मम्मी पापा?
6: ऐसे तो मेरे पिताजी घर और बनाते हैं, मेरी मम्मी घर पर रहती
7: है, मतलब राजमिस्त्री है
6: जी।
7: ये अच्छी बात है। तो आप इससे पहले भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं?
6: हाँ किए, एक दो तीन बार विनर बने हैं। आपसे भी बात हुआ था तो एक बार 9 नंबर सवाल पर चले गए थे, इधर कॉल नहीं कर रहे।
7: ओके, तो रंजीत जी आपसे लिया जाए आपका आज का पहला प्रश्न
6: जी।
7: तैयार है?
6: जी।
7: ओके, तो रंजीत जी आपसे आपका पहला प्रश्न ये है

0: महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी जर्मनी और ऑप्शन सी ग्रीस। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन सी को क्लिक कीजिए।
0: कंफर्म है?
1: हेलो,
0: हाँ कंफर्म है।
1: ऑप्शन सी क्या है?
0: ग्रीस।
1: ऑप्शन तीन से एक बार बोल दीजिए थोड़ा।
0: ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ग्रीस।
1: ऑप्शन सी को फिक्स कीजिए।
0: कंफर्म है?
1: हाँ कंफर्म है।
0: ओके, तो चलिए रंजीत जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है।
1: जी मैडम।
0: जी तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैडम।
0: ओके, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए बंगला, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी तेलुगु। आपका समय शुरू होता है अब।
1: तेलुगु फिक्स कीजिए।
0: कन्फर्म है?
1: हाँ कन्फर्म है।
0: ओके, तो चलिए रंजीत जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी तेलुगु को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैडम।
0: ओके, आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, किस मेघ को मोती का माता कहा जाता है? ऑप्शन ए पक्षाम मेघ, ऑप्शन बी कपासी मेघ, ऑप्शन सी अस्तरी मेघ। आपका समय शुरू होता है अब।
1: पक्षाम मेघ।
0: पक्षाम मेघ
1: जी।
0: ऑप्शन ए?
1: यस
0: कंफर्म है।
1: हाँ कंफर्म है।
0: ओके, तो चलिए रंजीत जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए पक्षाम मेघ बिल्कुल सही है।
1: जी मैडम।
0: तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी मैडम।
0: आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, तड़ित झंझा एवं मूलाधार वर्षा किस मेघ के महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन ए है कपासी वर्षा मेघ, ऑप्शन बी है वर्षा अस्तरी मेघ और ऑप्शन सी है कपासी मेघ। आपका समय
1: शुरू। ऑप्शन बी को फिक्स कीजिए।
0: ऑप्शन बी
1: जी।
0: वर्षा अस्तरी मेघ
1: जी।
0: कन्फर्म है?
1: हाँ कन्फर्म है।
0: लॉक करो
1: जी।
0: ओके, तो चलिए रंजीत जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी वर्षा अस्तरी मेघ को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा कपासी वर्षा मेघ। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट संडे फिर ट्राई करिएगा।
2: हेलो
0: जी, रेडियो रिमझिम का कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी मैम नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बता दीजिए।
2: जी अंकित कुमार।
0: जी कहाँ से बात कर रहे हैं अंकित जी?
2: जी मैम देवहत्ता से।
0: जी क्या करते हैं अंकित जी?
2: अभी तो मैम पढ़ाई चल रही है।
0: जी किस क्लास में पढ़ते हैं?
2: जी मैम ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है।
0: अच्छा, तो पढ़ाई करके आगे क्या करने का विचार है?
2: बीए मतलब बीएससी कर रहे हैं, वो कंप्लीट हो जाए तो आगे कंपटीशन की तैयारी में सब करना है। अच्छा, वही सब तैयारी करना।
0: ग्रेजुएशन कंप्लीट करके करना है?
2: हाँ जी मैम, अभी तो अंडर ग्रेजुएट में उतना अच्छा मतलब उसमें भी लगे हुए हैं तो देख रहे हैं।
0: ओके मैम, तो आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: जी मैम, मेरे पापा जी का नाम उमेश सिंह और माता जी का नाम कमलावती देवी है।
0: क्या करते हैं आपके मम्मी पापा?
2: जी वैसे पापा तो मेरे किसान ही है, खेती बाड़ी सबका काम करते हैं
0: जी।
2: और माता जी घर में खाना वाना बनाती हैं।
0: ओके, तो हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आप कॉल किए हैं, तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
2: जी मैम, मैं बहुत एक्साइटेड मतलब वही हूँ, उत्सुक हूँ।
0: अच्छा, तो आप इससे पहले भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट को कॉल किए हैं?
2: नहीं, फर्स्ट टाइम मैं कॉल किए हैं अभी।
0: अच्छा, आपको कहाँ से पता चला हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के बारे में?
2: रेडियो सुनते रहते हैं, इस पे वो आता है ना एडवर्ड, तो उसी में पता चल गया, इसे उसमें पता चला
0: ये हेलो क्विज कॉन्टेस्ट। इससे पहले आप एड नहीं सुने थे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का?
2: नहीं, इससे पहले तो मतलब पहले सुनते थे काफी पहले, फिर हमको लगा कि कार्यक्रम बंद हो गया होगा, लेकिन फिर सुने तो सोचे कि कॉल किया जाए।
0: ओके, चलिए अच्छी बात है।
2: जी
0: जी, तो लिया जाए ना आपका पहला प्रश्न।
2: जी जी, लिया जाए।
0: तो अंकित जी, आपसे आपका आज का पहला प्रश्न ये है

0: भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है लखनऊ और ऑप्शन सी है देहरादून। आपका समय शुरू होता है अब।
1: जी मैम, देहरादून।
0: कंफर्म है?
1: नहीं मैम, बस।
0: ओके, तो लॉक करूं?
1: जी कर दीजिए।
0: ओके, तो चलिए अंकित जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी देहरादून को फिक्स करते हैं। और बता दे आपको कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तो तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: ओके, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए है शिमला जलप्रपात, ऑप्शन बी है कोटाश्लम जलप्रपात और ऑप्शन सी है जोग जलप्रपात। आपका समय शुरू होता है अब।
1: जी इसका आंसर बी है,
0: कोटाश्लम जलप्रपात।
1: हेलो,
0: हाँ बोल रहे हैं कोटाश्लम।
1: बी नंबर ऑप्शन
0: कोटाश्लम जलप्रपात।
1: जी
0: कंफर्म है?
1: और उतना श्योर नहीं है, मतलब एक बार ऐसे नाम सुने हैं इसका, इसलिए लग रहा है कि यही होगा।
0: तो लॉक करूं?
1: जी कर दीजिए।
0: ओके, तो अंकित जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी कोटाश्लम जलप्रपात को लॉक करते हैं। और बता दे कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा जोग जलप्रपात।
1: जी इसका तो नाम नहीं सुने थे।
0: जी, हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट संडे फिर ट्राई करिएगा।
1: जी ठीक है।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
8: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
7: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
8: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 80-29-94-921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
9: हेलो
0: जी, रेडियो रिंगिंग के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
9: जी अस्सलाम वालेकुम मैम।
0: वालेकुम सलाम, नाम बता दीजिए।
9: बिहार अंसारी।
0: इजहार। कहाँ से बात कर रहे हैं इजहार जी?
9: मैरापट्टी
0: जी। इससे पहले भी आप कॉल किए थे?
9: ना, हमने किए थे, लगा रहे थे लेकिन नहीं लगा।
0: ओके, क्या करते हैं इजहार जी?
9: पढ़ाई करते हैं।
0: किस क्लास में?
9: 9।
0: ओके, तो आपका आगे का लक्ष्य क्या है, पढ़ के क्या बनना है?
9: अभी नहीं सोचा।
0: अच्छा, अभी सोचा नहीं है। तो इससे पहले भी कभी आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लिए हैं?
9: नहीं लिए हैं। पहली बार चलती है।
0: ओके, आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए। इजहार जी,
9: मम्मी का नाम काकेश खातून और अबू का नाम मेरा जानकारी।
0: क्या करते हैं आपके अबू?
9: अबू टेलर हैं।
0: टेलर हैं, अच्छी बात है। तो आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं, तो तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
9: यस मैम।
0: लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न?
9: यस, पूछिए।
0: ओके यार जी, आपसे आपका पहला प्रश्न ये है

0: आपके पहले प्रश्न का उत्तर ही बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1942 ना कि ऑप्शन 30। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट संडे फिर ट्राई करिएगा।
1: हेलो
0: जी, रेडियो रेंजिंग का कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, नाम बता दीजिए।
1: अमित कुमार।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं अमित जी?
1: पिडरा से।
0: जी, क्या करते हैं आप?
1: पढ़ते हैं।
0: किस क्लास में पढ़ते हैं?
1: 10th।
0: जी, आप इससे पहले भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं?
1: हाँ।
0: ओके, आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
1: स्वर्गीय इंदु देवी।
0: जी।
1: उपेंद्र शाह।
0: क्या करते हैं आपके पापा?
1: लेबर।
0: ओके, आप किस क्लास में पढ़ते हैं?
1: 10th।
0: तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
1: यस।
0: ओके, तो चलिए अमित जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

0: आर्यभट्ट किस क्षेत्र के महान विद्वान थे? ऑप्शन ए है इतिहास, ऑप्शन बी है भूगोल, ऑप्शन सी है खगोल और गणित। आपका समय शुरू होता है अब।
1: खगोल और गणित ऑप्शन सी।
0: कंफर्म है?
1: यस।
0: लॉक करूं?
1: यस करिए।
0: ओके तो चलिए अमित जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: तो आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन ए है द हिंद, ऑप्शन बी है बंगाल गजट, ऑप्शन सी है समाचार दर्पण। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन नंबर ए
0: द हिंद। कंफर्म है?
1: हाँ।
0: तो लॉक करूं?
1: करिए।
0: ओके तो चलिए अमित जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए को लॉक करते हैं। और बता दे आपको कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा बंगाल गजट, ना कि द हिंद।
1: ठीक।
0: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट संडे फिर ट्राई करिएगा। नमस्कार, रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नाम बता दीजिए। शिवम। कहाँ से बात कर रहे हैं शिवम जी?
2: अपना से।
0: जी क्या करते हैं आप?
2: तैयारी करते हैं एग्जाम का। तैयारी करते हैं गवर्नमेंट का।
0: ओके, आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए शिवम जी।
2: जी नाम मलबा जी, पापा का नाम मनोज
0: जी। लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
2: बिल्कुल।
0: ओके तो चलिए शिवम जी, आज का आपसे पहला प्रश्न ये है,

0: भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए बंगला, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी तेलुगु। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बांग्ला को
0: लॉक करो। कन्फर्म है? जी जी बिल्कुल। तो तेलुगु को लॉक करो। तो लॉक क्या करो, तमिल या तेलुगु?
1: तमिल को
0: करिए। कन्फर्म है?
1: कन्फर्म नहीं है।
0: तो तमिल करो।
1: हाँ
0: ओके। तो चलिए शिवम जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी तमिल को लॉक करते हैं।

0: और बता दे आपको कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा तेलुगु, ना कि तमिल। इसी कार्यक्रम में ये रिपीटेड क्वेश्चन है जी। चलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करिएगा।
1: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
8: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
9: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
10: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
11: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
12: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
10: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
9: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
10: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
12: कॉल करे 87-894-18744।
1: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 80-29-94-921, 80-29-94-921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
13: हेलो
0: जी, रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है
13: जी। नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिए।
13: बिमलेश है, मैं प्रधान से
0: जी। क्या करते हैं बिमलेश जी?
13: पढ़ाई करते हैं।
0: किस क्लास में पढ़ते हैं?
13: 12th में।
0: ओके, तो आपको आगे चल के क्या करना है?
13: अभी सोचते नहीं है।
0: अच्छी बात है। तो आप इससे पहले भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लिए हैं?
13: यस मैम।
0: विनर बने हैं?
13: नहीं।
0: ओके, आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
13: जी, मम्मी का नाम श्रीमती सुधांशी देवी, पिता का नाम श्री सुभाष शर्मा
0: जी। क्या करते हैं आपके पापा?
13: किसान हैं।
0: ओके, तो आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं, तो तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
13: यस मैम।
0: ओके, तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
13: यस मैम।
0: ओके जी, आपसे आपका पहला प्रश्न आज का ये है

0: महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी जर्मनी और ऑप्शन सी ग्रीस। आपका समय शुरू होता है अब।
1: जर्मनी का फिक्स।
0: कंफर्म है?
1: नहीं।
0: तो लॉक करो।
1: और लास्ट वाला ग्रीस था। इसी दोनों में कोई होगा।
0: तो कौन सा फिक्स करे, जर्मनी या ग्रीस?
1: ग्रीस को फिक्स कीजिए।
0: कंफर्म है?
1: नहीं।
0: ओके तो चलिए विमलेश जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ग्रीस बिल्कुल सही है। लिया जाए आपसे आपका दूसरा प्रश्न।
1: यस मैम।
0: ओके आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र और ऑप्शन सी बृहस्पति। आपका समय शुरू होता है। कंफर्म है?
1: नहीं, लेकिन बुध ही होगा।
0: तो फिक्स कर दो।
1: यस मैम।
0: ओके तो चलिए विमलेश जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए बुध को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा शुक्र ना कि बुध।
1: जी।
0: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट संडे फिर ट्राई करिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजिंग। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजिंग के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: थैंक यू मैम।
0: नाम बता दीजिए।
2: आयुषी
0: जी। कहाँ से बात कर रही हैं आयुषी जी?
2: गोपालगंज से।
0: क्या करती हैं?
2: कुछ नहीं, स्कूल में पढ़ती हूँ।
0: किस क्लास में पढ़ती हैं?
2: सिक्स्थ में।
0: ओके आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: अभिषेक कुमार है, नन्नू देवी।
0: ओके क्या करते हैं मम्मी पापा?
2: मम्मी हाउस वाइफ, पापा बिजनेस मैन।
0: ओके तो तैयार हैं आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की है तो आज के पहले प्रश्न के लिए?
2: जी।
0: लिया जाए आपसे आपका पहला प्रश्न।
2: जी
0: तो आयुषी जी, आपसे आपका पहला प्रश्न ये है,

0: बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? ऑप्शन नंबर ए कंधार, ऑप्शन नंबर बी फरगना और ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन नंबर बी फरगना।
0: कंफर्म है?
1: जी।
0: लॉक किया जाए?
1: जी।
0: ओके, तो चलिए आयुषी जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी फरगना को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: तो आयुषी जी, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया जाता है? नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सुनहरी क्रांति, ऑप्शन नंबर बी है इंद्रधनुष क्रांति और ऑप्शन नंबर सी है रजत क्रांति। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन नंबर, एक बार और ऑप्शन रिपीट कर दीजिए।
0: ऑप्शन ए सुनहरी क्रांति, ऑप्शन बी इंद्रधनुष क्रांति और ऑप्शन सी रजत क्रांति। आयुषी जी, आप कहीं सर्च कर रही हैं?
1: नहीं, सुनहरी क्रांति को लॉक कर दीजिए।
0: कंफर्म है?
1: नहीं, कंफर्म नहीं है, आंसर वही लग रहा है।
0: ओके, तो लॉक करें?
1: जी।
0: ओके, तो चलिए आयुषी जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए सुनहरी क्रांति को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा इंद्रधनुष क्रांति। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट संडे फिर ट्राई करिएगा।
2: तो दोस्तों, ये रहा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का आज का एपिसोड। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर और बने हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के विनर। और हमें दीजिए अब जाने की इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोसमोड़ दरगाह रोड, गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: खेले तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
8: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8009294921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 आमजेड पर।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है। सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97097506575।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
0: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
0: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434468 पे।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
7: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,01,354 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
7: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779714861.
8: Excuse me boss, you have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम के हाल चाल कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूँ। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो 96.4 FM पे समय 9:22 हो रहे हमारे स्टूडियो गिड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। टेक्स्ट मैसेज के लिए नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने की फरमाइश करना है तो आप लोग तो जानते हैं कि पुराने गाने की फरमाइश इस कार्यक्रम में की जाती है, तो आप पुराने गाने पसंद करते हैं तो बिल्कुल फरमाएं, हम आपकी फरमाइश पूरी करेंगे कुछ ही समय में। और कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अपना भी कार्यक्रम शुरू करें मैसेज टाइप करने का, जिसमें अपना नाम और गाने का नाम, कहाँ से मैसेज कर रहे हैं, तीन चीज़ें टाइप करना है और सेंड करना है हमारे नंबर पे। यहाँ पे पहला मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सर, हम सफरोज अली आकिल टोला से और गाना सुनना है। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने की फरमाइश कौन सी है ये तो बताएं, ताकि आपकी फरमाइश हम पूरी करें। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सर, हम सफरोज अली गोपालगंज से और गाना सुनना है। तो बिल्कुल आप दो दो मैसेज कर रहे हैं दो दो नंबरों से, तो एक ही नंबर आप चलाएं ताकि दिक्कत ना हो हमें। और आगे गाने की फरमाइश तो आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि अस्सलाम वालेकुम, सुनो भैया क्या हाल है, मैं मुस्कान गोपालगंज से और मुझे सॉन्ग सुनना है, क्योंकि इतना प्यार करते हैं तुमको सनम। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने की फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हाय मैं कमलेश जी विलेज सव्या फील्ड गोपालगंज से और मुझे सॉन्ग सुनना है जाने मन तू खूब है, फिल्म जानी दुश्मन का। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, फिलहाल बने रहे हमारे साथ और सफरोज अली जी के गाने के साथ इस कार्यक्रम की आगाज़ करते हैं और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़ में, होई आँख नम।

94 FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का। और अभी अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़ में गाने सुन रहे थे सफरोज अली जी के फरमाइश पे। यहाँ पे आगे मैसेज कई पहुँचे हुए हैं, आगे मैसेज पहुँचा हुआ है। नमस्ते नमस्कार सलाम भैया, कैसे हैं बताइएगा। तो बिल्कुल बढ़िया, आप सभी के बीच उपस्थित हूँ और कार्यक्रम को लेकर कार्यक्रम चल रहा है। और इस मैसेज को करते हैं रंजन कुमार, ग्राम शाह शराव, जिला सिवान, बिहार, फिलहाल धनबाद झरिया से, और कहते हैं कि मैं गाना सुनना चाहता हूँ, गाना सुनवा दीजिए निगाहें पिक्चर का। तो बिल्कुल आपका गाना है तो पूरा करने की कोशिश है और बने रहना हमारे साथ। आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि गाना सुनाने के लिए थैंक्स सर, और उसके लिए सॉरी, नेटवर्क कम काम नहीं कर रहा था। ओह, तो चलिए आगे से ध्यान रखिएगा, एक ही नंबर चलेगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि आपकी फरमाइश और एक और दो दो नंबर चलते हैं तो थोड़ा सा

इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है, जाने मन तू खूबो है, जाने दुश्मन मोबी से। तो सुनते इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रमझम 94.4 FM।

जाने दुश्मन मुबीश और यहाँ पे आगे मैसेज कहीं पहुँचे हैं। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि गाना बजाने के लिए थैंक यू सर जी। चलिए आपके भी धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं? मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए। और मैं रोशनी कुमारी मानिकपुर से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सोनू भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? और मैं रोहित देहरादून से और मैं भी सुर से जुड़ चुका हूं, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, नाइस सॉन्ग सर, कमलेश जी का गाना बहुत अच्छा है। और इस मैसेज को पहुंचाते हैं सफरोज अली अखिल टोला से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो हाय कैसे हैं आप सर, सॉन्ग बनला के दस गो साथी बिगड़ला के कोई ना, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, प्लीज़ सर बजा दीजिएगा। आज हमारे गांव में जुलूस है, कल मेला है, आइए सब देखने मेला करने। और इस मैसेज को करती हैं मनीषा फ्रॉम अमुआ मौजम से, तो स्वागत है आपकी फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सर आज मुझे भी गाना सुनना है, निशा पांडे तो बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा यदि गाने के फरमाइश करती हैं तो। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं मुस्कान की, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं सनम। सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रमझम 90.4 FM।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
5: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
6: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
6: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 FM पे। सो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का और यहाँ पे आगे मैसेज कई पहुँचे हुए हैं, आगे गाने की भी फरमाइश पहुँचा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए और अगले गाने की शांत इंजॉय किया जाए। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है डॉक्टर रक्की बाबू अजहर नगर गोपालगंज से और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। और अगले मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हमारा नहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल आपका भी दिख रहा है, आपका भी फरमाइश तो पूरा करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि क्या सुनो भैया, ज़्यादा दिन बाद मैसेज किया इसलिए गाना नहीं बजाए। ऐसी बात नहीं है, आपकी फरमाइश हम पूरी करने वाले हैं। और इस मैसेज को करते हैं रंजन कुमार, ग्राम सहसराव, जिला सिवान, फिलहाल धनबाद झरिया से, और गाने के फरमाइश किए हुए हैं निगाहें पिक्चर का, सावन के झूलों ने हमको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। तो चलिए आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे, कहते हैं कि सभी दोस्त के साथ में बैठ कर सुन रहे हैं शुभम, दिलीप, अमजद अंसारी और सभी लोग। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, कुछ मैसेज देख ले फिर आपके गाने हम प्ले करते हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सुनो भाई कैसे हैं आप, और मेरा एक वीक 4 दिन हो गया है। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और आपकी फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है अनूप जी। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। और इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र कुमार जी, पोस्ट चौरी गौरैया, टोला डिस्ट्रिक्ट उमरिया MP से। तो स्वागत है आपका भी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय हेलो प्रणाम सलाम जी, मेरे तरफ से प्यारे प्यारे लिसनर को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और मैं आपके संगीत शो में एंट्री कर चुकी हूँ निशा भारती उछवालिया उंचका गांव प्रखंड से, और हुई आँख नम और ये दिल मुस्कुराया, लाजवाब सॉन्ग एंड जाने मन तू खूब है, सुपर सॉन्ग क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं सनम, मस्त सॉन्ग। तो चलिए आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में निशा भारती। और आगे मैसेज कई आ रहे हैं तो मैसेज को रुकते हैं और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। और एक और मैसेज हमारे पास इधर लिखा हुआ था ऑनलाइन, लिखा गया है कि प्यार वो नहीं जो जान देती है, प्यार वो नहीं जो जान देती है, प्यार वो नहीं जो मुस्कान देती है, प्यार तो वो है जो पानी में भी गिरा हुआ आंसू पहचान लेती है। नाइस सॉन्ग, रोशनी इस लाइन को भेजती है। चलिए आगे बढ़ा जाए, प्यारा लाइन, और अगली गाने की फरमाइश प्ले करते हैं हम और सुनते हैं अगली फरमाइश। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया।

काफी प्यारा शाम रेडियो एमजीएम 94.4 एफएम पे सुन रहे हैं निगाहें पिक्चर से। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सुनो जी, गुड इवनिंग, मैं रेखा पांडे सरयावन नंबर 5 से, आज तो मेरा गाना बिल्कुल प्ले कीजिएगा। गाने हैं इसे समझो नारेशम का डुर, भैया राखी का मतलब है प्यार भैया, बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा और समय तो बहुत कम है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सोनो बाबू हम भी जुड़ गए हैं पर लेट हैं, हारी तो बनता है। बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कहते हैं कि खुशी होता है जब कोई देश प्रदेश से सावन के महीने में या किसी महीने में घर वास्ते हैं, पर निशाना तो कहीं और होता है। बिल्कुल। और कहते हैं कि रोमांटिक सॉन्ग, इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भी एक करियर अफसर नेपाल बॉर्डर से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मुझे नागमणि मूवी का सॉन्ग सुनना है, बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा, फिलहाल बने रहे हमारे साथ। और इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र कुमार जी। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि मेरा गाना, तो चलिए आपके भी गाने हम प्ले करते हैं। और इस मैसेज को करती हैं मनीषा फ्रॉम अमो मौजम से, और इनके दोस्त हैं, डेडिकेट करती हैं सिस्टर काजल पिंकी सरियाज शनम। और गाने की बोल देती हैं, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला हो।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़ और डॉक्टर पी के गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज
2: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97 714 86 164।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
6: कब भौजी? आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
6: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
8: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
9: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
10: FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का, और यहाँ पे आगे मिसेज पहुँचा हुआ है बिल्कुल नाइस यंग और मिसेज करती हैं रोशनी, और आगे गाने के फरमाइश किए हुए हमारे सुरतागढ़ वीरेंद्र कुमार जी हैं और विलेज पोस्ट चौरी गोरैया टोला डिस्ट्रिक्ट उमरिया MP से, और गाने के फरमाइश किए हुए हैं दुश्मन ई जान को हम अपनी जान बना बैठे। चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे अनुराधा पौडवाल एंड सबीर कुमार की आवाज़ में। आगे मिसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सुनो भैया बहुत बहुत धन्यवाद गाना बजाने के लिए, और इस मिसेज को किए हुए हैं रंजन कुमार ग्राम सराव जिला शिवान से, और आगे मिसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि आज के समय के दौर के मुताबिक सही सॉन्ग मनीषा का, पर कुछ लोग हैं कि दुख में साथ नहीं छोड़ते हैं और बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि प्लीज़ मेरा भी सॉन्ग, तो एक एक करके सबकी फरमाइश पूरी करने की कोशिश है, आपकी भी फरमाइश हम पूरी करें, कोशिश है मेरा। आगे बढ़ते हैं और अगले गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश।

0: नगीना, क्या तुम्हारे यहाँ मेहमानों के रास्तों पर फूल बिछा जाते हैं?
1: हर मेहमान के लिए नहीं, कुछ खास मेहमान के लिए।
0: मेहमानों से इतना मोह अच्छा नहीं, मेहमान हमेशा जाने के लिए आते हैं, और फिर परदेसी पर कभी विश्वास करना भी नहीं चाहिए। पंछी एक डाल पर, नदी का पानी एक घाट पर, रमता जोगी एक ठिकाने पर, और परदेसी कभी एक जगह पर नहीं ठहरते।
1: अगर मेरे परदेसी ने पंछी बनकर उड़ना चाहा, तो मैं अपनी नैनों की कतारी से उसके पर काट दूंगी। नदी का पानी बनकर बहना चाहा, तो मैं अपनी मोहब्बत का बांध लगा दूंगी। रमता जोगी बनकर ठिकाना छोड़ना चाहा, तो मैं अपने रूप से उसका जोग भंग कर दूंगी। और अगर देश लौटना चाहा, तो मैं अपने आंसू की बेड़ियां उसके पैरों में पहना दूंगी।

काफ़ी प्यारा सॉन्ग रेडियो एमजीएम 94.4 FM पे सुन रहे हैं आप सब। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सर, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, मेरा नाम है आज़ाद अंसारी। तो बिल्कुल बढ़िया, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज लिखे हुए हैं कि दिल के टुकड़े टुकड़े गाना सुनना है। मेरा नाम है आज़ाद अंसारी, मोहनपुर से जुड़ चुका हूँ। आज बहुत दिन के बाद मुझे गाना सुनना है, तो आज तो नहीं सुना पाएंगे क्योंकि काफ़ी समय निकल चुके हैं और सप्ताह का आज अंतिम दिन भी है। तो आगे कल कोशिश रहेगा, अगले सप्ताह, कल तो नहीं, अगले सप्ताह। और आगे मैसेज पहुंचा और लिखा गया है कि थैंक यू सो मच सर सॉन्ग प्ले करने के लिए, आपको भी धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि गाने का बोल है तेरी नज़रों से कुछ ऐसा जादू किया। तो इस मैसेज को पहुंचाने वाले अनूप जी हैं, तो कोशिश तो है लेकिन बहुत कम समय है। आगे बढ़ते हैं फटाफट और अगले गाने के प्ले करते हैं। और इस गाने की फरमाइश करती हैं निशा पांडे, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है हम तुमको चुरा लेंगे। तो चलिए आपकी फरमाइश प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं हम सभी रेडियो एमजीएम 94.4 FM पे।

काफी प्यारा सॉन्ग रेडियो रेम छीम 94.4 FM पे सुन रहे हैं आप सब। और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और यहाँ पे समाप्ति का समय भी हो चुका है। और यहाँ पे आगे कई मैसेज और कई गाने के फरमाइश है, तो कई तो नहीं पूरा कर पा रहे हैं। अंतिम गाने प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। आगे मैसेज पहुँचा और लिखा गया है कि थैंक्स सर मेरा गाना बजाने के लिए। चलिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो रेम छीम सुनने के लिए। और आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की फरमाइश यहाँ पे रेखा जी की तरफ से पहुँचा हुआ है। और गाने की फरमाइश से इसे समझो ना रेशम का डोर भैया। तो चलिए अंतिम गाने आप ही का रहेगा, और कई मैसेज हमारे पास इधर उधर हो रहे हैं गाने को लेकर, तो कई तो नहीं पूरा कर पा रहे क्योंकि समय जो है समाप्ति का हो चुका है। सो आज के लिए बस इतना ही। आप सब सुनते रहें रेडियो रेम छीम 94.4 FM जो हमें सच कहता है सुनो दिल से। और आज थोड़ा सब्र करें, मंडे को कोशिश करें मैसेज करें, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी भी फरमाइश हम पूरी करें। फिलहाल नमस्कार।

0: सांजो सांजो नहीं सांजो नहीं सांजो
1: अली बेटे अली अलोक जल्दी करो इसे अस्पताल ले चलते हैं।
0: नहीं शांति नहीं लगता आज मेरे जाने का वक्त आ गया नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। हाँ यार बहन अपने इस भाई को रागे नहीं बांधूंगी

0: भाई।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।

हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और समय हो गया आपके मन पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और हमारी तरफ से जब तक हमारे सारे लिसनर जुड़ रहे हैं तब तक आपके लिए एक गाना प्ले कर रही हूँ। और चलिए आज झनकार बीट्स से शुरू करते हैं। और यहाँ हमारे पास एक सॉन्ग है और गाने की बोल है एक परदेसी मेरा दिल ले गया। तो चलिए बिना देरी किए गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

तो अभी आप लोगों ने सुना मेरी तरफ से एक प्यारा सा सॉन्ग, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि गाना आप सभी को कैसा लगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँच चुके हैं जो कि लिख रहे हैं सऊदी अरब से जुड़े हुए मुस्तफ़ा जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश पहुँच चुकी है, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून भारती मैम, मैं सिद्धार्थ बरेली से, और गाना सुनना है, सुना दीजिएगा आज सुबह। और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुँची और दोस्तों को सुनाना चाहते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, कुछ दूर हमारे साथ चलो हम दिल की कहानी कह देंगे, कुछ दूर हमारे साथ चलो हम दिल की कहानी कह देंगे, समझे ना जिसे तुम आँखों से वो बात जुबानी कह देंगे। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं दिलीप राम जी, और इनकी तरफ से एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मुझको फिर वही सुहाना नज़ारा मिल गया, मुझको फिर वही सुहाना नज़ारा मिल गया, नज़रों को जो दीदार तुम्हारा मिल गया, और किसी चीज़ की तमन्ना क्यों करूँ जब मुझे तेरी बाहों में सहारा मिल गया। भारती जी गुड आफ्टरनून, आई एम प्रेजेंट दिलीप राम दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि हाय भारती जी, और लिख रहे हैं कि बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं, नहीं लगेगा उसे देखकर मगर वो खुश है, मैं खुश नहीं मगर देखकर लगेगा नहीं। और लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है और मेरा एक वीक पूरा हो गया है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं जो कि यहाँ हमारे पास अगला मैसेज पहुँचा हुआ है मुस्तफ़ा जी की तरफ से, और गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, तो चलिए देखते हैं क्या है इनकी फरमाइश। और गाना है कि झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में, और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश है, तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा, मिला ही नहीं
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में और हमारे स्टूडियो के घड़ी में 12:29 हो रहा है और सो है योर वॉइस योर चॉइस का। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, मैं रोहित कुमार हैदराबाद से, और हमारा भी अटेंडेंस लगा दीजिएगा तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी अटेंडेंस लग चुकी है। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि हेलो भारती मैम, नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम अखिलेश मेहताब है और मैं इसरा नवादा संग्रामपुर पूर्वी चंपारण से बोल रहा हूँ, और मैडम जी मुझे गाना सुनना है, गाना सुना दीजिएगा। और यहाँ गाने की बोल पहुँची हुई है तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून दीदी, गुड आफ्टरनून मनोरमा दीदी का हालवा, और मेरा नाम गणेश कुमार पिपरा नारायण से, और सब बताइए कैसी हैं आप लोग, मनोरमा दी भारती दी आप सब कैसे हैं, सुपर सॉन्ग आपका गाना। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, हम सब तो ठीक हैं, आप सब बताइए आप सब कैसे हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मैडम जी नमस्कार, हम लोग भी आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं और कार्यक्रम अच्छा चल रहा है। उमा शंकर सिंह, अवंतिका सिंह, अर्जित सिंह रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका भी। और मैसेज पहुंचा हुआ है, यहाँ लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, मेरे विलेज का नाम है गोपाल मठ और बबलू कुमार वार्ड, एक गाना सुनना चाहता हूँ, प्लीज़ गाना सुना दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हेलो भारती जी, हम कृष्ण मोहन सिंह सिपाया खास से और सभी लिसनर्स और सभी आरजी को गुड आफ्टरनून बोलिएगा, हम भी लखनऊ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचे हुए लिख रहे हैं नमस्कार भारती मैडम जी, हम भी शो से जुड़ गए हैं, हमारा भी हाजिरी लगा दीजिएगा, और मैसेज करने वाले हैं सन्यासी रंजन जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो कि हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँचा हुआ है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या इनकी फरमाइश। हेलो
1: हेलो, मैं दीपाली गोपालगंज से बोल रही हूँ
0: जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। ये जो आप गाना मुझे अभी बताएंगी तो अभी सुन लीजिएगा, अभी सुनने को मिलेगा।
1: अच्छा, तो गाना मुझे दीजिए हनुमान जी से बोल रंगाबाद गाना।
0: कौन सा?
1: हनुमान जी से बोल रंगाबाद गाना।
0: हनुमान जी से?
1: हाँ।
0: तो भक्ति गाना से रिलेटेड मैं नहीं बजा सकती क्योंकि इस शो में भक्ति गाना नहीं बजता है।
1: अच्छा, तो भिखारी फिल्म का गाना बता दीजिए, बिना बोले जो मैं सही जानती
0: हूँ। गाने की बोल क्या बोली?
1: बिना बोले गोला सही और मत जाइया।

0: एक बार और गाने की बोल बता सकती हैं?
1: बिना बुलावले गौरा नहीं जान चाहिए।
0: ये भी भगवान से रिलेटेड है क्या?
1: नहीं, ये भी फिल्म का सॉन्ग है।
0: और गाना सुनाना भी है?
1: हाँ, मेरी मम्मी और पापा को। रेडियो टीम में जितने लोग सुन रहे हैं सभी को थैंक यू गाना बजाने के लिए।
0: ओके, रेडियो रिमझिम में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका गाना प्ले हो चुका है, एंजॉय कीजिए रेडियो रिमझिम पर।

तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि

लिख रहे हैं कि नमस्कार प्रणाम सभी दोस्तों को, भारती मैम आपको भी, हम जितेंद्र सिवान जिला से, और हमें भी, हम भी आपके प्रोग्राम से जुड़ गए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्ते रेडियो रिमझिम, मैं नंद कुमार शर्मा सिगरौली मध्य प्रदेश से, और आज रेडियो रिमझिम का टाइटल सॉन्ग सुनना चाहते हैं, और रिमझिम से तराने लेके आई बरसात यही गीत सुना दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, शमशाद अली लिख रहे हैं कि लगा के सीने से सारी शिकायतें दूर कर दो, आज इन बाहों में आके मुझे मुझसे दूर कर दो, मेरी वफाई को, मेरी वफाई के लिए गाने की कोई फरमाइश नहीं है, आप नाराज हो जाते हो गाने की फरमाइश से, तुम कहते हो गाना हमने तुम्हारा बजाया था, जिस वक्त हम सुन रहे थे उसे टाइम तो नहीं बजाया, बजाया तो बाद में कितने भी बजाया तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आपका गाना बजाने से पहले मैं तो सभी के पास मैसेज कर देती हूँ कि आपका गाना बजने वाला है, अपना गाना सुन लीजिएगा, और आप सुन नहीं पाए इसके लिए मैं क्या ही कर सकती हूँ। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, यहाँ डॉक्टर अमोद कुमार कुशवाहा जय छपरा जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हम सुनील कुमार पूर्वी चंपारण अरे राज बाबा की नगरी से जुड़ गए हैं, भारती जी गुड आफ्टरनून, नाइस ओपनिंग सॉन्ग और माय फेवरेट सॉन्ग। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं दीनानाथ यादव कुबैत से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हेलो भारती जी गुड आफ्टरनून, क्या हाल है मैम, जम्मू एंड कश्मीर से बिहार का रहने वाला हूँ, और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, और मैसेज करने वाले हैं साकिब जी, और गाने की बोल पहुंची हुई है, और बोल है कि लेहनी जन्म दूसरा जात में। तो चलिए गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं गाने को।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-89673।
4: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
5: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
4: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
5: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
4: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
6: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
7: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
8: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
7: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि सोचा इस कदर उसको भूल जाएंगे, देख कर भी अनदेखा कर जाएंगे। सोचा इस कदर उसको भूल जाएंगे, देख कर भी अनदेखा कर जाएंगे, लेकिन जब जब सामने आया उसका मासूम सा चेहरा, सोचा इस बार देख लेते हैं, अगली बार भूल जाएंगे। और गुड आफ्टरनून भारती जी, कैसी हैं आप? और मैं भी शो से जुड़ गया हूँ, और मैं रोहित देहरादून से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं रोहित जी आज। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती मैम नमस्कार, मिथिलेश चौहान इंदिरा नवादा से, और मेरे दोस्त लोग हैं खाना लाभ है। छुटन तिवारी हैं, सुलट की हैं, और उनको गाना सुनाना है पवन सिंह की आवाज़ में। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे हमारे पास अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है गुड आफ्टरनून मैम साकिब को मेरे नमस्ते बनारस से अनिल कुमार। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इनकी तरफ से बहुत ही मज़ेदार लाइन पहुँची हुई है जो कि लिख रहा है मैम मैंने 30 गाड़ी चलाकर 25 लोगों को उड़ा दिया है। जज तुमने 25 लोगों को उड़ा दिया, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? मैं गाड़ी तेज चला रहा था, पर मैंने जब ब्रेक मारी तो पता चला कि ब्रेक फेल है। फिर मैंने सामने देखा तो दो आदमी जा रहे थे और दूसरी ओर बारात जा रही थी। तो आप ही बताओ मैं गाड़ी किधर मोड़ता? जज सिंपल सी बात है, जिस तरफ दो आदमी थे नुकसान कम होता। मैं बिल्कुल सही, मैंने भी यही सोचा, पर वो दो आदमी मेरी गाड़ी देखकर बारात में घुस गए। और बहुत ही मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे अगली जो कि फरमाइश मेरे पास पहुंची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती जी, और मुझे भी गाना सुनना है। और गाने की बोल पहुंची हुई है इनकी तरफ से, और गाने की बोल है प्यार में लोगवा बीमार काहे होला। मैडम जी वक्त, मैं वेट कर रहा हूँ, गाना प्लीज़ प्ले कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

0: तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग प्यार में लगवा बीमार काहे होला, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, जी मैम गुड आफ्टरनून मैम, मैं भी आ गया हूँ और वाओ सुपर सॉन्ग, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोनी जी, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मैं मिथिलेश चौहान जी बोल रहा हूँ और सुपर सॉन्ग बज रहा है और मेरा भी गाना सुना दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ दिलीप राम जी की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, भारती जी प्यार तो करते ही हैं लोग, भारती जी प्यार करते ही लोग बीमार क्यों हो जाते हैं आप बताइए। ये बात तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिन्होंने किया है उनसे पूछना पड़ेगा क्यों बीमार हो जाते हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, भारती जी मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा। और यहाँ पे धनेश कुमार मिश्रा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और कुछ लाइंस पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं, वो बिछड़ के हमसे, वो बिछड़ के हमसे ये दूरियाँ कर गई, न जाने क्यों ये मोहब्बत अधूरी कर गई, अब हमें तन्हाई चुभती है तो क्या हुआ, कम से कम उसकी सारी तमन्ना तो पूरी हो गई। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हैं धनेश कुमार जी। और इसी के साथ यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो मैम नमस्कार, मैं सुनील यादव, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। जो कि हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है सन्यासी रंजन जी की, भारती जी पूछना यह था कि यदि आत्मा नाम के लड़के का विवाह शांति नाम की लड़की से हो जाए तो। आत्मा की शांति मिल सकती है क्या? आपकी इस लाइन पे मैं क्या ही बोलूं, और शायद आत्मा की शांति मिल जाए और मिल भी सकती है। और इसी के साथ ही हम मैसेज पहुंचे हुए जो कि लिख रहे हैं, हाय हेलो माय नेम इज मोहम्मद, केरला से जुड़े हुए हैं, और मेरा भी हाजिर लगा दीजिएगा। और सबको, सब कैसे हैं, सब ठीक है ना? तो जी हम सभी ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो कि हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे, नमस्ते मैडम जी, हम भी जुड़ गए हैं और मेरा भी गाना चला दीजिएगा। और इजरा नवादा थाना संग्रामपुर से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे हमारे पास गाने की फरमाइश वॉइस के माध्यम से पहुँची हुई है, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी वॉइस।
1: हम अपने मोहब्बत का इम्तिहान देंगे, तेरे घर के सामने हम अपने जान देंगे, हिंदी गाना है, सुना दीजिएगा मैडम जी, हम सुकुलवा से बोल रहे हैं।
0: तो बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, तो चलिए बिना देरी किए इनकी गाने को प्ले किया जाए और एंजॉय किया जाए रेडियो रमजम 90.4 FM में।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
2: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
1: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
2: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
1: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
3: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
4: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
3: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
4: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
3: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
4: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
5: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
6: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
5: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 1,01,354 रुपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
6: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
5: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
7: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते नमस्कार, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा। सागिर आलम अंसारी असम से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, नमस्ते भारती मैम, संजय यादव दुबई से, क्या हाल है मैम? तो मेरा हाल तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं? और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा मैम, और लिख रहे हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम, हम अहमद अली सैरिया वार्ड नंबर 1 से, गुड आफ्टरनून सभी को बोल दीजिएगा मैम। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी तरफ से मैंने सभी को गुड आफ्टरनून बोल दिया है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मैं सऊदी अरब से निजामुद्दीन भारती जी, क्या हाल है? और कल तो मनोरमा जी प्रोग्राम चला रही थी, बताना फिर पता नहीं कहाँ फिर छोड़कर प्रोग्राम चली गई, और मनोरमा जी प्रोग्राम अच्छा चलाते हैं, और सोनी जी को मेरा मैसेज है कि प्रोग्राम में कब आ रही हैं, मेरा मैसेज सुनाना है सोनी जी को। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी मैसेज ज़रूर सोनी जी तक पहुंच ही रही होगी। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास धनेश जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं कि जमाई ससुर जी, आपकी बेटी में दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है। ससुर, बेटा तुमने तो उसका हाथ मांगा था, दिमाग की कोई बात ही नहीं हुई थी। और काफ़ी मज़ेदार लाइन है धनेश जी। और इसी के साथ यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्कार भारती मैम, मनोज कुमार कुशवाहा निरंजना से, और क्या हाल है भारती मैम? और मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है, और मेरा हाल तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं? और इसी के साथ हमारे पास जो कि अगली फरमाइश पहुंची हुई है, अनिल कुमार दरभंगा के रहने वाले हैं, और लिख रहे हैं, नमस्ते भारती मैम, मुझे भी सॉन्ग सुनना है, सुना दीजिएगा। और सॉन्ग है बर्बादी हुई बर्बादी हुई, और चलिए आज काफ़ी दिनों के बाद इस गाने की फरमाइश हमारे पास पहुंची हुई है, तो इस गाने को प्ले करते हैं, सभी के साथ एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, शिल्पी राज की आवाज़ में ये प्यारा सा सॉन्ग।

तो अभी हम लोगों ने सुना शिल्पी राज की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग बर्बादी सॉन्ग, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय भारती जी, कैसी हैं आज? हम भी जुड़ गए हैं, और एक मेरी भी एक फरमाइश है, और लिख रहे हैं कि

हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हाय गुड इवनिंग मैम, हम टुनटुन यादव विलेज पठानपट्टी पोस्ट पठरा जिला गोपालगंज बिहार से वानी, हमके गाना सुने के बा और पश्चिमी और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपका भी गाना प्ले होगा। उससे पहले हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून भारती दी, मेरा नाम करिश्मा कपूर, पिपरा नारायण से जुड़े हुए हैं और लिख रही हैं, और सब बताइए दीदी कैसी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका करिश्मा जी, और करिश्मा कुमारी जी मैं तो अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सन्यासी रंजन जी की तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि महिलाओं का सिर्फ एक ही दुख है, जब भी मिलेंगी बोलेंगी यार बाल बहुत झड़ रहा है, और मजाल है आज तक कोई टकली हुई है। और यहाँ सन्यासी रंजन जी की तरफ से काफ़ी मज़ेदार लाइंस पहुँच रही हैं, और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और यहाँ हमारे पास फरमाइश पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती मैम नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम अखिलेश मोहताब है और मैं इजरा नवादा संग्रामपुर पूर्वी चंपारण से बोल रहा हूँ, और मैडम जी मुझे गाना सुनना है और सुना दीजिएगा। गाने का बोल है किसी की याद सताए तो शराब पी लेना, और यह गाना प्लीज़

भारती मैम बजा दीजिएगा। और लिख रहे हैं, हेलो भारती मैम, नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम अखिलेश मेहताब है। और ये जो मिथिलेश चौहान जी मैसेज किए थे, हम दोनों खास भाई हैं और हम दोनों का हाजिरी, हम दोनों हिजरा नवादा से हैं और इधर नवादा संग्राम पूर्वी चंपारण से हैं, और हम दोनों भाई आपका कार्यक्रम बहुत मन लगाकर सुनते हैं, और हम दोनों भाई भी कर्नाटक में मौजूद हैं और यहाँ से आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, और जो इनकी तरफ

धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई एक गाथा जो हजारों सालों से दिलों में जीवित है, महाभारत। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष, रिश्तों की उलझने और जीवन के सबसे कठिन सवाल, महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता। कभी अर्जुन के शस्त्र उठाने के पहले की दुविधा, तो कभी श्री कृष्ण के गीता का उपदेश।

0: हर मोड़ पे नए प्रश्न और उनके जवाब, धर्म, युद्ध और जीवन के असली अर्थ की खोज। सुनना ना भूलें हर शुक्रवार शाम 7 बजे से रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। सुनो दिल से।
1: प्रसाद क्लिनिक।
2: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
1: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
2: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।

ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त मनोरमा, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98527 88 291, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है। यहाँ पे अगला मैसेज है सोना लाल जी की तरफ से, और इन्होंने मैसेज किया है, नमस्ते मैम, हम भी जुड़ गए हैं, हमको एक गाना सुनना है। हम हिजरा नवादा थाना संग्रामपुर से, सोना लाल जी, इश्क की राह में अक्सर मुकाम बदल जाते हैं, इश्क की राह में अक्सर मुकाम बदल जाते हैं, हवा का रुख क्या बदलना, इंसान बदल जाता है, संभल के दिल लगाना ए मेरे दोस्त, संभल के दिल लगाना ए मेरे नदान दोस्त, यहाँ जरूरी पूरी होती है, यहाँ जरूर पूरी होती है, इंसान बदल जाते हैं। यह शायरी सबसे पहले आपको सुनाना चाहते हैं, उसके बाद श्याम सुंदर जी को, निकेश जी को, बीरेन भैया को, अखिलेश भैया को और मिथिलेश जी को, निकेश जी को, रघु जी को और दिनेश जी को, थैंक यू। और अखिलेश भैया को धन्यवाद गाना सुनाने के लिए। और यहाँ पे अगला मैसेज है,

0: और यहाँ पे अगला मैसेज है एमडी नौसाद जी की तरफ से, और इन्होंने मैसेज किया है, हाय मैम, गुड आफ्टरनून। बंजारी रोड
1: बजाजी रोड लालगंज से जुड़े हुए हैं, जो कि लिख रहे हैं कि एमडी नौशाद और एमडी सदाम जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और लिख रहे हैं कि और साथ में मोहम्मद निसार और मोहम्मद रिजवान और अभिनंदन टेलर जी जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि सन्यासी रंजन जी की, मेरे पड़ोसी मुझ पर गुलाब फेंक कर हैप्पी होली गुलाल फेंक कर हैप्पी होली बोला था, इस बार मैंने उस पर बम फेंक कर हैप्पी दिवाली बोलूँगा। और इतनी मज़ेदार लाइन के लिए आपका सन्यासी रंजन जी दिल से थैंक यू, और सभी को हंसाने के लिए। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं, भारती मैम बहुत अच्छा शो चल रहा है, और हम मनीष कुमार घर पिपरा से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो कि है यहाँ हमारे पास फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं कि हाय भारती जी कैसी हैं, आज हम भी जुड़ गए हैं और एक सॉन्ग सुना देती फिल्म कारवा का, और रफ़ी आशा जी की स्वर में, और सॉन्ग है गुरिये कहाँ तेरा देश रे, और डेडिकेट करना चाहते हैं आरजे सोनू बाबू, अफसर भाई, रोशनी, शफक, हजरा, हिना, शाहजहाँ, निशा, शब्बा, गुड़िया, निशा, आशा, खुशी, सबीना, सबीता और दिलीप भाई को, और रहने वाले हैं खगड़िया रोलेक्स नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भाई। और लिख रहे हैं जबरदस्ती बड़ा ही रंगदार बा और शिल्पी जी। और इसी के साथ चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करेंगे, और बहुत ही खूबसूरत सी गाने की फरमाइश है, तो चलिए गाने को एंजॉय करते हैं सभी के साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

तो अभी हम लोग बहुत प्यारा सा सॉन्ग सुने, गोरिया कहाँ तेरा देश रे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे अगला फरमाइश है।

और यहाँ पे अगला मैसेज है नौशाद जी की तरफ से, और इन्होंने बहुत ही प्यारा सॉन्ग की फरमाइश की है। अगर आसमान तक मेरी हाथ जाते तो कदमों में तेरे सिर तारे होते हैं। तो चलिए प्ले करते हैं गाना और इंजॉय करते हैं प्यारा से सॉन्ग को।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त मनोरमा, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है। दिलीप राम जी की तरफ से, और इन्होंने बहुत ही प्यारा सा शायरी लिखा है। इश्क का जिसको ख्वाब आ जाता है, समझो उसका वक्त खराब आ जाता है, मोहब्बत आए या ना आए। इश्क का जिसको ख्वाब आ जाता है, समझो उसका वक्त खराब आ जाता है, महबूब आए या ना आए, पर तारे गिनने का हिसाब आ जाता है। शुक्रिया भैया को, दिलीप राम जी। और यहाँ पे अगला मैसेज है,

और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है नौशाद जी की तरफ से और लिख रहे हैं थैंक यू मैम गाना सुनाने के लिए। और यहाँ पे अगला मैसेज है सुनीता जी के तरफ से और इन्होंने मैसेज किया है हाय मैम मुझे भी एक गाना सुनना है, मैं सुनीता देवी वाराणसी से और मेरे सारे फ्रेंड भी सुनना चाहते हैं, प्लीज़ मैम प्लीज़ गाना सुना दीजिएगा बोल है। गाने के बोल है घेर आई करिया बदरिया उमरिया तूफान हो गई, प्लीज़ मैम प्लीज़ गाना सुना दीजिएगा तो प्लीज़। तो चलिए प्ले करते हैं गाना आपका और इंजॉय कीजिए प्यारा सा सॉन्ग को।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
8: ठक ठक।
9: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा मिला ही नहीं।
9: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
9: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
9: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
10: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
11: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में और हमारे स्टूडियो की घड़ी में अभी 2 बज रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो मैम, राधे राधे, पाजी यूपी चौवन से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं मेरी भी हाजिर लगा दीजिएगा। तो जी बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो कि हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं शेखर चौहान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, लिख रहे हैं हेलो, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं आयुष कम्युनिकेशन और लिख रहे हैं हाय, एक मेरा भी गाना बजा दीजिएगा। और मैडम जी तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैं आपका गाना कैसे बजाऊँ, आपने तो गाने की फरमाइश की नहीं है, बस लिखे हैं मेरा एक गाना बजा दीजिएगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते भारती मैम, जलंधर पंजाब से गोविंद कुमार, मैं भी जुड़ गया हूँ तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून मनोरमा जी, आप, मैं पप्पू ठाकुर कटिया गोपालगंज से, और एक बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गाना सुन रहे थे और यहाँ पे जो कि हमारे पास अगली फरमाइश पहुँची है कॉल के माध्यम से। तो चलिए बिना देरी किए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या इनकी फरमाइश। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: कृष्णा बोल रही हूं मैडम।
0: हाँ, का हाल चाल बा?
1: ठीक बा, आप बताइए।
0: हमियों के ठीक बावे।
1: आज तो ठीक बा।
0: तो आज कौन से गाने के फरमाइश बा?
1: आज तो ना दी ऋषि कपूर का गाना बा, प्यासे ही रह गए।
0: प्यासे ही रह गए
1: जी मैडम।
0: और गाना सुना हूँ के बा? अच्छा, आज आवाज बहुत धीरे आता, कुछ तबीयत ठीक नहीं है का? अच्छा चलिए ठीक रहूं के चाहे, और गाना प्ले कर दिल बनी, एंजॉय करी रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

तो अभी हम लोग ने सुना रेशमा जी की तरफ से बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग और गाने की बोल थी प्यासी ही रह गई। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मनीष भाई के गाना बजा दी भारती दी, प्लीज़ दीदी बजा दी। तो जी बिल्कुल, आपके भाई का भी गाना प्ले होगा, पर अभी न्यूज़ का टाइम होने वाला है इसीलिए मैं अभी प्ले नहीं करूँगी। उससे पहले जो हमारे पास यहाँ गाने की फरमाइश पहुंची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि मैडम जी हमारा गाना कब बजेगा और प्लीज़ मेरा भी गाना प्ले कर दीजिएगा। और भारती जी मैम, मैडम जी हमारा गाना नहीं बजाइएगा क्या? तो जी बिल्कुल, आपका भी गाना प्ले होगा, जबकि उससे पहले हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुंची हुई है पप्पू ठाकुर जो कि कटिया गोपालगंज के रहने वाले हैं और लिख रहे हैं कि जो तुम्हें मिला उसे किसी ने खोया होगा, जो तुम्हें मिला उसी ने उसे किसी ने खोया होगा, जिसके साथ हर पल मुस्कुराते हो तुम उसके लिए किसी ने रोया होगा। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हैं और लिख रहे हैं सॉन्ग का बोल है जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र है। और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश है और लिख रहे हैं प्लीज़ रीड माई मैसेज। तो जी आपका भी मैसेज शामिल कर लिया गया है और चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

पप्पू ठाकुर जी की तरफ से मैसेज पहुंच गया जो लिख रहे हैं थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए। और इसी के साथ जिनकी फरमाइश कंप्लीट नहीं हुई है उनकी फरमाइश दोपहर न्यूज़ के बाद पूरी की जाएगी। और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग राजेश खन्ना वाले भाई को धन्यवाद। तो इन्जॉय कीजिए आप सभी इस गाने को।

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97-7-14-86-164।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
0: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
0: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710-30-9-92 या 97-65-65-7-50।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अभी आप कुछ ही देर में सुनेंगे आकाशवाणी के नई दिल्ली केंद्र से दोपहर 4:15।

0: मैं फरहतनाज। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफिनामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत ने सोमालिया अमेरिका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा के 20 अरब डॉलर मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। कनाडा ने भी समान स्तर की जवाबी टैरिफ लगाने की बात कही। पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद आज सेमीफाइनल में चीन की लियो शेंगशू और टैन निंग से खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफिनामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक रिपोर्ट।
1: स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। यह कदम छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सरकार ने निर्माताओं को निर्देश दिया है कि इन दवाओं के लेबल, पैकेज में दिए गए निर्देशों और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट रूप से चेतावनी लिखी जाए। सरकार ने कहा है कि ऐसे दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। इस वर्ष जून में भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश भर में लोगों के इस्तेमाल के लिए 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाई थी। शिवांग के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वहीं सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए भी विज्ञापन की 12 मिनट की अधिकतम अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह फैसला केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन को राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के

0: मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। डॉ मांडविया ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत थोटलकोंडा में पौधारोपण भी किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि समय पर फैसले देने वाली न्याय व्यवस्था वैश्विक विश्वास बढ़ाती है, कारोबार सुगमता को मजबूत करती है और किसी देश को निवेश तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक भरोसेमंद बनाती है। नई दिल्ली में 11वें ब्रिक्स लीगल फोरम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मजबूत संस्थान विशेष रूप से प्रभावी न्याय व्यवस्था आर्थिक विकास की आधारशिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने लाइसेंस राज के दौरान उत्पादन को दंडित करने के अपने दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन किया है। अब उसके स्थान पर सरकारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई योजना के माध्यम से इसे पुरस्कृत किया जाता। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पिछली सरकारों की उस सोच की आलोचना की जिसमें जानबूझकर चीजों की कमी बनाए रखी जाती थी ताकि लोगों को सरकार पर निर्भर रखा जा सके। शासन की सोच में परिवर्तनकारी बदलाव का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने नकारात्मक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मॉडल की तुलना वर्तमान पीएलआई योजना से की।
1: जहां पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था, वहीं आज हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर इंसेंटिव दे रही है। पीएलआई स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। सिर्फ इस एक योजना की वजह से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है। 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है। 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है और 14 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब बनी है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सप्तधारा पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और हरित अर्थव्यवस्था सहित 7 प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।
1: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है। और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है। ये रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी में पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े सभी पक्षों के साथ बैठक की। इसमें उत्तर बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक मध्यस्थ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। ये समिति अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंपेगी। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। पहला जहाज MT सिबू 20 अगस्त को यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में अगवा किया गया। इसमें 16 भारतीय नाविक समेत 20 लोग सवार थे। दूसरा जहाज MV लुत्फ 17 अगस्त को सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास अगवा किया गया। इसमें 6 भारतीय नाविक समेत 10 लोग सवार थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है।
2: 2 ships which are foreign flag. 2 जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
3: वी आर इन टच विद द अथॉरिटीज दैट आर कंसर्न्ड इन दिस।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कल से रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान श्री जयशंकर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़ी 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका ने 20 अरब डॉलर मूल्य के कनाडा के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ये टैरिफ आज लागू हो गए। अंतिम समय में तनाव कम करने के लिए हुई वार्ता विफल रहने के बाद कनाडा ने तत्काल जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। नए अमरीकी टैरिफ से कनाडा के अमरीका को होने वाले सालाना निर्यात का करीब 5% हिस्सा प्रभावित होगा। प्रभावित उत्पादों में हॉकी स्टिक और मेडिकल जांच में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की स्टिक भी शामिल है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क

0: ने कहा है कि कनाडा भी डॉलर के बदले डॉलर के आधार पर समान टैरिफ लगाएगा। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने वार्ता विफल होने के लिए वाशिंगटन को जिम्मेदार ठहराया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इफ्फी इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए अधिक अवसरों पर जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति के उस निर्णय की कड़ी निंदा करती है और स्पष्ट रूप से विरोध करती है जिसमें पार्टी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल पिछले दो छंद गाने का निर्णय लिया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने पंजाब सरकार को एक दुष्कर्म के मामले को दबाने के लिए नोटिस जारी किया है। आयोग ने एक शिकायत का संज्ञान लेते हुए आरोपों की जांच कराने को कहा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी ने मामले को दबाने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की। रामगढ़ में देर रात एक सीमेंट और इस्पात पावर प्लांट में टरबाइन फटने के बाद भीषण आग लग गई। हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। एक रिपोर्ट।
1: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अत्यधिक तापमान के कारण प्लांट का प्रोटेक्शन सिस्टम फेल हो गया जिससे टरबाइन ओवर स्पीड हो गया और विस्फोट हुआ। प्लांट कर्मचारियों का आरोप है कि कंट्रोल रूम में अत्यधिक तापमान और खराब कूलिंग व्यवस्था की जानकारी प्रबंधन को पहले ही दी गई थी लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। विस्फोट और आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने प्रभावित परिवारों को मुआवजा और नौकरी देने की मांग को लेकर आज रामगढ़ पतरातू मार्ग जाम कर दिया। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली मंडल में स्थित हेजलो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में देर रात बड़ा विस्फोट हुआ। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई जबकि 9 अन्य घायल हुए हैं। रिएक्टर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्य प्रदेश के जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है।
2: मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय है इसके चलते प्रदेश के पूर्वी हिस्से में पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही है और कई जगह नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने आज सिवनी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दतिया, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़ समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा कई अन्य जिलों में तेज बारिश और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार है लेकिन उत्तर और तटीय ओडिशा के कई इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में करीब 14 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।
3: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी बना हुआ है और 7 जिलों में लगभग 14 लाख लोग इससे प्रभावित है। हालांकि मुख्य नदियां का जलस्तर घट रहा है लेकिन कई गांव अभी भी पानी से घिरे हुए हैं। बालेश्वर में पानी में डूबे कई गांव के लोग अभी भी नाव पर निर्भर हैं और उन्होंने पके हुए भोजन, सूखे राशन और पीने का पानी की भारी कमी की शिकायत की है। अब तक इस बाढ़ में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच IMD ने आज से इसी महीने की 26 तारीख तक उड़ीसा में बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत में अगले 2 से 3 दिन के दौरान इसी तरह की स्थिति रहने की स्थिति है। मौसम विभाग ने मछुआरों को सोमवार तक अरब सागर के पूर्व मध्य हिस्सों और बुधवार तक बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य हिस्सों में समुद्र में न जाने की सलाह दी है। भारतीय सेना ने हवाई निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया और युद्ध क्षेत्र तक पहुंच बढ़ाने के लिए सीमावर्ती राज्य पंजाब में अत्याधुनिक ड्रोन से लैस अपनी पहली बास बटालियन का गठन किया है। ये बटालियन आकाश में निगरानी तंत्र और युद्ध क्षेत्र में दुश्मन पर बढ़त के रूप में काम करेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने प्रतिष्ठानों से आग्रह किया है कि वो EPF के दायरे से बाहर कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान 2026 का लाभ उठाएं। इस अभियान का उद्देश्य नियोक्ताओं के स्वैच्छिक अनुपालन को सुगम बनाना और पात्र श्रमिकों को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा के लाभ प्रदान करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब बात खेलों की। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज महिला डबल्स के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टैन निंग से होगा। ये मुकाबला नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा।
4: भारतीय जोड़ी ने कल चीन की चौथी वरीयता प्राप्त जिया यी फेन और झांगशू जियान को 16-21, 21-15 और 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने इस चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक पक्का कर लिया है। त्रिशा और गायत्री विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला युगल जोड़ी भी बन गई हैं। ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा पहली भारतीय जोड़ी थीं जिन्होंने 15 साल पहले लंदन में कांस्य पदक जीतकर ये उपलब्धि हासिल की थी। विष्णु PS की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
0: वहीं FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टल फेन में भारत का सामना शाम 7:30 बजे से नीदरलैंड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिलामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। अमेरिका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा के $20 अरब मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
6: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
7: भरोसे वाले से लेंगे,
6: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
7: और कीमत भी।
6: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
8: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
9: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
10: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
11: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
10: आज यहाँ SP ज्वेलर्स जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
12: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
10: कॉल करें 85070-32042 पे।
13: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
14: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
13: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
14: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
13: संपर्क करें 9939365923।
15: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
16: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
17: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
18: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
17: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड गोपालगंज।
15: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
5: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 9797-14-86-164।
6: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
7: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
8: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
0: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: छोटे से ब्रेक और दोपहर न्यूज के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त भारती, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 88 91, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ेंगे, और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँच चुके हैं जो कि लिख रहे हैं कि पप्पू ठाकुर जी की राजेश खन्ना साहब का फ़ैन हूँ इसीलिए उनका गाना सुनता हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत गाना बजा था राजेश खन्ना जी का, और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं अपने पसंद से कोई हिंदी गाना बजा दीजिएगा मैम, और मेरा नाम राजकुमार शर्मा है और मैं सारण जिला में मनपुर गांव से हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं हाय भारती जी नमस्कार, इरशाद मास्टर ग्राम धनाव धनु आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ और मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं भारती दी गुड आफ्टरनून, मैं भी जुड़ गया हूँ और योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आपके साथ मैं बरजू ग्राम मन ध्रुव जिला रांची झारखंड से जुड़ा हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो कि यहाँ फरमाइश पहुँची हुई है लिख रहे हैं हेलो गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग मैम, और टुनटुन यादव विलेज पठरा पट्टी पठान पट्टी पोस्ट पठरा जिला गोपाल बिहार से हमें भी गाना सुनना है, और गाने की बोल पहुँची हुई, और गाने की बोल है पंछी नदिया पवन के झोंके कोई, और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश है। तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
2: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लिया।

तो अभी हम लोगों ने सुना टुनटुन जी की तरफ से एक प्यारा सा सॉन्ग और गाने की बोल थी पंछी नदिया पवन। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि बिरजू की टुनटुन जी की पसंद वेरी नाइस धन्यवाद। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि उत्तम सोनी जी वाओ बिरजू भैया जुड़े हैं, नमस्ते वेलकम है सर रेडियो रिमझिम में और बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं रामविलास प्रसाद कुशवाहा खरीदपुर बगहा पूर्वी चंपारण बिहार से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं हेलो नमस्कार आपको और सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। और मैं भी आपकी प्रस्तुति प्रोग्राम के साथ में जुड़ गया हूँ तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो कि हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैं राहुल कुमार और कुनवा का रहने वाला हूँ और मुझे भी गाना सुनना है। और गाने की बोल यहाँ पहुँच हुई है और मूवी है तुमको चाहा था तुमको चाहेंगे और सॉरी मूवी है हमको तुमसे प्यार है और गाने की बोल है तुमको चाहा था तुमको चाहेंगे। और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुँच हुई है राहुल जी की तरफ से। तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
5: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
5: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
5: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोपराइटर विजय कुमार केडिया।
7: कॉल करे 87-894-18744।
8: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो टूरिज्म 90.4 FM में, और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:09 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। और इसी के साथ यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98-52-78-82-91, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72-77-16-65-96। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि संजय यादव दुबई से जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग मैम, और एक बार फिर से आपका स्वागत है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैम गणेश जी ने बोले हैं कि फरमाइश भेज दो और गाना बज जाएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी मनीष जी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि उत्तम भाई को नमस्कार, कैसे हैं भाई जरूर बताइएगा। और अगली यहाँ फरमाइश जो कि हमारे पास पहुँची हुई है, लिख रहे हैं कि राजकुमार कपूर शर्मा जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और गाना सुनना चाहते हैं, बोल रहे हैं कि कोई भी गाना अपनी पसंद से एक आज बजा दीजिएगा। और चलिए आपके लिए एक प्यारा सा सॉन्ग प्ले करती हूँ, और गाने के बोल हैं दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनहरा। तो चलिए बिना देरी के गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

अभी हम लोगों ने सुना राजकपूर शर्मा जी की तरफ से बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ। और लिख रहे हैं कि संजय यादव जी की मैम का सॉन्ग अच्छा है और गाना आपको पसंद है, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते जी, संजय कुमार प्रजापति पूर्वी चंपारण से जुड़ा हूँ और मुझे भी गाना सुनना है, तो जी आपकी भी गाना की फरमाइश पूरी की जाएगी और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है उत्तम सोनी जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं बिरजू भैया एकदम मस्त बिंदास झकास हूँ। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मनीष कुमार जी की मुझे भी गाना सुनना है और पिपरा नारायण से जुड़े हुए हैं और गाने की बोल यहाँ पहुँची हुई है और गाने की बोल है नीलकमल जी का सॉन्ग सुनना है और गाने की बोल है गुना। और काफ़ी गाने की फरमाइश अच्छी है, तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रमजन 90.4 FM में।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई एक गाथा जो हजारों सालों से दिलों में जीवित है, महाभारत। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष,

रिश्तों की उलझने और जीवन के सबसे कठिन सवाल। महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता। कभी अर्जुन के शस्त्र उठाने के पहले की दुविधा, तो कभी श्री कृष्ण के गीता का उपदेश, हर मोड़ पे नए प्रश्न और उनके जवाब, धर्म, युद्ध और जीवन के असली अर्थ की खोज। सुनना ना भूलें हर शुक्रवार शाम 7 बजे से रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। सुनो दिल से।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। और कार्यक्रम चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का, तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं थैंक्स मैम गाना प्ले करने के लिए, और लिख रहे हैं कि सुपर स्ट्रॉन्ग बोल देना मनीष भाई को आप। और यहाँ मनीष जी की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है कि थैंक्स मैम गाना प्ले करने के लिए, और लिख रहे हैं क्या मैम प्यार करना है, प्यार करना कोई गुनाह है क्या और गलत है क्या। गणेश जी बोलते हैं

0: तो नहीं, ऐसा नहीं है कि गलत है, लेकिन होनी सही इंसान से चाहिए, और सही इंसान से हो तो सब चीज़ खूबसूरत लगता है। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है। उससे पहले यहाँ हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो
1: हेलो,
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना।
1: करिश्मा कुमारी, पिंपरी नारायण से। बस
0: जी, करिश्मा जी कैसी हैं?
1: ठीक बानी, लगा कैसा बानी, क्या
0: ठीक बानी,
1: होता है?
0: बस रोए लोगिन के फरमाइश पूरा कर जाता वे। बता।
1: खाना ला हो गई बा, हमारा
0: हाँ, खाना तो हो गई बाबे। मनोरमा
1: दीदी कहा वाली।
0: दी बा उन्हें बानी अपन काम में लागल बनी हो के।
1: अच्छा, मनीष
2: भैया का गाना बजाई नहीं है?
0: तो बता दी रोवा लोग इनके कौन सा गाना सुने एक बार।
2: ये कॉल कर रही है, बता दी।
1: हमारा गाना सुनने को बाटे पवन सिंह के बजा दी।
0: कौन सा गाना?
1: कौन भी बजा दी।
0: ना ना, कॉल के लिए बंद रुआ, बताई ना।
1: बजा दी, रुकी बता दे। अखिया में कौन जादू चुरा के तू रख ले बानी, ये सुना दी।
0: और गाना डेडिकेट भी बा।
1: हाँ, सबसे पहले रुआ के और भारती दीदी के, मनीष भैया के, और स्वर्ण दीदी के, जितना सुनते हैं लोग हैं लड़के और भैया।
0: अच्छा जी, चलिए राहुल गाना प्ले कर दिले बनी, एंजॉय करी रेडियो रमजिम 90.4 FM में।
1: थैंक यू दीदी,
0: वेलकम।

अभी हम लोगों ने सुना करिश्मा जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग करिश्मा जी का और गणेश गाना कैसा है आप बताइए, और ज़रूर बताइए आपको गाना कैसा लगा। जी बिल्कुल, गाना बहुत ही झकास लाजवाब था, और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि

0: और यहाँ मनीष जी लिख रहे हैं कि करिश्मा जी ने चीटिंग किया है और सैड सॉन्ग था इसलिए सैड सॉन्ग सुनाए। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो, हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजिम 90.4 एफएम में।
1: नमस्ते
0: नमस्ते,
1: मैं दरभंगा जिला से बोल रहा हूँ मैडम, बहरी प्रखंड इनाई गांव से।
0: जी जी, वैसे नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम है अजीत कुमार राम।
0: अच्छा जी, और कौन सी गाने की फरमाइश है?
1: भोजपुरी में तो गाना सुना दीजिए मैडम, निरहुआ का।
0: और गाने की बोल?
1: ओ, गाने की बोल है निरहुआ का है, रहुआ देखल कर हमारा के खौम जी। जी जी।
0: और गाना सुना हूँ के बा?
1: जी जी, सबसे पहले आपको सुनाएंगे।
0: अच्छा जी, और गाना प्ले कर दे बनी।
1: जी जी,
0: एंजॉय करिए रेडियो रमजिम 90.4 एफएम में।

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रमजम 90.4 FM में, और सो है योर वॉइस योर चॉइस का। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सुंदर गाना बा मैम, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं सुपर झकास भोजपुरी सॉन्ग फरमाइश करने वाले भाई को धन्यवाद, और मैसेज करने वाले हैं बिजू जी। और ऐसा लग रहा है कि आज ही से सभी लोग भोजपुरी एक्सप्रेस की तैयारी में लगे हुए हैं, और सभी की तरफ से भोजपुरी गाने की फरमाइश पहुंच रही है। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास जो कि अगली फरमाइश पहुंची हुई है, जो कि लिख रहे हैं गुरु नानक पूरा बठिंडा पंजाब से जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं कि सोर सबलिनिया, सावित्री सबलिनिया, सुमन सबलिनिया, बेटी अंशु के साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ इनकी तरफ से गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, जो कि गाने की बोल है कोई तुम सा नहीं, और बहुत ही खूबसूरत गाना है। तो चलिए बिना देरी किए इनके लिए गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रमजिम 90.4 FM में।

0: तो अभी हम लोगों ने सुना गुरु नानक जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, और लिख रहे हैं मैडम जी आपने हमारी पसंद का गीत सुनाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और यहाँ पे काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि दिनेश कुमार जी जुड़े हुए हैं दिल्ली से, जो कि लिख रहे हैं कि अगर बीवी अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में ठूस ले तो समझ जाओ कि या तो वो घर का काम निपटाएगी या फिर आपको। और बहुत ही मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है पाजी यूपी 54 से, जो कि लिख रहे हैं कि चला जाऊँगा मैं धुंध की बादल की तरह, देखते रह जाओगे मुझे पागल की तरह, जब करते हो मुझसे इतनी नफरत तो क्यों सजाते हो आँखों में मुझे काजल की तरह। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हैं, फिर से आपका स्वागत है एक बार। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि रोहित देहरादून से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं दीवाने हैं तेरे इस बात से इनकार नहीं, दीवाने हैं तेरे इस बात से इनकार नहीं, कैसे कहें कि हमें तुमसे प्यार नहीं, कुछ तो कसूर है तेरी इन आँखों का, अकेले तो हम गुनहगार नहीं। और बहुत ही खूबसूरत लाइन है रोहित जी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि किसी को नज़र का तेरा इंतज़ार आज भी है गोपालगंज बिहार से जुड़े हैं माजागढ़ से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और नाम तो आपने मेंशन नहीं किया है तो ज़रूर बताएं आप कौन हैं, तो वैसे भी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे हमारे पास फरमाइश पहुँची हुई है अंस अंसारी जी की तरफ से, और चलिए वॉइस के माध्यम से फरमाइश है तो सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश और क्या है इन वॉइस में।
1: हेलो हाय, हम भी जुड़ गए हैं रेडियो एम जी में, हमको एक गाना सुना दीजिए भोजपुरी, गाने का बोल है दुधवा पिया के पुसली माई सुकुमारो

0: तो अभी हम लोगों ने सुना काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग माई जैसन हो के करी दुनिया में प्यार, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, भगवान सबकी माँ को लंबी उम्र दे और साकिब जुड़े हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और यहाँ पे वॉइस की तरफ से फीडबैक मैसेज पहुंच चुका है, तो चलिए प्ले करते हैं।
1: गाना सुनाने के लिए धन्यवाद।
0: और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि राम राम भारती जी, कैसी हैं आप, मैं फगवाड़ा पंजाब से राज गारमेंट्स, मुझे गाना सुनना है पिया के गांव और मूवी का, पिया के गांव मूवी का, और आंख से आंख मिल के दो चार हो गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इससे पहले यहाँ पे हमारे पास फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि मैडम जी हमारा गाना कब बजेगा, और गाना सुनना चाहते हैं प्रतिज्ञा मूवी, प्रतिज्ञा टू मूवी का, और गाने की बोल है होठवा से भर के अवध की दुनिया। और मैसेज करने वाले हैं मिथिलेश चौहान इंदिरा नवादा से, और अपने दोस्तों को सुनाना चाहते हैं छुटन तिवारी सुलट, उनको गाना सुनाना है। और चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
2: थोड़ा से फुर्सत मिली तब ना दूसरे के बारे में।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग मिथिलेश चौहान जी की तरफ से, और गाने की फरमाइश थी चांद से भी सुंदर, और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग था। और इसी के साथ बढ़ेंगे

0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में तो 4 बज चुके हैं, इसीलिए अब सभी को बाय बाय कहने का समय हो चुका है। और आज ये देख के खुशी हुई कि आज सभी के गाने की फरमाइश को पूरा किया गया, और जितने लोग सैटरडे को जुड़ते हैं सभी के गाने की फरमाइश पूरा हो चुकी है। और इसी के साथ यहाँ बाय बाय के मैसेज पहुँच रहे हैं सभी के साथ, और हमारे पास कॉल के माध्यम से भी फरमाइश पहुँच रही है। तो चलिए सुनते हैं क्या इनकी फरमाइश। हेलो, प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। आपकी आवाज बहुत अच्छी नहीं आ रही है। अच्छा, और कौन सा गाना सुनना है आपको? दूल्हे राजा का और गाने की बोल क्या है? आवाज कट कट के आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा,
1: जितना लोग सुना सब सुनते है। अरे रुक के,
0: नाम बता दिया कौन?
1: कौन से पर है? मुकेश भाई पर है।
0: तो चलिए गाना प्ले कर दिल बनी, एंजॉय करिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

तो श्रोताओं, समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का, और इसी के साथ यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852788191, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी के से लूँगी आज विदा, और सुनते रहिए ये प्यारा सा

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
5: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से। All right.

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
1: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
9: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
10: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
11: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
10: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
11: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
10: संपर्क करें 9939365923।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
12: प्रस्तुत बा निर्गुण रउआ सबके सेवा में छोट भाई के द्वारा, हम और बाबूजान भाई। देखी एके बाबूजान भाई से जौले वाले कितना बढ़िया आ गलती के क्षमा करब। प्रस्तुत बा निर्गुण, सुनी संसार में का होता आ का करे के चाही। शेरबा
13: डाली डाली बगिया में चहक

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388 9470 या 9198 8668 6973।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493456151 या 9707065775।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
9: All right.

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी। सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
2: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
4: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
8: All right.

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
1: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
6: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
7: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
8: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
9: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
8: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101-87952। नियम और शर्तें लागू।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714861.
4: Now pick it up, now pick your phone up.
5: Hello.
4: Pick it up,
5: hello.
4: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
2: हेलो, नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: क्या समाचार है?
1: मेरा समाचार ठीक है, आप अपना बताइए।
2: हम भी ठीक है।
1: तो क्या हो रहा है अभी?
2: अभी दोपहरिया का खाना बन रहा है मैम।
1: अच्छा, बच्चों सब के लिए?
2: हाँ,
1: स्कूल गए हैं सब।
2: जी मैम, आपका खाना पीना हो गया?
1: हाँ हाँ, मेरा हो गया है।
2: गाना सुनना है मैम?
1: बता दीजिए।
2: कौन सिंह का गाना है? निधि आगे मारल भूला आँखियों ना खोली है।
1: अच्छा, और गाना सुनाना भी है?
2: जी मैम, मनोरमा मैम को सभी जितना सुनते हैं रेडियो रिमझिम परिवार सभी को सुनाना है मैम।
1: ओके जी, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन 90.4 एफएम में।
0: थैंक यू मैडम जी, आपको गाना सुनना है।
1: जी जी बिल्कुल सुनाऊंगी, नाम बता दीजिएगा।
0: सर अब मैं होती से नागरिक है,
1: अपना नाम बता दीजिए आप।
0: अरुण कुमार मिश्रा, गोपालगंज से बोल रहा हूँ।
1: अच्छा अच्छा, और कौन सा गाना बोले हैं अभी?
0: नशा सर अब मैं होती से नागरिक है।
1: और गाना सुनवाना भी है किसी को?
0: हाँ जी, पूरा अपना रेडियो रंगीन का जितना मेरा ग्राउंड है सुनाना है, फैमिली को भी सुनाना है, जितना भी होता है सुनाना है।
1: और आप बताइए, आप ठीक हैं?
0: जी ठीक है जी।
1: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9790076575।
6: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
7: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो,
9: हेलो
8: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 91.4 FM में।
9: नमस्ते मैम, कैसे हैं?
8: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? क्या हो रहा है अभी?
9: आप ही के पास कौन सा?
8: अच्छा हाँ, कॉल आया हुआ था किसी का।
9: आज सब बढ़िया है ना?
8: आज सब ठीक है।
9: गाना सुनना है,
8: बता दीजिए।
9: सॉन्ग सुनना है।
8: कौन सा
9: गाना?
8: हाँ,
9: दिल मेरा

0: आज आपकी आवाज में भी गाना सुन ले, आप भी बहुत अच्छा गाती हैं। अच्छा वो दोनों में आवाज सेम लगता है,
1: लेकिन
0: गाना
1: नहीं आता। अच्छा
0: अच्छा यहीं से है।
1: हेलो।
0: हाँ हेलो, नमस्ते, क्या हाल चाल है? वो भी ठीक है। अच्छा लगता है, आवाज बहुत ही अच्छा है, गाना आप बहुत ही अच्छा गाती हैं। आप दोनों की आवाज बिल्कुल मिलती हुई है,
1: दोनों का आवाज एक ही जैसा है। कोई पहचानता भी नहीं है घर पे, कोई कहीं
0: पे। अभी मैं कंफ्यूज हो गई,
1: कोई पहचानता नहीं।
0: तो तबीयत कैसी है?
1: ठीक है, उनका तबीयत
0: ठीक है ना?
1: ठीक है, इसलिए तो गा के सुनाई आपको।
0: बढ़िया है, ठीक हो गई। और गाना डेडिकेट है
1: आपको है, मनोरमा मैम को है, और सोनू सर है उनको भी है, बाकी सब सभी को है
0: जी। ओके, फिर गाना प्ले कर रहे हैं।
1: थैंक यू मैम, सुना दीजिएगा।
0: ओके, रेडियो रंजन में कॉल किए इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी नमस्कार मैडम जी, मैं मत्स्यनगर जिला गुना मध्य प्रदेश से।
1: जी जी, कैसे हैं आप?
0: आज मैडम जी आपका रेडियो सुन रहे हैं और बेटे हैं, सोपर ही हैं।
1: बता दीजिए पहले अपना, उसके बाद उनका। हेलो
0: जी जी,
1: हाँ जी बोलिए।
0: आज बैठे हैं दुकान पर और रेडियो सुन रहे हैं आपका।
1: अच्छा जी, और ठीक है ना? खाना वाना खा लिए?
0: हाँ हो गया खाना माना, सब हो गया है।
1: चलिए जी, फिर गाना बता दीजिए मुझे, कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: जी मैडम जी, गाने के बोल है, पिक्चर का नाम है आशा।
1: आशा
0: आशा, और उसमें गाने के बोल है, तूने मुझे बुलाया शेरा वाली है, मैं आया मेरा वाली है, मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ मैडम जी सावन बाद।
1: अच्छा जी,
0: जी रक्षाबंधन के बाद जा रहा हूँ, इसलिए भजन सुनना चाहता हूँ।
1: अच्छा, और गाना सुनाना भी है?
0: जी भारती मैम को, सोनी मैम को, मनारामा मैम को, और गोपाल ओझा जी है, गजराज सिंह लोधी है, जीतेन धाकड़ जी है।
1: जी जी बिल्कुल, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: बैंड जी
1: ये आपको आज बज जाएगा, नहीं तो कल बज जाएगा।
0: ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।
1: जी जी बिल्कुल।

0: अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
2: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
1: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HFD लक्स 76,275 रूपए, Glamour X 101,354 रूपए और X3 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92-99-22-567 या 97-7-14-86-164।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9939365923।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
9: जी हाँ, कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
9: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: Now pick your phone up.
11: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो
13: हेलो,
12: ये बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन
13: 90.4 FM में। उठाएगी हमारा?
12: नहीं नहीं, उठाऊंगी क्यों नहीं, बस थोड़ा सा कुछ काम में बिजी थी इसीलिए नहीं ले रही थी। सबका कॉल उठाया गया था, आपको कैसे भूल जाए लोग।
13: क्या हाल चाल है अपना?
12: हम सबका हाल चाल ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं?
13: हम लोग भी ठीक है।
12: और घर में सब कोई कैसे हैं?
13: ठीक है। दो चार दिन थोड़ा बाबा धाम गया था, लगाए थे ना, 10-12 दिन प्रोग्राम नहीं सुन पाया
12: जी।
13: उधर था थोड़ा तबियत खराब हो गया, आज गोपालगंज में आया। ठीक।
12: अच्छा जी, चलिए बढ़िया, फिर बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
13: क्रांति फिल्म का चाना चूर गरम बाबू मलाया,
12: और
13: गाना है गुड्डू है, गुड्डू है विकास, रंजीत सोलाना टोला
12: जी,
13: रिया रूबी, आप है आपका टीम हंस रही है।
12: कोई बात नहीं, कह दीजिएगा वो भी सुन लेंगी, फरमाइश भी किए हैं।
13: चाना बैठा,
12: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिंग 92.4 FM।
13: ओके, नमस्ते
12: नमस्ते।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: वालेकुम
0: अस्सलाम।
1: थोड़ा कितना सुन रहा था?
0: जी बिल्कुल सुनाऊंगी। नाम बता दीजिए अपना।
1: हमारा नाम है रफीक अली।
0: जी जी। और कहाँ से हैं आप?
1: हम बोल रहे हैं गोपालगंज पठानपट्टी बजाते हैं।
0: जी। और गाना कौन सा सुनना है आपको?
1: गाना सुनना है गाड़ी वाला नहीं है
0: कौन सा?
1: कमर में साड़ी नहीं है नी सॉन्ग है जो
0: कमर में दागी भैया।
1: हाँ जी जी।
0: और गाना सुनाना भी है?
1: गाना की गाना सुनाना जितने लोग सुन रहे सब लोग रेडियो में सुनने के लिए सब लोग बताता।
0: जी जी बिल्कुल। तो चलिए गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
3: धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई एक गाथा जो हजारों सालों से दिलों में जीवित है, महाभारत। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष, रिश्तों की उलझनें और जीवन के सबसे कठिन सवाल, महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता। कभी अर्जुन के शस्त्र उठाने के पहले की दुविधा, तो कभी श्री कृष्ण के गीता का उपदेश, हर मोड़ पे नए प्रश्न और उनके जवाब, धर्म, युद्ध और जीवन के असली अर्थ की खोज। सुनना ना भूलें हर शुक्रवार शाम 7 से रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। सुनो दिल से।
4: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
5: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
6: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
5: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Now pick your phone up.
9: Hello. जब फोन गिनते बजते हैं तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
10: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM। मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
12: मेरा भी ठीक है। कितना देर से लगा रही हूँ मैडम।
11: अच्छा,
12: मुझे गाना सुनना है।
11: बता दीजिए कौन सा।
12: आज की रात।
11: अच्छा, आज की रात मजा हुस्न का।
12: हाँ।
11: अच्छा जी, और गाना सुनाना भी है।
12: हाँ, सुनाना भी है। सबसे पहले आपको और उसके बाद सबका तली को और तमाम सुनने वाले रेडियो रिमझिम सबको सुनाना है।
11: जी जी बिल्कुल। और तबीयत ठीक है आपकी।
12: हाँ ठीक है
11: जी। तो चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
12: थैंक यू मैम।
11: वेलकम।
13: आज तक क्षमा पे परवाना मरता था, लेकिन आज परवाने पे ये शमा मरने को तैयार है।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
0: नमस्ते। हेलो
1: जी।
0: हाँ नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, क्या हाल चाल है?
0: विकास कुमार बोल रहा हूँ, हिंसापुर से।
1: कैसे हैं आप?
0: बढ़िया मैम, आप कैसे हैं?
1: ठीक है।
0: और बताइए, मौसम मौसम कैसा है?
1: मौसम तो अभी सुहाना बना हुआ है गोपालगंज का।
0: अच्छा, सुहाना बना रखा है। इधर तो बहुत बहुत तेज धूप है
1: जी।
0: इधर बहुत धूप है, गर्मी भी बहुत तगड़ा हो रहा है।
1: गर्मी भी तेज है। नहीं तो अभी मतलब इधर फिलहाल थोड़ा ठीक है।
0: इधर में क्या है ना मैडम, वो कंपनी का एरिया है ना, कंपनी इंडर एरिया है ना, इसलिए थोड़ा गर्मी रहती
1: है। तो वहाँ कंपनी के रूम में रहते हैं लोग या फिर मतलब अपना रूम में?
0: क्या चीज?
1: आप लोग वहाँ रहते हैं तो कंपनी के रूम में रहते हैं कि अपना रूम लेके?
0: नहीं, कंपनी से अलग रहते हैं रूम।
1: चलिए सभी ठीक है।
0: कंपनी में कौन रहेगा, इतना गर्मी होता है जी, हालत खराब हो जाएगा।
1: तो आज कौन सा गाना सुनने आपको?
0: हमको आज गाना सुनना है तो दिल ऐसा किसने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। यही वाला?
1: पूरा नहीं गाइए, पूरा नहीं गाइएगा, थोड़ा
0: बढ़िया लग रहा है ना।
1: हाँ।
0: ये पुराने सॉन्ग है।
1: और गाना सुनाना भी है किसी को?
0: सबसे पहले आपको।
1: अच्छा,
0: जितना रेडियो रंजन सुनने वाले सबको। और सब बढ़िया है ना मैं?
1: हाँ, और सब बढ़िया है।
0: वो जो नंबर दे रहे थे वो तो नंबर को ऐसे भी ऑडियो कॉल लगाते हैं तो लग रहा है
1: ऑडियो कॉल लगा रहे।
0: जो बुधवार को जो नंबर आप दिए थे 291 वाला है लास्ट में, वो ऑडियो कॉल भी लग रहा है।
1: तो कॉल लग रहा है पर उस पर कोई कॉल उठाएगा नहीं, केवल व्हाट्सएप पे उस पर मैसेज किया जाएगा।
0: अच्छा, मैंने जैसे बोल करके भी मैसेज कर सकते हैं तो गाना सुन लेंगे ना?
1: हाँ, व्हाट्सएप पे बोल कर मैसेज कर लीजिएगा कि मुझको ये गाना सुनना है तो हो जाएगा।
0: अच्छा।
1: हाँ, व्हाट्सएप पे आप बोल के मैसेज डाल दीजिए, हो जाएगा।
0: चलिए
1: गाना सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9790706575।
7: Now pick it up,
8: hello.
7: Now pick your phone up,
8: hello.
7: Pick it up,
8: hello.
7: Now pick your phone up.
9: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो, जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में। मैडम जी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
11: मैं भी ठीक हूँ।
10: नाश्ता हो गया आपका?
11: जी, आपका हो गया? रात का समाचार बताए, अच्छा बने?
10: हाँ हाँ, हम ठीक बने, बस रेडियो से परिवार अच्छा बन। सबके कृपा बात
11: है, अच्छे रहे, प्रोग्राम अच्छा चलते रहा।
10: तो कौन सा आज गाना सुने के बाद?
11: गाना सुना दी सजनो बैरी भैले हमारा।
10: अच्छा, और गाना सुना हूँ के बाद?
11: जी, सबसे पहले आपको आज जितना रेडियो मार्ग सुनता है, सब दोस्त सुनता है सबके साथ।
10: चलिए फिर गाना प्ले करते नहीं सुना चाहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
11: मैडम जी, नमस्ते।
10: नमस्ते।

0: हेलो जी नमस्ते, मैं नेपाल जी छोटा सा ग्राम खोड़ामल सिंह प्रदीप चंपारण बिहार से संजय कुमार साहब बात कर रहे हैं।
1: जी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: इसके लिए दिल से धन्यवाद। अपना सुनाइए अपना और हाल खबर रेडियो रिमझिम संपूर्ण परिवार कैसे हैं, आप कैसी हैं?
1: हम सभी ठीक हैं।
0: चलिए आप पूरी टीम के लिए हमारे ओर से बहुत बहुत शुभकामना जाता है कि एकदम स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, मुस्कुराते रहे, ऐसे ही हम लोग से बात करते रहे, अपना हम लोग फरमाइश बजवाए, आप लोग बजाए, हम लोग मनोरंजन करने के लिए तैयार है, मनोरंजन
1: नहीं अभी तो हम नहीं करते हैं क्योंकि थोड़ा काम भी ज्यादा रहता है तो कर नहीं पाते हैं। और मान लीजिए बोलना है तो फिर करेंगे तो प्यास और भूख तो लग ही जाएगा।
0: जी जी जी जी चलिए बिल्कुल धन्यवाद। चलिए आप नहीं किए तो क्या हो गया, हम भी तो सही नतीजे, हम भी तो हम लोग तो है नहीं है, लेडीज के लिए है, होता है। जी जी ठीक है, उन लोग करेगा, हम लोग को फल भी मिलेगा उनमें से थोड़ा सा। जी जी और सब विशेष हम लोग तो मालूम चलिए गया कि आप भी ठीक है, हम भी ठीक है। अपना उधर मौसम बता दीजिए थोड़ा।
1: मौसम यहाँ का सुहाना बना हुआ है अभी,
0: मौसम इधर भी है लेकिन धूप है, गर्मी है, गर्मी है, फिर भी ठीक है। चलिए बरसात के मौसम है, कभी धूप कभी छांव, सही है। जी आज हमारे मनपसंद के गाना आज बजा दीजिए,
1: बता दीजिए
0: नजर।

0: के सामने। यही संग सुना दीजिए आप
1: जी जी। और गाना सुनाना भी है?
0: गाना सबसे तो पहले आपको रेडियो रिमझिम संपूर्ण परिवार को और दोस्त में हो गया सिखाने से मामा जी घुमा से उत्तम कुमार जी राम सुहाज बगान से अजिन पाया चला गोषम से नरेश सोनी दीपक दास उदय मैं मध्य प्रदेश से राजेंद्र यादव भारती पंतलाल गौतम उत्तर बिहार से प्रदेश से कहिए ना कि उत्तर प्रदेश से विशेष कर को हमारे नाम कहने पता तमाम दोस्त को मोहम्मद सलाल अंसारी है मझौलिया को विशेष करके उनको सुनाते हुए अभी आपसे विदा लेंगे। नमस्कार।
1: नमस्कार रेडियो रंजन में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान लिया।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द?
4: अरे तो उसे डांटते क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
8: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
7: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
9: ठक ठक।
10: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
0: अच्छा, मिला ही नहीं
10: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
0: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
10: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
0: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
11: Now pick your phone up.
12: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: नमस्ते
14: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
13: हम तो बुझे कल खाना नहीं उठेगा।
14: नहीं नहीं उठेगा।
13: और सब बताइए?
14: और सब ठीक है, आप बताइए?
13: मेरा भी ठीक है। खाना ना हो गया है?
14: हाँ, खाना हो गया है, खा के ही आए हैं।
13: चलिए बढ़िया है। अभी तो काम अपना छोड़ कर लगा रहे थे, तो पहला बार में कॉल लग गया।
14: अच्छा, चलिए आज तो बढ़िया है।
13: मतलब आज ज्यादा परेशानी नहीं हुआ है? तो मौसम कैसे है गोपालगंज का?
14: अभी तो मौसम सुहाना बना हुआ है गोपालगंज का।
13: इधर भी वैसा ही है। मेरे को गाना सुना दीजिए। अंकुश राजा की आवाज में सुना दीजिए रक्षाबंधन सॉन्ग।
14: अच्छा, अंकुश राजा की आवाज में रक्षाबंधन का सॉन्ग।
13: तो सॉन्ग बजाइए, बहनी तुम तो कबो ना भुलाए।
14: कौन सा?
13: बहनी तुम तो हरों के कबो ना भुलाए, अंकुश राजा की आवाज में।
14: और गाना सुनाओगे?
13: सबसे पहले तो आपको, उसके बाद कोनी दीदी को, मनोरमा दीदी को, करिश्मा को स्पेशल में। अभी करिश्मा जी मशीन चला रही है, कपड़ा सी रही है।
14: अच्छा,
13: और जितना रेडियो रेंज है सुन रहे सभी लोग को सुनाना है।
14: ठीक है।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 94.4।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: अरे कम से कम 100 बार फोन लगाए हैं, अभी आ रहा है, एक घंटे लगा रहे हैं फोन।
0: अच्छा, तो बिजी जा रहा हूँ।
1: आप फर्स्ट टाइम लगाए हैं आज?
0: हाँ।
1: वो गाना सुन रहे हैं मैडम जी?
0: नाम बता दीजिए।
1: फिल्म का
0: नहीं,

0: 5 बजे जो शो चलता है 5 से 7 यही हेलो माय चॉइस का।
1: शाम के?
0: हाँ शाम को मिल जाएगा आज सुनने को, नहीं तो कल शाम को।
1: शाम को ना?
0: आज शाम को भी मिल सकता है सुनने को, सुन लीजिएगा।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, रेडियो रिमझिम में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
6: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
7: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
6: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
7: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
6: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
6: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
7: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
8: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो।
10: हेलो
9: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
10: जी नमस्ते मैम।
9: नमस्ते
10: जी, क्या हमारा इंदा बोल।
9: कैसे हैं आप?
10: बढ़िया है जी, हम आ रहे थे मैम।
9: जी अच्छे हैं।
10: अरे तब आए तो पूजा है ना मैम?
9: पूजा है, पूजा
10: का आज वो क्या बोलते हैं वो नागपंचमी का जो नई पूजा होता है 2 दिन बाद।
9: हाँ हाँ, सप्तमी
10: वही पूजा। मेरे घर पर भी पूजा हो रहा था, वो मेरी मैडम फोन करी, बोली की आ जाइए पूरी खीर खाने के लिए।
9: मेरे यहाँ भी हुआ है।
10: और बताइए क्या हाल चाल है?
9: और सब ठीक है। नहीं, सावन में थोड़ा ज्यादा ही पूजा होता है।
10: वो जैसे नाग पंचमी होगा तैसे वो तो पूजा हम लोग भी बढ़िया है, एकदम हॉट है, तंदुरुस्त है एकदम। मंगलवार का दिन गाड़ी पकड़ेंगे यहाँ से चले आएंगे अपने देर।
9: जी जी आइए। और बताइए आज गाना कौन सुनना चाहते हैं?
10: गाना तो सुनना है वो नील कमल का राखा बंधन वाला।
9: हाँ।
10: क्या उसको गाना
9: गाड़ी से?
10: गाना तो नहीं आता है लेकिन गाते
9: गाइए ना, अच्छा लगेगा।
10: ये नया सॉन्ग है मैम।
9: हाँ।
10: अभी नया अभी जाना ये लॉन्च हुआ है नील कमल का।
9: गा रहे हैं, बोलते हैं कि हम गाते ही नहीं
10: है। नहीं मैम, मैं तो घर पे मैं अरजाम अरजाम गा रहे हैं। वो जो अरजाम है कीर्तन नहीं होता है, हरे रामा हरे कृष्णा वाला।
9: हाँ होता है
10: वो सब। हम जाते हैं गाने, वो गाने के लिए जाते हैं अरजाम।
9: अच्छा जी।
10: लेकिन मेरी मम्मी बोलती है कि बेटा ये सब करने से धर्म कर्म नहीं चलेगा बेटा, 2000-3000 रुपए मिलता है तुम्हें 24 घंटा का। हम मम्मी से बोलते हैं कि मम्मी उतना कम है बताओ 24 घंटा में, भगवान को तो भजन हम गा रहे हैं। कौन सा स्टेज पे डांस कर रहे हैं?
9: ये तो सही बात।
10: मम्मी बोलती है कि नहीं बेटा ये मत करो, तुम बेशक दुकान वकान कर लो सब्जी जी का अपना, आटा उटा चलेगा तो आटा उटा में जाना। और बताइए खाना वाना हो गया है रूपों में?
9: हाँ खाना तो हुआ है।
10: अच्छा, सबसे पहले आपको ये गाना सुनवाना चाहते हैं, ठीक है?
9: जी जी।
10: जितना रेडियो रंजन सुनने वाले हैं सब उड़ता हो। एक मेरे अभिषेक भाई है, वो बनारस के हैं, गाजीपुर का, वो मेरा हुआ का गाँव का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का।
9: जी।
10: वो बोल रहे हैं कि गाना तो बहुत बहुत गाना फेवरेट है, फरमाइश ये हो भाई।
9: हाँ।
10: हम बोले रखा बंधन का है ना यार।
9: हाँ, इसीलिए चलिए फिर गाना प्ले करते हैं।
10: ठीक है, ओके।
9: नमस्ते, रेडियो रंजन में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
10: ठीक है, ओके।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपके रेडियो
1: जी। भारती जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: क्या हाल चल रहा है?
0: हमारा हाल चाल तो ठीक बरबो बताइए, तो कैसे बानी?
1: हाँ ठीक है बानी, लगातार मोबाइल पे कॉल हुआ और लग गए बैठे।
0: हम
1: दिल्ली से बोलता नहीं, बढ़िया से नाश्ता पानी कैसे रही है कि ना?
0: हाँ सब पूजा वाला तो जल्दी जल्दी में लेट हो गया तो ना ही कहीं नहीं आज।
1: हाँ देखा था नहीं ग्यारह पहुँच गया, पता ना भारती जी रास्ते में गाड़ी का मौसम कैसा होता है?
0: मौसम तो कभी धूप कभी छाव और ये हवा भी बहुत
1: कुछ होगा इनका भेजना दी हवा नहीं खे चलती यहाँ दिल्ली में बहुत उमस हुआ है समझ नहीं
0: उमस
1: बादल तो छेलेगा लेकिन बारिश हो जाए तो
0: बारिश मैंने उमस ना तो हो जरूर
1: उमस वाला जो दिन वचन कार्तिक महीना तक उमस वाला चल गया मौसम ऐसा होकेला धान के खेती के लिए होकेला जब तक उमस ना हो सही से तो धान बढ़िया से या कम फसल जब आप पकाव ना करे जन यही माने फसल के हिसाब से मौसम होकेला तो हर समय के नहीं खे ये अपना हिसाब से जो भी मौसम बा तो आज के गाना बचे समझे
0: नहीं
1: हम कहा तू खाइया हो या बाहर न जाइया। सबसे पहले रउआ के सोनू भाई बानी और जो सवाल ताकि जे राय और अभी कॉल कर जोड़ी तो नमस्कार और हम मिला था नहीं अपने के दोपहरिया में
0: रेडियो रूम से कॉल के नहीं खातिर बहुत बहुत धन्यवाद
1: अपने के भी धन्यवाद और तीन शुभ हो

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे।
6: मम्मी पापा मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
2: कॉल करें 87-894-18744।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
11: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
10: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
11: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
10: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
12: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
13: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
12: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
13: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
12: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
13: जानकारी है तो कॉल करे 62052-62112 पे।
14: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-029-94-911। जी हाँ, 80-029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो, सलाम, नमस्कार।
16: नमस्कार, वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन 90.4 FM में।
15: जी मैम, कैसी हैं?
16: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
15: हम भी अच्छे हैं मैम। आज लेट से चालू हुआ तो आज 4 मिनट लेट हो गया था।
16: नहीं,
15: लगा नहीं हमारा,
16: बिजी जा रहा होगा।
15: नहीं, पहले बंद था और 2 मिनट के बाद हो गया।
16: क्या हो रहा है अभी?
15: अभी तो टाइम से देखकर आपके पास कॉल लगा रहे थे, पहले से ही 10 मिनट काम सब छोड़ करके आपके पास।
16: चलिए सबसे बढ़िया है, नाश्ता कर सकते हैं।
15: जी मैम, हम लोग तो नाश्ता करके ही आते हैं।
16: अच्छा, चलिए सब बढ़िया है।
15: आता हो गया मैम। चलिए, तो आज वो रिकिट नहीं चला मैम।
16: कौन सा?
15: कल वाला रिकिट जो चलता है ना सुबह में।
16: वही तो रिपीट चल रहा है?
15: नहीं नहीं चल रहा है अभी वो वाला, पहले माई चॉइस वाला,
16: वही सेम रिपीट चल रहा है।
15: हम 9 बजे सुन रहे थे तो नहीं चल रहा था,
16: तो थोड़ा 1-2 मिनट इधर उधर हो जाता है, हो गया।
15: वही चल रहा है बस अलग अलग गाना बज रहा था लेकिन वो रिपीट नहीं चल रहा था, लगता है कुछ दिक्कत हुआ था।
16: पता नहीं लेकिन अभी तो देखी हूँ, आई हूँ मैं भी, सुनी हूँ तो नहीं चल रहा है।
15: चलिए तो गाना फरमाइश करते हैं, कितने नंबर पे है मैम? हम
16: 3 नंबर पे।
15: अच्छा मैम, वो गाना का फरमाइश ये है, गाना है मेरे महबूब कयामत होगी।
16: मेरे महबूब कयामत होगी,
15: हाँ यही बोल रहा।
16: और गाना डेडिकेट है?
15: डेडिकेट है भारत में रहने वाली भारतीय जनता को और सभी आरजे को।
16: सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4।
15: धन्यवाद मैम, बाय
16: बाय।
17: है दोस्तों, इश्क का दस्तूर ही कुछ ऐसा, जो इसको जान लेता है यही।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमिशन 90.4 FM में।
0: नमस्ते दीदी,
1: नमस्ते।
0: क्या हाल है?
1: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
0: मेरा भी ठीक है।
1: तो क्या हो?
0: खाना खा कर आए?
1: हाँ
0: रहे हैं क्या?
1: हाँ, गणेश
0: 2 दिन से टाइम नहीं मिला तो नहीं जुड़े हैं। कल भी नहीं जुड़े हैं, परसों भी नहीं जुड़े हैं। मेरा फरमाइश था सोमवार के दिन, एक हफ्ता कम्प्लीट हो गया तो मंगलवार बुधवार हो गया, 10 दिन हो गया मेरे फरमाइश के लिए। टाइम नहीं मिल रहा है, कल भी टाइम नहीं मिला है, परसों भी टाइम नहीं मिला है।
1: आपका फरमाइश आज ही ना कम्प्लीट।
0: संडे वाला दिन तो स्पेशल है,
1: करिश्मा जी का बुधवार को, आपका मंडे को।
0: सोमवार के संडे संडे का दिन जो फरमाइश भेजेगा, जितना लोग भेजेगा सब लोग का बजेगा। बस टाइम रहना चाहिए, टाइम रहेगा तो बजेगा, नहीं रहेगा तो नहीं बजेगा। तो आपका घर की पूजा हो गया है?
1: नहीं।
0: कब पड़ेगा?
1: होगा शुक्रवार को।
0: अच्छा, हम लोग का तो आज,
1: मतलब आज पूजा होता है लेकिन शुक्रवार को ये माता जी के मंदिर में कढ़ाई चढ़ता है।
0: अच्छा, और सब बताइए?
1: और सब ठीक है। फरमाइश बता दीजिए, आज कौन से गाने की है?
0: आज तो कॉल कर रहे हैं तो आप बेजी, इतना बेजी, अभी 11 बजे से 5 मिनट पहले ही से कॉल लगा रहे थे। पता नहीं कब मोबाइल खुलता है, अभी फोन लगाए तो बिजी बिजी बिजी बता।
1: मोबाइल खुल जाता है।
0: मनोरमा दीदी आई?
1: हाँ, वो भी आई है।
0: अच्छा, कल भी आपके पास थी क्या मनोरमा दीदी?
1: नहीं।
0: तो अभी आती है सीखने के लिए आपके पास?
1: नहीं, कभी कभी एक साथ बैठते हैं, अच्छा लगता है।
0: अच्छा, मतलब सर बोलते हैं कि चल आज सीखने के लिए क्या?
1: गाना बता दीजिए मुझे।
0: अब आप ही बताइए, फोन लगाए? हाँ, करिश्मा झगड़ा करेगी दीदी, मैं बतियाएंगे, आप बताइए। इतना देर से तो परेशानी हम झेल रहे हैं, बोले कि नहीं दीदी हम बतियाएंगे।
1: कोई बात नहीं, वो आप कर दीजिए या वो कर दे, बात देखी है, फरमाइश सुन लीजिएगा लोग अपनी।
0: तो मेरे गाना बजाना है नीलकमल सिंह की आवाज में, देव भाई सॉन्ग।
1: कौन सा गाना? गाना बता दीजिए।
0: जब साथ के देखे ना रहे तो प्यार का है कोई। सबसे पहले आपको, मनोरमा दीदी को, सोनी दीदी को, करिश्मा को, पूरा रेडियो झूल कर रहेंगे। नहीं, नीलकमल सिंह के आवाज में ये गाना।
1: ठीक है, फिर
0: ठीक है,
1: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM। नमस्ते।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करें 87894 18744।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
8: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
9: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
5: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
10: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
11: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
12: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,03,354 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714-86164।
13: अचानक दौरा पड़ा और सारा माहौल अंग्रेजी में ट्रांसलेट होने लगा, प्योर अंग्रेजी।
14: ओह सीरियस, वेरी सीरियस। नब्ज दिखलाइए।
13: नब्ज घर पर है।
14: व्हाट?
13: आई मीन बीवी घर पर है। दरअसल डॉक्टर दौरा मुझे नहीं, मेरी बीवी को पड़ा है। शी हैज बिकम वायलेंट टू एवरीबॉडी, काटने को दौड़ रही है।
14: भौंकती भी है?
13: फिलहाल नहीं, हो सकता आगे चलकर पंज भी मारने लगे। जल्दी कीजिए डॉक्टर प्लीज, मैं सिर्फ निहायत खतरनाक हालत में अपनी सिस्टर के भरोसे छोड़कर आया हूँ।
14: ठहरिए ठहरिए, केस हिस्ट्री हो गई, आप केस की ज्योग्राफी भी बताइए। जी हाँ, बहुत जरूरी है।
13: आप चलिए। चलिए तो डॉक्टर, मैं ज्योग्राफी क्या केस की इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स तक बता दूंगा। प्लीज डॉक्टर,
15: केस हाथ में लेने से पहले उसकी ज्योग्राफी जाना निहायत जरूरी है मिस्टर कुमार। इससे औजार साथ ले चलने में काफी मदद मिलेगी।
13: आप डॉक्टर नहीं है, कारपेंटर है। प्लीज डॉक्टर, औजार हथियार छोड़िए, मुझे बीवी की अलमारी नहीं बनवानी, इलाज कराना है।
15: ज्योग्राफी बहुत जरूरी है।
13: तो यूं समझ लीजिए डॉक्टर कि कपड़े तब्दील करके मेरी बीवी ने हाई हील सैंडल पहना।
15: करेक्ट।
13: जिसकी हील का एंगल 22.5 डिग्री नॉर्थ बाय नॉर्थ वेस्ट है। फिर उसने कोट पहना जिसके बटनों का रेडियस 2.25 सेंटीमीटर है। हमें पहले घर से 1 किलोमीटर साउथ वेस्ट मंदिर जाना था, फिर सड़क से 47 डिग्री कर्व लेकर बाजार जाना था जो समंदर की सतह से 1200 फीट ऊपर स्थित है और जहां पसीना भरी हवाएं चाड़े में भी चलती हैं। और कुछ?
15: शाबाश शाबाश, कहते चलो। हाँ, कहते चलो।
13: अभी मैं घर के दरवाजे को ताला लगा ही रहा था।
15: हाँ,
13: कि अचानक मेरी सीधी सादी घरेलू टाइप की बीवी पर दौरा पड़ा और वो कमबख्त सब कुछ अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने लगी। बोली,
16: हम कैबरे देखने चल रहे हैं ना।
13: और क्या? क्या कैबरे? रामकली, ये तुम क्या और फॉल बक रही हो?
16: देखो स्वीट हार्ट, जब से हम हॉलीवुड से लौटे हैं तब से इतने बिजी रहे कि कैबरिया डिनर पर भी नहीं जा सकी। मैं अपने शूटिंग प्रोग्राम में बिजी रही और तुम शिकार।
13: अरे ये तुझे क्या हो गया रामकली, तेरे बाप दादे कभी फिल्म कंपनी में नहीं रहे और ना ही मैंने कभी शिकार के नाम पर खटमल तक मारा है।
17: भैया ये मेरी भाभी को क्या हो गया? भैया
13: समझ में
17: अभी अच्छी भली चौकी में साग छोंक रही थी, अचानक क्या हो गया?
13: अरे लगता है साग छोंकते वक्त कड़वे तेल की गैस चढ़ गई इसके दिमाग को। लौटा रामकली, हिंदी में लौटा।
16: Shut up, you brute.
13: क्यों?
16: ये लड़की कौन है? Your girlfriend.
13: अरे तेरा सत्यानाश है रामकली, ये तो क्या बोल रही है? अरे तेरी ननद है, ननद है, मेरी सगी बहन नानू।
16: ओ लवी, मैं समझाओ ना। हम तुम्हारा डैम ननद फनंद कुछ नहीं समझते। कम ऑन स्वीटी।
17: बाप रे, भैया ये भाभी को कैसा दौरा पड़ा है?
13: अब देर करना ठीक नहीं है अनू, नहीं तो डिक्शनरी खत्म होते तक ये चल बसेगी। ठीक, तू इसे संभाल, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ।
15: मिसेस कुमार नमस्ते।
16: हेलो डॉक, हाउ आर यू? ठीक से कब लौटे?
13: क्या
16: याद है ना कि न्यूयॉर्क में तुम डॉक्टरी शुरू करने से पहले भेड़े चराया करते थे?
15: भेड़े न्यूयॉर्क? बाप रे बाप, वेरी सीरियस।
16: तुम हमको भूल गए डॉक, तुम हॉलीवुड आए थे ना, हमारा तुम्हारा लव अफेयर भी चला था, फिर कुछ दिनों के लिए तुम पागल हो गए थे। हरी पत्तियां घास खा लेते।
15: लव अफेयर? बाबा ये मेरी वाइफ सुन ले तो कितमास कर जाए। हम पागल हो गए थे, घास खाते थे? मिस्टर कुमार, शी इज वेरी सीरियस।
16: आओ डॉक्टर, हम ट्विस्ट करें। आओ भी, बरसों बाद मिले हैं। याद है ना तुम यूएनओ की बिल्डिंग के सामने रहते थे?
15: क्या कहा?
16: मैं भी वही थी।
13: अरे साहब झूठ बोल रही है डॉक्टर, यूएनओ नहीं, ये उन्नाव की रहने वाली है। इसका बाप आज भी कचहरी में नकल नवीस है।
15: करेक्ट।
13: ये आज जमाएत पड़ी है। सही कह रहा हूँ डॉक्टर?
16: आई से यू शट अप डॉक्टर। डॉक्टर मेरी पिछड़ी हुई मोहब्बत है। कम ऑन लेट्स सेलिब्रेट डार्लिंग। डॉक के लिए जरा शैंपेन तो लाना। रेमी केली की शूटिंग आज कैंसल।
15: रेमी केली? सारा केस इंग्लिश में है मिस्टर कुमार। मैं खुद नर्वस हुआ जा रहा हूँ। पानी प्लीज।
13: डॉक्टर इसका नाम रेमी केली नहीं, रामकली है।
15: यस,
13: डरो मत डॉक्टर, अपने औजार निकालो। मेरी रामकली लौटा, ये तेरे दिमाग पर कैसी बिना सोडे की चढ़ी है? इसे देखो डॉग, प्लीज।
16: आओ ना डॉग, लेट्स ट्विस्ट, कम ऑन।
15: मर गया
13: डॉक्टर,
15: ये तो मेरी तरफ बढ़ रही है। मैं चलता हूँ। इसके सिर पर ठंडा पानी डालो और कपड़े भी इसके ढीले कर दो और हाँ, तो हवा आने को खिड़की खोल दो।
13: आपके औजारों में थैला नहीं रहते डॉक्टर,
15: दवा खाने में पहुंच जाएगी।
13: ओफो, क्या करूं, ये अनु भी डर के मारे ना जाने कहां चली गई। देख मान जा रामकली, देख बोनस के सारे पैसे ले ले, कोट सैंडल शॉल सब उतार दे।
15: हाँ हाँ, शाबाश है, अब लेट जा, आराम कर, मैं खिड़की खोल देता हूँ। शाबाश।
16: सुनो।
13: हाँ हाँ, कैफरी चलेंगे, शैंपियन भी लाता हूँ।
16: क्या कैबरे शैंपेन? हाय राम, तुम दारू भी पीने लगे
14: क्या?
16: बोनस मिलते ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या? हाय राम, हनुमान जी मेरी रक्षा करो, ये न क्या हो गया?
13: लौट आई रामकली, देख अब तो तू ठीक है ना, है? तुझे क्या हो गया था रामकली?
16: मुझे क्या हो गया था, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ।
13: ठीक,
16: यूं ही जरा सा सिर चकराने लगा था चूल्हे की गर्मी से। अरे हम लोग बाजार जा रहे थे ना, अनु भी कहाँ है? चलो ना जल्दी, नहीं तो सारी दुकानें बंद हो जाएंगी।
13: चलो, अनु और पप्पू पड़ोस में होंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है तू अच्छी हो गई। देख पहले मंदिर चलेंगे, हैं? ले ये कोट पहन ले। ठीक, हाँ आओ चले। ताला चाबी उठा।
16: डार्लिंग माय लवली कुमार।
13: रामकली, फिर चली गई रामकली। अरे ये तू कैसा डबल रोल कर रही है, अच्छी बली हो गई थी अभी, फिर ट्रांसलेशन करने लगी।
16: सुनो हनी, आज हम क्लब में डिनर में क्या लेंगे?
13: पांच जूते और हुक्के का पानी। मैं कहता हूँ रामकली, ये कौन सी करंट रह रहकर तुझमें दौड़ जाती है?
16: कम ऑन, लेट्स वॉल्स।
18: राम मारो दम, भूतनाथ बोले बम बम बम, आ गए स्वामी, ओझा धर पटक आ गए। भूत चुड़ैल पेट आत्मा का पूर्ण पलायन, बोल बोल डंकनी तू किधर से आई है?
13: आपकी तारीफ
18: है, तारीफ जितनी भी करो कम है। बम बम बम जय काली, बकरा बजाए ताली, मंगाओ लाल मिर्चे, सफेद कौवे की चोंच, अरे पुराना जूता अभी छींकने लगेगी।
16: डार्लिंग, हाउ इज दिस चिंपैंजी? हमारी नई फिल्म का एक्स्ट्रा है क्या? ओह, इट्स अ फाइन मेकअप।
18: प्यार मोहब्बत मठा रही है बच्चा, सफेद कौवे की चोंच का धुआं देते हैं अभी, जा कन्या जा सामग्री ले आओ।
17: भैया ये पिछली गली की ओझा है, वर्मा आंटी ने भेजा है, भाभी के सिर से चुड़ैल पाली, मैं अभी
18: बैठ जा, पालती मार कर भोले ना, तभी तेरी अंग्रेजी उतार देते हैं। ओम नुम नुम नुम नुम नुम, बिना पासपोर्ट भागती नजर आएगी।
16: छोड़ो भी डालिंग इस मंकी को, कम ऑन, हम पॉप म्यूजिक का एलपी रिकॉर्ड सुने, आओ ना।
18: समझ गया बच्चा, समझ गया। बम बम बम बम बम बम बम, अंग्रेजी गायिका की चॉइल मालूम होती है।
13: हे भगवान, हिंदी गाने गाती तो रेडियो का ही खर्च बच जाता। ओझा जी, ये हिंदी में कन्वर्ट नहीं हो सकती।
18: घबराओ मत बच्चा, अभी ध्रुपद धमाल भी सुनाएगी, माई से तानपुरे की भस्म थमाऊंगा, मिर्च की धुनी दो।
16: You rascal! मैं तेरी चुटिया का एक लोड़ा दूँगी। जा हमारा गन तो लाना। I will shoot him.
13: क्या हो रहा है?
18: बेना घंटेशा तो क्या हो रहा है? अरे बच्चा, मैं भी कहूँगी और भगलों का बच्चा लेकर आता हूँ।
16: Oh shut up!
13: तेरे तो हो।
18: इस पर मेरी प्रेतिन आया बच्चा। अंग्रेजी ढंग से उतार नहीं होगी। मैं गमछा धोती उतार कर फूल पहन कर आता हूँ।
13: क्या करूं, कहां जाऊं? रामकली लौटा।
16: कम ऑन डार्लिंग, हाँ अपनी कार में घूमने चले।
13: ओ मत भूल रामकली की अपनी साइकिल भी पंचर पड़ी है, ये कार कहाँ से तेरे सिर पर सवार हो गई?
17: भैया ओझा जी कहते हैं कि विदेशी चुड़ैल है।
13: अरे विदेशी कहाँ से आई, अपने घर में सब कुछ देसी है, देसी घी को छोड़कर। ठहरा नू, मैं सोचता। अनु मिल गया।
17: क्या मिल गया भैया?
13: मिल गया अनु, मिल गया। तू झटपट हिम्मत करके इसका कोट उतार दे। शाबाश, पकड़। मैं भी तेरी मदद करता हूँ। खींच आतिन घसीट। देख घूमने लगी। रामकली।
16: अनु बीबी, हम लोग अभी यही हैं, मंदिर में गए, आखिर बात क्या है?
13: मैं गैराज से कार निकालने जा रहा हूँ।
16: हराम, अनु बीबी ये तेरे भैया को क्या हो गया?
19: कैसे बैगी बैगी बातें कर रहे हैं, मर गई, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ कोई।
20: मगर भाभी भूत तो तुम्हारे सर चढ़कर बोल रहा था।
19: भूत? हाँ, कैसा भूत?
21: कैसा भूत? डार्लिंग डियर स्वीट हनी, इस कोर्ट का भूत। कम पैसों में ये फॉरेन का पुराना माल फुटपाथ से खरीद लाया, सोचा करीब के चाड़े कट जाएंगे। मुझे क्या मालूम था कि पुराने कोर्ट की गर्मी इस कदर चढ़ जाएगी कि एक ही छलांग में ये हॉलीवुड जा पहुंचेगी। ओ डियर, लेट्स वॉल।
19: चुप भी रहो जी, शर्म है, सब बेच खाइए क्या? अन्नू बीबी का तो कुछ लिहाज करो। मैं क्या करूं, आज पहली बार ये कोट पहना। और
20: भैया इस कोट को कहीं दूर फेंकाओ, मेरी अच्छी भली देसी भाभी विदेशी चोंच में बोलने लगती है।
21: चलो अच्छा हुआ, नई नई बातें तो मालूम हो गई। डॉक्टर रतन सिंह पहले भेड़े चराते थे, 6 महीने पागल भी रहे, हरी पत्तियां और घास चरते रहे। क्या बात कही है,
19: मैं मर गई। मैंने ये सब कुछ रतन सिंह डॉक्टर से कहा?
21: मैंने कहा।
19: मैं माफी मांगने जा रही हूँ, मेरे बाबूजी के बड़े अच्छे दोस्त हैं।
20: मैं कहती हूँ भैया तुम ये कोट फौरन फेंकाओ, नहीं तो अगली बार भाभी सारे मोहल्ले को घास चला देगी।
21: अनु ये कोट इसी घर में रहेगा, ये ले, मैंने इसे बाद से काफी ऊंचा टांग दिया है, इससे हमें फायदा है।
20: सो कैसी भैया?
21: अरे सीधी सी बात है, हमारा पप्पू इंग्लिश में जरा वीक है, मास्टर का खर्च कम हो गया, तेरी भाभी को कोट पहना दिया करेंगे बस। वो पप्पू के टीचर तक को इंग्लिश पढ़ा दिया करेंगे, इस कोट के सहारे मेरी इंग्लिश ड्राफ्टिंग भी सुधर जाएगी।
19: मैं कहती हूँ तो तुम जो भी रहोगे।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
1: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी।

0: प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
2: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
2: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
10: All right.

0: इन्वेस्टमेंट मिलता था, वही आज हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर इंसेंटिव दे रही है। पीएलआई स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। सिर्फ इस एक योजना की वजह से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है। 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है। 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है और 14 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब बनी है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार सप्तधारा के तहत विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और हरित अर्थव्यवस्था सहित 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है।
0: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है। और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है। ये रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
1: केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस पार्टी पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री अठावले ने कहा कि जिस वंदे मातरम गीत की आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उसी गीत को अधूरा गाकर कांग्रेस पार्टी देश का गैर संवैधानिक कार्य कर रही है।
2: आजादी मिलने में वंदे मातरम का बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए वंदे मातरम गान को राष्ट्रीय दर्जा, राष्ट्रीय गान का दर्जा दे दिया हमारी सरकार ने। और इसीलिए लेकिन कांग्रेस पार्टी उसका अपमान कर रही है, वो आधा ही गीत गान गाने का प्रयत्न कर रही है, ये बात अच्छी नहीं है। मुझे लगता है कि हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया और उसको राष्ट्रगान का दर्जा दे दिया।
1: उप मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन को लेकर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया है। श्री चौधरी ने पटना में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि कल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल पर दिल्ली में हुई बैठक में राज्य की चिंता को केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष रखा गया है। श्री चौधरी ने बताया कि कोसी मेची लिंक परियोजना और अन्य परियोजनाओं में हो रही देरी को लेकर चर्चा की गई है।
3: जो बिहार से संबंधित जो बाढ़ और सिंचाई क्षेत्र की योजनाओं के लिए केंद्रीय मदद की घोषणा की, उन्हें भी मिलने में, प्राप्त होने में बिहार को दिक्कत हो रही थी, जिसको हम लोगों ने बिहार की तरफ से उठाया और केंद्रीय वित्त मंत्री ने बड़ा स्पष्ट और प्रभावी निर्देश दिया है कि उनमें शीघ्र पहल करके आगे की कार्रवाई की जाए। और पदाधिकारियों ने भी भरोसा दिलाया है कि इसमें शीघ्र अनुकूल कार्रवाई की जाए।
1: उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में फरक्का बराज और भारत बांग्लादेश जल संधि के मुद्दे पर राज्य की चिंता पर विमर्श किया गया।
4: गंगा सबसे अधिक पानी गंगा में बिहार के कैचमेंट एरिया से जाता है और बिहार से गुजरने वाली सारी नदियां अंत में गंगा में ही मिली, और सबसे कम पानी के इस्तेमाल की इजाजत अगर बिहार को दिया जाए तो ये बिहार के साथ नाइंसाफी होती है। इसका भी मामला हम लोगों ने उठाया था और केंद्र सरकार ने भी इन मामलों में सहानुभूति दर्शाया है।
1: श्री चौधरी ने सभी मुद्दों पर केंद्र के सहयोगात्मक रवैये पर संतोष व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया है। केंद्र सरकार ने बिहार समेत 4 राज्यों में नए इनक्यूबेटर लगाने के निर्णय को आगे बढ़ाने की पहल की है। इसके तहत आईआईटी पटना की साझेदारी में प्रदेश में इनक्यूबेटर लगाया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय की आज नई दिल्ली में आयोजित सशक्त समिति की बैठक में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के गैर कृषि आजीविका कार्यों के तहत विभिन्न प्रस्तावों की समीक्षा की गई। बैठक में महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों को मजबूत और व्यापक बनाने तथा स्वयं सहायता समूहों के छोटे उद्यमों को आगे बढ़ाकर विकास कार्यों को तेज करने पर सहमति बनी है। इस दौरान देशभर में 6 करोड़ लखपति दीदियां बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान देने पर भी चर्चा हुई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने प्रतिष्ठानों से आग्रह किया है कि वे ईपीएफ के दायरे से बाहर कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कर्मचारी नामांकन अभियान 2026 का लाभ उठाएं। इस अभियान का उद्देश्य नियोक्ताओं के स्वैच्छिक अनुपालन को सुगम बनाना और पात्र श्रमिकों को भविष्य निधि पेंशन और बीमा के लाभ प्रदान करना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि यह अभियान इस वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Pटना को फॉलो कर सकते हैं। मानसून की सक्रियता के कारण प्रदेश में विभिन्न भागों में बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले दो दिनों तक राज्य के उत्तर पूर्व भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है, साथ ही विभिन्न स्थानों पर तेज हवा के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।
1: दिनांक 23 अगस्त को राज्य के उत्तर पूर्व भाग के कुछ स्थानों पर जबकि शेष भागों के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के समस्त उत्तर भाग एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना।
0: उत्तर भारत में विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश के कारण राज्य में गंगा, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी समेत विभिन्न नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी प्रदेश में सभी स्थानों पर खतरे के निशान के अत्यंत करीब पहुंच गई है। नदी का जलस्तर पटना के दीघा घाट, गांधी घाट और हाथीदह में खतरे के निशान को पार कर गया है। गंगा नदी में भारी उफान से प्रदेश के कई निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सोन नदी का जलस्तर पटना के मनेर में लाल निशान को पार कर गया है। घाघरा नदी सीवान के दरौली में खतरे के निशान से लगभग आधा मीटर ऊपर बह रही है। बागमती नदी सीतामढ़ी के ढेंग ब्रिज में चेतावनी स्तर से करीब एक मीटर ऊपर बह रही है। गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर दर्ज किया गया। इधर कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से करीब 65 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गंगा और गंडक नदी में उफान के कारण सारण जिले के सबलपुर दियारा क्षेत्र में कई पंचायतों में कटाव का संकट बढ़ गया है। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने आज कटाव प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया और अधिकारियों को स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। इधर भोजपुर के जिलाधिकारी मनीष कुमार मीणा ने जिले के बाढ़ संभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। उन्होंने अधिकारियों को लगातार निगरानी रखने को कहा है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में आगामी रणजी सत्र की तैयारियों को लेकर सीनियर टीम के खिलाड़ियों का फिटनेस एंड स्किल कैंप आज से शुरू हो गया है। पटना के मोइनुलहक स्टेडियम में आयोजित शिविर में चयनित 57 खिलाड़ियों में से अधिकांश खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। पहले दिन BCCI के निर्धारित मानकों के अनुसार खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट लिया गया। 57 खिलाड़ियों की सूची में वैभव सूर्यवंशी, साकिब हुसैन समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। गौरतलब है कि आगामी सत्र में बिहार की टीम एलिट ग्रुप में देश की प्रतिष्ठित टीमों के खिलाफ अपना मैच खेलेगी। मुंगेर में आज से 3 दिवसीय 13वीं राज्य स्तरीय योगासन खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इंडोर स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता में 8 वर्ष से 45 वर्ष आयु वर्ग के राज्य के 28 जिलों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर दिसंबर में पटना में आयोजित होने वाली 50वीं राष्ट्रीय योगासन प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया थाना क्षेत्र के बनकटवा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 727 पर आज सुबह सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को बेतिया के GMCH में भर्ती कराया गया है। इधर घटना से आक्रोशित मृतक के परिजनों ने राजमार्ग पर मुआवजे और विभिन्न मांगों को लेकर सड़क जाम और प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे में मृत लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों के समुचित इलाज और पीड़ितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनेरेमाइन मैलेट और फिनाइल एफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन वाली दवा के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक रिपोर्ट।
2: स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। यह कदम छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सरकार ने निर्माताओं को निर्देश दिया है कि इन दवाओं के लेबल, पैकेज में दिए गए निर्देशों और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट रूप से चेतावनी

0: लिखी जाए। सरकार ने कहा है कि ऐसे दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। इस वर्ष जून में भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश भर में लोगों के इस्तेमाल के लिए 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाई थी। शिवांग के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: और अब विभिन्न जिलों से खबरें। सुपौल के वीरपुर स्थित भारत नेपाल सीमा के पास सशस्त्र सीमा बल ने अभियान के तहत लगभग 304 किलो गांजा जब्त किया है। वहीं जिले के ललित ग्राम थाना क्षेत्र के लक्ष्मीनिया वार्ड संख्या 13 से पुलिस ने लगभग 134 किलो गांजा के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। मौके से 3 मोटरसाइकिल और 8 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। मुंगेर जिले के रामनगर थाना पुलिस ने तेलिया तालाब के पास वाहन जांच के दौरान एक 4-पहिया वाहन से 250 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। किशनगंज जिले में उत्पाद विभाग और जिला पुलिस की टीम ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर 290 ग्राम हेरोइन के साथ एक महिला समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में विशेष छापेमारी अभियान के तहत पुलिस ने विभिन्न मामलों में वांछित 10 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। रोहतास जिले के तिलौथू थाना क्षेत्र के टेड़का मोड़ के पास सासाराम तिलौथू पथ पर एक 4-पहिया वाहन और ऑटो रिक्शा की टक्कर में सीआरपीएफ का एक जवान की मृत्यु हो गई जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए। सीवान के शुभवंती नर्सिंग कॉलेज के छात्रों ने रिजल्ट में कथित गड़बड़ी और फीस के नाम पर अधिक रकम वसूली को लेकर हंगामा और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और रिजल्ट में सुधार की मांग की है। कैमूर के जिलाधिकारी सह जिला सुरक्षा समिति के अध्यक्ष कुमार अनुराग ने आज समाहरणालय सभागार में सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और सड़क सुरक्षा जागरूकता को लेकर समिति सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एनडीए सरकार उत्पादन को पुरस्कृत करने के लिए सिद्धांत पर कार्य कर रही है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया बिहार की न्यायपूर्ण मांगों को लेकर केंद्र सरकार ने दिया सकारात्मक जवाब। उत्तर भारत में भारी बारिश के कारण गंगा समेत प्रदेश की कई नदियों में भारी उफान, बक्सर से लेकर भागलपुर तक निचले इलाकों में घुसा पानी। और आगामी रणजी सत्र की तैयारी के लिए बिहार के क्रिकेट खिलाड़ियों का फिटनेस एंड स्किल कैंप आज से पटना में शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई एक गाथा जो हजारों सालों से दिलों में जीवित है, महाभारत। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष, रिश्तों की उलझने और जीवन के सबसे कठिन सवाल, महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता। कभी अर्जुन के शस्त्र उठाने के पहले की दुविधा, तो कभी श्री कृष्ण के गीता का उपदेश, हर मोड़ पे नए प्रश्न और उनके जवाब, धर्म, युद्ध और जीवन के असली अर्थ की खोज। सुनना ना भूलें हर शुक्रवार शाम 7 बजे से रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। सुनो दिल से।
1: प्रसाद क्लिनिक।
2: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
1: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
2: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
7: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
8: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
7: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
8: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
7: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
9: 9.4
10: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765655750।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,03,54 रूपए और X3 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
5: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
6: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
5: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
6: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
5: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
6: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
7: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
5: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया, बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा, मिला ही नहीं
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
9: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
10: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
9: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
10: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
9: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे

0: बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है। मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7555467666।
3: टॉप भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
3: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
11: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
10: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
11: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
10: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
12: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
13: All right.

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक

0: हावे रोड गोपालगंज।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
2: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
4: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
5: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। रक्षा उच्च तुंगता अनुसंधान संस्थान आमंत्रित करता है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता, रिक्तियां हैं 16, अनुसंधान सहयोगी, रिक्तियों की संख्या है 2। योग्यता, आरक्षण, अध्येता वृत्ति आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए 8 अगस्त 2026 से 14 अगस्त 2026 का रोजगार समाचार पत्र। विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण में महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, जनसंपर्क अधिकारी और सहायक प्रबंधक की रिक्तियां उपलब्ध हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट www.mca.gov.in। इसके अतिरिक्त आप इस वेबसाइट पर भी देख सकते हैं www.iepf.gov.in। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद NCVET में भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित हैं, निश्चित अवधि के अनुबंध के आधार पर इन पदों के लिए। सीनियर कंसल्टेंट 1 पद, कंसल्टेंट Grade 2 1 पद, कंसल्टेंट Grade 1 4 पद, यंग प्रोफेशनल 7 पद, डेटा एनालिस्ट 2 पद, रिसर्च एनालिस्ट 2 पद और थीमेटिक लीड 2 पद। परफॉर्मेंस और संगठन की जरूरतों के आधार पर 2 वर्ष की अवधि को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है, जो ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ष तक के लिए हो सकती है। आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 31 अगस्त 2026। आवेदन करने के लिए इस लिंक पर आप जा सकते हैं ncvet.gov.in/career-opportunities। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के लिए प्रोफेसर ऑफ लॉ के 1 पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। पात्रता की शर्तें, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, प्रतिनियुक्ति की अवधि, आयु सीमा आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.lbsnaa.gov.in/vacancy.php। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान आमंत्रित करता है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। टेक्नीशियन Grade A इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, टेक्नीशियन Grade A इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन Pay Level 2। इसके लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट www.niot.res.in। इसके अतिरिक्त 15 से 21 अगस्त 2026 का रोजगार समाचार पत्र भी आप आवश्यक जानकारी के लिए देख सकते हैं। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
0: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
6: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
7: सुनिए,
8: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
7: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
8: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
7: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
9: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
10: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
9: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
10: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
8: ऑलराइट।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई एक गाथा जो हजारों सालों से दिलों में जीवित है, महाभारत। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष, रिश्तों की उलझने और जीवन के सबसे कठिन सवाल, महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता। कभी अर्जुन के शस्त्र उठाने के पहले की दुविधा, तो कभी श्री कृष्ण के गीता का उपदेश, हर मोड़ पे नए प्रश्न और उनके जवाब, धर्म, युद्ध और जीवन के असली अर्थ की खोज। सुनना ना भूलें हर शुक्रवार शाम 7 बजे से रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। सुनो दिल से।
10: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
11: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
10: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
11: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
11: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
11: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
12: प्रसाद क्लिनिक,
13: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
12: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
13: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

0: सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स एंड की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की, संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र ने गोरखा मुद्दे से समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत बांग्लादेश के संबंध आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। ब्रिक्स युवा मंत्रियों ने शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए संयुक्त वक्तव्य अपनाया। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव से तेज वर्षा की संभावना, बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थिति गंभीर। और बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महासचिव सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि भाजपा टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए पार्टी के आधार को और व्यापक बनाने के लिए पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इसका उद्देश्य जनसेवा के प्रति श्री मोदी की प्रतिबद्धता को उजागर करना है। श्री तावड़े ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देशभर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
2: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाए।
1: श्री तावड़े ने ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की।
2: सेवा सेतु अभियान के तहत 15 दिन के लिए ब्लॉक लेवल पर हर योजना के संबंधित डिपार्टमेंट के आवश्यक कागजात को लेकर वहां लोग उपस्थित रहे, तो आप वहां आइए, फॉर्म भरिए, आपका नाम आयुष्मान में ऐड हो जाएगा। ऐसे सरकार के अलग अलग भिन्न भिन्न जो योजनाएं हैं जिसका लाभ सभी लोगों तक पहुंचना है तो उनको ये मौका होगा कि उनके ब्लॉक स्तर पर सेवा सेतु अभियान का एक अपना अलग कार्यक्रम उस दरमियान होगा, उसमें वो इस मौके का लाभ लेते हुए अपने आप को इस योजना में जोड़ सकते हैं।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इनमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। एक रिपोर्ट। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। प्रस्तावित त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड की रूपरेखा तैयार करने पर भी चर्चा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने सुकना में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ भी बैठक की। दार्जिलिंग के लोकसभा सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि बैठक बेहद सफल रही और सभी गोरखा नेताओं ने अपने मुद्दे रखे। बैठक के बाद गृहमंत्री ने घोषणा की कि मुद्दों के समाधान के लिए वार्ताकार पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
3: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हितों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को विश्व का एक अनूठा देश बताया, क्योंकि कोई अन्य राष्ट्र अपने पड़ोसी पर हमला करने और दबाव डालने के लिए आतंकवाद का इतने व्यवस्थित और निरंतर तरीके से उपयोग नहीं करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुए प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
4: संयुक्त वक्तव्य में शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल, युवा उद्यमिता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और खेल, पर्यावरण और सतत विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक भागीदारी, स्वयं सेवा, गरीबी उन्मूलन, अंतर धार्मिक संवाद और युवा समावेशन सहित प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवाओं को भविष्य को आकार देने में भागीदार होना चाहिए। बैठक में निर्णय लेने की प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने, युवा नेतृत्व वाली पहलों को मजबूत करने, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने और सीमा पार युवा आदान प्रदान को विस्तारित करने पर चर्चा हुई। विजयवाड़ा से अलु मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
3: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने युवाओं से 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित विकसित भारत एट 2047 युवा राजनीतिक नेताओं के संवाद में डॉ. सावंत ने कहा कि युवा राजनीतिक नेताओं को पद पाने की लालसा के बजाय लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने उनसे नीति निर्माता, जमीनी स्तर के आयोजक, प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ता और सामाजिक उद्यमी के रूप में विकसित होने का आग्रह किया। डॉ. सावंत ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश, बुनियादी ढांचे और रोजगार के क्षेत्र में की जा रही विकास पहलों की भी सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक के साथ एकीकृत करने पर बल दिया है। नोएडा में एक लैब का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह शहरों की संख्या बढ़ रही है, उसी के अनुरूप देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार होना चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में चिकित्सा सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधुनिक मेडिकल इमेजिंग, डीएनए जांच, जीनोमिक्स, डिजिटल पैथोलॉजी और डेटा आधारित स्वास्थ्य सेवाएं बीमारियों की जांच और उपचार के तरीकों को तेजी से बदल रही है। उन्होंने बताया कि सरकार सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में भी नई तकनीक को शामिल कर रही है।
5: जैसे जैसे हमारे शहर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना ही होगा। हमारा लक्ष्य केवल बीमारी के सामने आने के बाद ट्रीटमेंट तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। फ्यूचर के हेल्थ केयर सिस्टम को प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, रिस्क एसेसमेंट और पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर पर अधिक ध्यान देना होगा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले 400 दिन से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तथा श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि यह पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य सहमतिपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के लिए उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। मेघालय और असम सरकार के बीच आज गुवाहाटी में संयुक्त बैठक हुई। इसमें 19 अगस्त को शिलांग में असम में पंजीकृत वाहनों में तोड़फोड़ की घटना के बाद स्थिति पर चर्चा की गई। मेघालय के उप मुख्यमंत्री डॉ असुनिया भालंगधार और असम सरकार में सीमा संरक्षण, असम समझौता कार्यान्वयन और विकास मंत्री अतुल बोरा ने गुवाहाटी में कोयनाधार स्टेट गेस्ट हाउस में दोनों राज्यों की सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। त्रिपुरा में नीति आयोग के सदस्य डॉ जोरम अनिया ने आज गोमती जिले के अथारू भोला में गरिया अकादमी मॉडल स्कूल का दौरा किया। दौरे के दौरान स्कूल की शिक्षा व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा हुई। डॉ अनिया ने जमातिया होडा समुदाय की संस्कृति, परंपराओं और विरासत के बारे में भी जानकारी ली। महाराष्ट्र और जर्मनी के हेसे राज्य ने निवेश, उद्योग, नवाचार, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में आज सह्याद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हेसे के मंत्री बोरिस राइन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दवा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, वित्तीय सेवाएं, लॉजिस्टिक्स सेवा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी परीक्षा के लिए चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती के कारण सीजीएचएस वेलनेस सेंटर को 27 से 31 अगस्त तक बंद रखने का नोटिस का खंडन किया है। मंत्रालय ने कहा कि यह नोटिस झूठा है और अनाधिकृत है। सभी सीजीएचएस वेलनेस सेंटर अपने निर्धारित कार्य समय के अनुसार कार्य करेंगे। मंत्रालय ने लाभार्थियों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक सीजीएचएस चैनलों के माध्यम से जारी की गई जानकारी पर ही भरोसा करें। सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। इस वीडियो में 22,000 रूपये के शुरूआती निवेश पर हर सप्ताह 5.5 लाख रूपये की सुनिश्चित आय देने का दावा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह वीडियो फर्जी है और एआई से तैयार किया गया है। इकाई ने स्पष्ट किया कि वित्त मंत्री ने ऐसी किसी निवेश योजना या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। जांच इकाई ने लोगों से ऐसे जालसाजों से सावधान रहने की अपील की है जो फर्जी योजनाओं का लालच देकर लोगों को ठगने और उनका पैसा हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में ओडिशा में बारिश की संभावना व्यक्त की है। इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कई इलाकों में अब भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है।
6: उड़ीसा में एक बार फिर बारिश होने की संभावना है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बने नए मौसम से बारिश बढ़ने की उम्मीद है। आईएमडी भुवनेश्वर ने कई जिलों में हल्के से मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान लगाया है और ये बारिश का दौर आने वाले हफ्ते तक जारी रहने की संभावना है। आज केंदुझर, मयूरभंज, कलाहांडी और नवरंगपुर के लिए भारी बारिश की येलो वार्निंग जारी की गई है जबकि 24 और 25 तारीख को केंदुझर और मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग का अनुमान है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू शेंग शू और टैन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। और एफआईएच हॉकी पुरुष विश्व कप में भारत का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने 1-0 की बढ़त बना ली है। पहले राउंड के 3 मैचों में भारतीय टीम ने 2 जीत और 1 हार के साथ दूसरे राउंड में जगह बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की। संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र ने गोरखा मुद्दे के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत बांग्लादेश के संबंध आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
8: बनिए अपने जिले की आवाज रेडियो रमजिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रमजिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
9: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
10: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
8: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
11: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
9: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
12: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
13: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
12: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
13: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
12: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
13: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
12: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
13: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
14: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
15: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
14: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
15: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
16: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
17: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
18: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
17: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
18: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
17: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
18: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
17: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
18: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
19: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ जिला पदाधिकारी ने किया सीधा संवाद। पुलिस अधीक्षक ने मीरगंज और जादोपुर थाने का मोटरसाइकिल से किया निरीक्षण। सरकारी स्कूल की शिक्षिका पुष्पा प्रसाद को राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। भूमि विवाद और शराब के मामलों को लेकर जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा। विद्यार्थियों को मिलने वाली शिक्षा ऋण में अब हुआ बदलाव। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बलेसरा में पहुंचकर विद्यार्थियों से सीधे संवाद किया और उनकी पढ़ाई, खेलकूद, विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं तथा आवश्यकताओं की जानकारी ली। विद्यार्थियों के बीच सहजता से बैठकर उनके अनुभव और सुझाव सुनने का DM ने पहल करते हुए संवाद को आत्मीय एवं प्रेरणादायी बना दिया। विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला पदाधिकारी ने विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास से जुड़े विषय को लेकर समीक्षा किया। इस दौरान चार दीवारी को ऊंचा करने, खेल मैदान के विकास, RO वाटर प्लांट, सोलर लाइट, स्पीड ब्रेकर तथा सुरक्षा एवं विद्युत व्यवस्था से संबंधित आवश्यकताओं पर संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस मौके पर विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के साथ संवाद करते हुए DM ने उनकी पढ़ाई एवं भविष्य की योजनाओं के बारे में भी जानकारी ली। विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेलकूद, रचनात्मक गतिविधियों और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। DM ने विद्यार्थियों से कहा कि बड़ा लक्ष्य निर्धारित करना सफलता की पहली सीढ़ी है। लक्ष्य के प्रति निरंतर मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ ही आगे बढ़ने पर कठिन से कठिन मंजिल भी हासिल की जा सकती है। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने मोटरसाइकिल से ही क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान मीरगंज और जादोपुर थाना क्षेत्रों का भ्रमण कर दोनों थानों का निरीक्षण भी किया। थाना परिसर की व्यवस्थाओं, लंबित कांडों, विधि व्यवस्था की स्थिति और पुलिसिंग से जुड़े अन्य कार्यों की समीक्षा की। SP ने अधिकारियों को अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और क्षेत्र में प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित करने के आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही बेहतर विधि व्यवस्था बनाए रखने और आम लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। गोपालगंज पुलिस ने अपराध नियंत्रण और शांतिपूर्ण माहौल कायम रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को लगातार दोहराने का प्रयास किया है। गोपालगंज की एक शिक्षिका पुष्पा प्रसाद को सरकारी स्कूल में बेहतर काम करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह शिक्षिका कुचायकोट के रहने वाली हैं और राजकीय कन्या मध्य विद्यालय कुचायकोट में अपनी सेवा देती हैं। इनका चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए किया गया है। उनका नाम देश भर से चुने गए 48 स्कूली शिक्षकों में शामिल है, जिसमें बिहार से 2 शिक्षकों का नाम शामिल है। उनमें एक पुष्पा प्रसाद गोपालगंज से चुनी गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब दिल्ली के विज्ञान भवन में इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी तो यह उस विचार और उस प्रतिभा का सम्मान होगा जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने वास्तविक लक्ष्य पर अड़े रहने और उस मंजिल को प्राप्त कर लेने के जज्बे के साथ काम करता है। इसको लेकर आज गोपालगंज के जिला पदाधिकारी समीर सौरभ से भी बातचीत की गई तो उन्होंने बताया।
20: हमारे यहाँ पुष्पा प्रसाद जी हैं, वो कन्या मध्य विद्यालय कुचाईकोट की हैं। उनको जो है नेशनल टीचर्स अवार्ड के लिए उनका चयन किया गया है और उनको राष्ट्रपति महोदया के द्वारा उनको सम्मानित भी किया जाएगा दिल्ली में। जो उनका पढ़ाने का शैली था वो काफ़ी नवाचार तरीके से का यूज़ करके वो पढ़ाती थी और काफ़ी रोचक तरीके से बच्चों को पढ़ाती थी। इस बात को संज्ञान में लेते हुए सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उनका नाम प्रतिवेदित किया जाए और उनका फाइनल चयन भी हुआ है। उनको और पूरे शिक्षा विभाग को हम लोग की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
19: जिलाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में आज मध्य निषेध खनन टास्क फोर्स और भूमि विवाद तथा भू समाधान पोर्टल, भूमिहीन थानों, पुलिस लाइन एवं अग्नि शामालय हेतु भूमि की उपलब्धता, सीसीए प्रस्ताव तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण से संबंधित मामलों की बैठक हुई। इसमें विभिन्न विभागों के द्वारा किए जा रहे कार्यों, लंबित मामलों तथा भूमि से संबंधित मामलों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि बैठक में चिन्हित लंबित वादों एवं मामलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनहित एवं प्रशासनिक कार्यों से जुड़े मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखने का निर्देश दिया गया है। भूमि विवाद और भू समाधान पोर्टल पर दर्ज मामलों के निष्पादन में भी विशेष तत्परता बरतने का निर्देश दिया गया है। बिहार सरकार ने विद्यार्थियों को मिलने वाली स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर अब परिवर्तन किया है। बताया जा रहा है कि विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता के विकल्पों को सरकार ने और व्यापक बनाया है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा ऋण पहले 4 लाख रुपए मिलता था, इसको लेकर कमी किए जाने की खबर पर जिला प्रशासन ने तथ्यात्मक रूप से जवाब देते हुए बताया है कि विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक कठिनाइयों से निजात दिलाने का और वित्तीय सहायता देने के लिए अब नए विकल्प उपलब्ध करा दिए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के अनुसार अब बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो 4 लाख रुपए मिलता था उसके जगह अब 2 लाख रुपए का ऋण बिहार सरकार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि 2 से 4 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। यानी 4 लाख के जगह अब 6 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है, लेकिन सरकार स्तर से जो 4 लाख मिलता था वह अब 2 लाख मिलेगा और 2 लाख से 4 लाख रुपए तक बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पहले सीधे 4 लाख रुपए सरकार के स्तर से ही उपलब्ध कराया जाता था। जिला प्रशासन ने बताया कि इस संदर्भ में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल एवं बैंकों से जोड़ने का उद्देश्य अधिक से अधिक विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए संस्थागत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है। इससे विद्यार्थियों के सामने उच्च शिक्षा के लिए पहले की तुलना में अधिक वित्तीय विकल्प उपलब्ध हो गए हैं। योजना के बजटीय प्रावधान भी सरकार की विद्यार्थियों के प्रति प्रतिबद्धता को स्पष्ट करता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 886 करोड़ रुपए के व्यय की स्वीकृति दी गई थी, जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में 950 करोड़ रुपए के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। आज अलग अलग मामलों में गिरफ्तार सभी 32 लोगों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसमें चोरी के मामले, कोर्ट के द्वारा जारी वारंट और शराब तस्करी के मामले और हत्या के प्रयास में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इस दौरान 233 लीटर से अधिक विदेशी और देशी शराब को भी पुलिस ने जब्त किया है। कटिया थाना क्षेत्र के उजवलिया गांव में एक आंगनवाड़ी सहायिका की मौत हो गई है। मृतिका शकुंतला देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद उनके बेटे पर ही मां को बाइक से कथित तौर पर धक्का देकर गिराने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद से इनका बेटा फरार है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दी है और मामले में आवश्यक जाँच पड़ताल कर रही है। 2 दिन पहले गोपालगंज के व्यवहार न्यायालय परिसर में मुख्य गेट पर कुछ लोगों ने न्यायाधीश के गाड़ी के आगे सोकर विरोध प्रदर्शन किया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। आज इसको लेकर जानकारी दी गई कि जिन लोगों ने न्यायाधीश गणों के गाड़ी के आगे सड़क को अवरुद्ध कर विरोध प्रदर्शन किया था, पुलिस ने उन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद यह मामला मुख्य जिला न्यायाधीश जिला जज के समक्ष पहुंचा। उन्होंने मामले में संज्ञान लिया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपियों के अज्ञानता को देखते हुए कोर्ट ने लचीला रुख अपनाया और 24 घंटों बाद इन्हें जमानत पर छोड़ा गया है। हालांकि सभी आरोपियों ने अदालत के समक्ष लिखित रूप से माफी मांगी और उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी सही नहीं मिल रही थी, इसके वजह से उनसे गलती हो गई। आगे से जीवन में वह कभी भी अदालत के अपमान का प्रयास नहीं करेंगे। बिशंभरपुर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी बलराम यादव, पिता सरयू यादव, साकिन खेम मटिहनिया थाना बिशंभरपुर के निवासी हैं। आज इन्हें पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने आज भी अपने कार्यालय में जन शिकायतों पर त्वरित सुनवाई करते हुए जनता की समस्याओं का निदान करने के लिए पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। आज गोपालगंज जिला विधिज्ञ संघ के वकालत खाना भवन में स्थायी लोक अदालत की भूमिका, इसके क्षेत्राधिकार, प्रक्रिया, इसके फायदे, इसमें दाखिल होने वाले वादों की प्रकृति, मीडिएशन फॉर नेशन कैंपेन 3.0 आदि के बारे में विद्वान अधिवक्ता गणों के बीच जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष राधेश्याम शुक्ला, एडीजे सप्तम विवेक कुमार त्रिपाठी सहित तमाम न्यायाधीश गण और बहुत सारे गणमान्य अधिवक्ता गण मौजूद रहे। मीरगंज थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास कांड में एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी अनिल यादव, पिता मनोज यादव, जो बिन्नी जगदीश थाना मीरगंज का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने आज इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सिरीपुर थाना की पुलिस ने 233 लीटर देशी शराब के साथ दो मोटरसाइकिल को जब्त करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर झरही नदी के पास पुल के नजदीक से 233 लीटर देशी शराब को पकड़ा। बताया जा रहा है कि इस शराब को ले जाने वाले तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया जिनके पास से यह शराब मिली है। साथ ही इनके दो मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने जब्त किया है और इस मामले में अभी आवश्यक पूछताछ और अनुसंधान किया जा रहा है। ट्रांसफर आवेदन में खामी मिलने पर एक शिक्षक से शो कॉज नोटिस किया गया है। ई कोर्स के माध्यम से अपलोड किए गए ट्रांसफर आवेदन में कई गलतियां उजागर होने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार पांडे ने अपग्रेड मिडिल स्कूल सपहा कुचायकोट के पंचायत शिक्षक बबलू राय से स्पष्टीकरण की मांग की है। डीओ की कार्रवाई के बाद शिक्षकों में हड़कंप देखा जा रहा है। उचका गांव थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक आरोपी नीतीश कुमार और दूसरा राकेश कुमार, दोनों पिता रमेश मांझी साकिन भुवला थाना उचका गांव के निवासी हैं। बताया जा रहा है कि दोनों को आज गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हथुआ प्रखंड के अटुमा दुर्ग गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृत महिला मुन्ना श्रीवास्तव की बहू और सनी श्रीवास्तव की पत्नी बताई जा रही है। वह हथुआ प्रखंड के बरवा कपरपुरा गांव की रहने वाली थी। परिवार के लोगों का कहना है कि महिला की हार्ट अटैक से मौत हुई है। इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग महिला के मौत पर सवाल भी उठा रहे हैं। हालांकि इस मामले में अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ जिला पदाधिकारी ने किया सीधा संवाद। पुलिस अधीक्षक ने मीरगंज और जादवपुर थाने का मोटरसाइकिल से किया निरीक्षण। सरकारी स्कूल की शिक्षिका पुष्पा प्रसाद को राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित। भूमि विवाद और शराब के मामलों को लेकर जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा। विद्यार्थियों को मिलने वाली शिक्षा ऋण में अब हुआ बदलाव। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान
21: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198886973।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
22: ठक ठक।
23: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
24: अच्छा, मिला ही नहीं
23: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
23: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
25: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
26: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034-48652 पे।
27: रियाज रेट्रो।
28: ये एपिसोड मैंने पिछले हफ्ते तैयार किया था, क्योंकि वादा किया था आपसे कोई भारी भरकम बात नहीं, बहुत ज्यादा पुराने गीत नहीं, मायूस कर देने वाली कोई सोच नहीं। बहुत थीम्स आए गए दिमाग में और सबको रिजेक्ट कर दिया मैंने कि वादा तो निभाना है। पर फिर पुलवामा हो गया और मैं नंदू और फरदीन की कहानी लेकर आ गई आपके पास, आपके साथ दर्द बांटने। तो जो खुश मिजाज एपिसोड बनाया था पिछले हफ्ते के लिए, उसको लेकर आ गई हूँ मैं इस हफ्ते, और इस सातवें एपिसोड पर मायूसी का भार नहीं पड़ने देंगे। हाँ, दार्शनिक होना ठीक है, पर हर हफ्ते कुआं खोदना और फिर उसमें खुद ही कूद जाना, ये कहाँ की अकलमंदी है भाई। जिंदगी है, बेमिसाल है, बेहुदी है, बेबाक है, बेवकूफी है, पर है तो अपनी ही और बिल्कुल बेजोड़ है।

याद है मनीषा कोइराला का पिगी बैक राइड कितना स्ट्रॉन्ग होगा जैकी श्रॉफ, सोचो। आशा भोसले, जॉली मुखर्जी, महबूब के लिरिक्स, कार्तिक राजा का संगीत, फिल्म यस ग्रहण। शायद आप इसको रेट्रो ना माने पर गाना है 18-19 साल पुराना, नॉट क्वाइट न्यू। जैसा कि प्रिंस अली ने कहा था हाल ही में ट्विटर पर, एक एपिसोड जाड़े की धूप पर हो जाए। वाह क्या बात है, लेट्स सी जाड़े की धूप कैसी होती है और हमें कहां तक ले जाती है। रियाज़ रेट्रो। बड़ी मजेदार होती है जाड़े की धूप, चारों ओर फैली ठंड की वजह से वो एक चुटकी गर्माहट पसंद आती है, या उस एक टुकड़ा धूप की बदौलत ठंड का मजा दुगना हो जाता है। गुलजार साहब का चांद के साथ जो रिश्ता है उसको तो बहुत मनाते हैं हम, पर जाड़ों की नरम धूप और आंगन में लेटकर, आंखों पे खींच कर तेरे दामन के साए को, औंधे पड़े रहे कभी करवट लिए हुए, ये भी उन्होंने ही तो लिखा है। और एक भाग्यश्री आशुतोष गोवारीकर वाली सीरियल आती थी याद है 90s में, चित्रा और अमोल पालेकर प्रोडक्शन, उसका टाइटल ट्रैक कच्ची धूप गुनगुनी धूप अधखिली और चुलबुली धूप, जिंदगी के आंगन में उम्र की दहलीज पर आ खड़ी होती है एक बार एक बार एक बार, ये लिखा था कमलेश पांडे ने। सो ब्यूटिफुल, इतने साल बाद भी जबानी याद है मुझे। आपके साथ मैं रिया, ट्विटर पर जुड़ना हो तो हैंडल है @MissRiaMukherjee, MSRIYA MUKHERJEE। और अभी ख्याल आया कि कच्ची धूप, जाड़े की धूप, या गर्मियों की पुरवाई, या बारिशों के दिन गर्मा गर्म पकौड़े और अदरक वाली चाय, या फिर समोसे के साथ जलेबी, गर्म गुलाब जामुन के साथ ठंडी आइसक्रीम, सोच के देखिए तो सारा मजा कॉन्ट्रडिक्शन में ही है।

0: जगजीत लता की गजल एल्बम सजदा। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, लिखा निदा फाजली साहब ने। उससे पहले द सिजलिंग, उफ कितनी ठंडी है ये रुत, सुलगे है अंगड़ाई मेरी, अनकैरेक्टरिस्टिकली लता मंगेशकर, साथ किशोरदा, संगीत एसडी बर्मन, बोल मजरू सुल्तानपुरी। मैरिया और जाड़े की धूप की तो मैं एडिक्ट हूं, ठंड पसंद नहीं ना, इसलिए सर्दियों में जो जो चीज गर्माहट दे वो पसंद है, धूप, कंबल, कॉफी, प्यार।
1: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
2: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
1: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
2: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
1: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
2: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
3: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
1: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
5: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
4: और लाइट बिल के
5: अब 0 रुपए कैसे दूं?
4: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
5: पक्का।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: प्रसाद क्लिनिक,
9: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
8: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
9: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
10: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
11: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
10: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
11: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
10: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
12: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
13: रियाज रेट्रो।
0: प्यार की बात उठी है इस कच्ची धूप के मौसम में, तो एक सालगिरह मना लें फिर। शायर नक्श लैलपुरी का जन्मदिन था 24 फरवरी, और मैंने सोचा कि आज इश्क में ही सराबोर हो जाते हैं उनके साथ कोई फलसफे से भरी गजल या नजम ना चलाकर। दो बहुत ही रोमांटिक गीत नक्श साहब के लिखे, किशोरदा की आवाज में, एक सोलो और एक ड्यूएट। पहला फिल्म कॉल गर्ल से, बोल्ड एक्सपेरिमेंट था, नहीं चला उस जमाने में, और उस जमाने की ही बात है इस गीत में भी। उल्फत में जमाने के हर रस्म को ठुकराओ, संगीत सपन जगमोहन। और नक्श लैलपुरी का दूसरा गीत जो मैं आज आपको सुनाने वाली हूं वो है फिल्म दिले नादान से, एक मिडल ईस्टर्न टच वाला इंटेंस लव ड्यूएट, किशोरदा और लता जी की आवाजों में, संगीत खयाम साहब का, वो जिनकी सालगिरह भी तो अभी निकली 18 फरवरी। आपके साथ मैं रिया, और इन दोनों गीतों में भी वही जाड़े की धूप का मजा है, अपनी ही बाहों में सिमटने का लुत्फ, आंखें आधी बंद हो जाएं, होंठ पे हल्की सी मुस्कान आ जाए, ख्यालों में एक नरमी और गर्मी हो, जैसे शाल के अंदर मुंह छुपाकर सांस लेना। और इस खुमारी में किसी ऐसे का ख्याल जहन में जिसको खुद भी ना मालूम हो कि वो कितना करीब है।

0: हेलो अर्थ कॉलिंग, ये आप जहाँ खो गए हैं ना, छटते बादलों और छंती धूप के बीच में, वहां से तनिक वापस तो आइए। आपके साथ मैं रिया, गीत जो है जाड़े की धूप की तरह। ऑल थैंक्स टू प्रिंस का सजेशन, फेब्रुअरी का महीना और मेरा सन एडिक्शन। और हाँ, ऑफ कोर्स मेरा आपसे वादा कि ज्यादा गंभीर ना होंगे इस बार।
1: रियाज रेट्रो, रियाज रेट्रो।
0: अच्छा, अब एक पंगा है। खयाम साहब का एक गाना चलाकर छोड़ देना, ये तो वही बात हो गई कि चखा पर स्वाद ना लिया। अब सीजन टू में मनाया तो था एक साथ खयाम और मधुबाला का जन्मदिन, लगभग साल के इसी टाइम पर। लेकिन आज बात हो जाड़े की धूप की, नरमी और गर्मी की, और खयाम का हाथ इतनी जल्दी छोड़ दें हम, ये तो मुमकिन नहीं। अब अमित ने कुछ दिन पहले मुझे ट्विटर पर शर्म से पानी पानी कर दिया, क्योंकि उन्होंने बाजार फिल्म से दिखाई दिए यूं गाना का वीडियो शेयर किया और मुझसे पूछ बैठे कि क्या मेरा सुप्रिया पाठक से कोई नाता है, क्योंकि हम दोनों कितने एक जैसे लगते हैं अपेरेंटली। अमित, आई थिंक मुझे एक हफ्ते से ज्यादा लगा उस ट्वीट का जवाब तक देने के लिए, बिकॉज आई वॉज सो शॉक्ड। एक तो सुप्रिया पाठक ने जब बाजार में एक्टिंग की थी, शायद वो मेरी आधी से भी कम उम्र की रही होंगी। दूसरी बात, मेरे हिसाब से वो ब्रेथ टेकिंग लगी थी उस फिल्म में। सो उनके साथ तुलना वॉज लाइक मुझ बूढ़ी घोड़ी को लाल लगाम मिल जाना। बहुत मजा आया बाय गॉड, जब 3.25 सेकंड के लिए मैंने खुद को आपकी बात पर यकीन करने की इजाजत दे दी। बदकिस्मती से 4th सेकंड ही आंखों के सामने मुआ आईना पड़ गया। खैर, अमित के उस ट्वीट के नाम, खयाम साहब की हाल ही में बीती सालगिरह के नाम, और कच्ची धूप की मधुशी के नाम, बाजार फिल्म से ही, पर वो वाला गाना नहीं, ये वाला।

0: फेब्रुअरी का बर्थडे कैलेंडर देख रही थी तो नजर पड़ी कि 24 फेब्रुअरी को जॉय मुखर्जी का भी जन्मदिन पड़ा था। सोचा जॉय मुखर्जी के गाने तो अच्छे ही हुआ करते थे, तो ढूंढ के देखती हूँ क्या मिलता है। ये नहीं सोचा था कि ऐसी कमाल की डिस्कवरी होगी और ऐसा नगीना हाथ लगेगा, क्योंकि साहिर लुधियानवी का लिखा सब में शामिल हो मगर सबसे जुदा लगती हो मेरे फेवरेट पोएम्स में से एक है। आपको याद होगा साहिर वाले एपिसोड में मेरे दोस्त गोरकी ने उसको पढ़ा भी था। बट बिलीव इट और नॉट, मुझे इस लम्हे से पहले ये बात नहीं पता थी कि इसको एक फिल्मी गाना भी बनाया गया था। फिल्म जॉय मुखर्जी स्टारर बहु बेटी, आवाज रफी साहब और संगीत रवि जी, और मैंने इसे अभी तक सिर्फ साहिर लुधियानवी की किताब में ही पढ़ा था। और पता नहीं कब तक मैं इस बात से अनजान रहती अगर मैं जॉय मुखर्जी के गीतों की तलाश में ना निकलती। मतलब जॉय टू डबल जॉय हो गया है कि नहीं। ओके, वेरी बैड जोक।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
3: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
9: रियाज रेट्रो।
0: वैसे इस एपिसोड में मैं एक और सालगिरह एक्नॉलेज करना चाहूंगी, वो भी जॉय मुखर्जी और नक्श लैलपुरी के साथ ही अपना जन्मदिन शेयर करते हैं, यानी 24 फरवरी। आवाज इनकी तो बिल्कुल 100% जाड़े की धूप है, शीत लहर भी है इस आवाज में, जाड़े का कंपन भी, सूरज की धीमी किरणों की मिठास भी। तलत महमूद जी एक और शख्स जो अदर वॉइसेस के किसी एपिसोड में पक्का शामिल हो सकते हैं किसी दिन। और वैसे तो मैंने कोशिश की कि खुशगवार गीत ही सुनाऊं, पर जाड़े की धूप में तो कॉन्ट्रडिक्शन होना ही पड़ेगा ना। तलत महमूद का मजा तो तभी है जब आप उनका हाथ थामे गम और तन्हाई में एक छोटी सी डुबकी लगा ही लें। चलो ना, बाद में धूप में फिर से सूख लेंगे, promise।

हो, हाँ, थैंक यू कहने वाले हैं ना। मैंने सुन लिया, एसडी बर्मन साहिर लुधियानवी का बनाया, तलत महमूद की आवाज में दी एक्सक्विजिट जाएं तो जाएं कहाँ, फिल्म टैक्सी ड्राइवर। उससे पहले फिल्म देख कबीरा रोया से मदन मोहन का स्वरबद्ध किया हुआ, हमसे आया न गया तुमसे बुलाया न गया, फासला प्यार में दोनों से मिटाया न गया। राजेंद्र कृष्ण ने कमाल की बात लिख दी, कंफ्यूज्ड फीलिंग जस्ट लाइक द विंटर सन, है ना, वो रिश्ता जिसमें फासला दोनों से मिटाया ना जाए, जिसमें ये समझ ना आए कि हम तुम्हारे पास आए या तुम्हारे आने का इंतजार करें। चेहरे पर धूप की गर्माहट है या जिस्म पर जाड़े की सिहरन, सो मेनी रिलेशनशिप्स आर लाइक दैट, कुछ पल के लिए जो दिलासा दे और देर तक अंदर से बर्फ कर जाए उसके बाद। पर नहीं, जाड़े की धूप के इस इंटरप्रिटेशन के साथ नहीं छोड़ूंगी आपको आज, ये तो एक हल्का सा डाइवर्जन था, और मैं थी रिया आपके साथ। अपने कीमती पल मेरे साथ बांटने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे जाते जाते बता जाऊं, हमारा इटर्नली लेट परमानेंट फिक्स्चर पुलिसमैन उर्फ इंस्पेक्टर साहब यानी इफ्तिकार जी का भी बर्थडे रिसेंटली निकला, 22 फरवरी। पर उनका कोई गीत नहीं है मेरे पास, पर उनकी किसी फिल्म से तो कोई गाना लगा ही सकती हूँ, जो ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा क्योंकि वो तो हर फिल्म में होते थे। यू टेक केयर, कैच यू इन अ वीक, डेयर टू ड्रीम, डेयर टू लव।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: इससे अच्छा बहाना और क्या हो सकता है? आज पेड्रो साहब का बर्थडे है।
1: हैप्पी बर्थडे टू यू ओ मिस्टर पेड्रो। बाय बाय
2: पेड्रो।

0: I am Ashutosh Singh. Right now I can't sing.
1: You can.
2: Okay, man.

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

सुनेंगे 11:10 पर मार्केट मंत्रा का पुनः प्रसारण और उसके पश्चात आप सुनेंगे गीत मेरे मन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोणों पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाए।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बलों और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा हैं और किसी को भी अहिंसा के इस मूल्य को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार का सर्वोच्च दायित्व है। श्री सिंह नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि जैन धर्म भारत की सभ्यता और संस्कृति का गौरव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जैन परंपराओं और विरासत के संरक्षण के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में विदेशों से भगवान तीर्थांकर की 20 से अधिक चोरी हुई प्राचीन प्रतिमाओं को भारत वापस लाया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हितों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तंत्र श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि यह पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य महत्वपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। इस वीडियो में 22,000 रूपये के शुरुआती निवेश पर हर सप्ताह 5.5 लाख रूपये की सुनिश्चित आय देने वाला दावा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह वीडियो AI से तैयार किया गया है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू सेंग सू और टेन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में ओडिशा में बारिश की संभावना व्यक्त की है। इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में चिंता बढ़ गई है और कई इलाकों में अब भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed national office bearers of the BJP at the party headquarters in New Delhi this evening. Besides BJP President Nitin Naveen, the meeting was attended by the party's national vice presidents and general secretaries, among others. The Prime Minister said in a social media post that organizational meetings are all about new ideas and perspectives aimed at strengthening the party and deepening connect with the people. He said it was a great interaction with fellow party colleagues and the new organizational team. Earlier, BJP National President Nitin Naveen held a meeting with the newly appointed national office bearers. The BJP president said that the BJP team is committed to working with full dedication and devotion for expanding the base of BJP to realize the resolve of Prime Minister Narendra Modi to make India a developed nation. Mr. Nitin Naveen informed that during the meeting, the BJP also passed a resolution regarding the honour and protection of the historical legacy of Vande Mataram. In the resolution, the party has condemned and unequivocally opposed the decision taken by the Congress Working Committee on the 19th of this month to reaffirm its 1937 resolution restricting the singing of Vande Mataram to its first two stanzas at Congress programmes. The party also resolved to uphold the honour, dignity, legacy and national status of the complete Vande Mataram as the national song of India, an immortal symbol of the country's national consciousness and freedom struggle. Union Home Minister Amit Shah held an important meeting with senior Gorkha leaders today in Siliguri, West Bengal. After the meeting, a decision was made to form an intermediary committee headed by former IPS officer Pankaj Singh to solve all the problems permanently in connection with the hills in North Bengal. External Affairs Minister S. Jaishankar has said that India-Bangladesh ties must be based on mutual respect. Speaking at the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi today, he said, for any relationship to work, it has to meet the test of mutual interest. India wants positive, constructive and forward-looking relations with Bangladesh based on mutuality of interests and reciprocity.
3: For any relationship to work, it has to meet the test of mutual interest. It has to work for them, it has to work for us. There has to be fair degree of my recognizing and respecting what is their interest, just as I expect them also to do so. It is when you get that landing point, that common ground, that relationships work smoothly.
2: The External Affairs Minister also described Pakistan as a unique country in the world, as there is no other nation that uses terrorism so systematically and in a sustained manner to attack and put pressure on a neighbor. The United States has imposed 50% tariffs on $20 billion worth of Canadian products. The tariffs came into effect early today. Canada immediately said it would retaliate after a failure of last-minute talks to ease tensions between the two historic allies. The new U.S. tariffs will affect about 5% of Canada's annual exports to the United States. Canadian Prime Minister Mark Carney said Canada would match the tariffs dollar for dollar. The Indian men's hockey team conceded 2 goals in the final quarter despite a flawless first half to lose 1-3 against reigning Olympic champions, the Netherlands, and crashed out of the semi-final race of the ongoing FIH World Cup at Amstelveen, Netherlands today. India needed to win this match at all costs to reach the last four stage, but despite a good start, the team committed mistakes in the final 10 minutes to get knocked out of podium contention. India will now play an inconsequential final second round match against Argentina on Monday. After that, the team will play the 5th-8th place classification matches. Captain Harmanpreet Singh scored the only goal for India in the 52nd minute from a penalty corner. India's Treza Jolly and Gayatri Gopichand have etched their names in history by bagging the bronze medal at the BWF Badminton World Championships. They have become only the second Indian women's doubles pair to win a World Championship medal, following in the footsteps of Jwala Gutta and Ashwini Ponnappa. And that is the end of this news bulletin.

आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
2: हेलो, नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: क्या समाचार है?
1: मेरा समाचार ठीक है।

0: अपना बताइए।
1: हम भी ठीक है।
0: तो क्या हो रहा है
1: और
0: अभी?
1: अभी दोपहरिया का खाना बन रहा है मैम।
0: अच्छा, बच्चे सबके लिए?
1: हाँ
0: हाँ, स्कूल गए हैं सब।
1: जी मैम। आपका खाना पीना हो गया?
0: हाँ, मेरा हो गया है।
1: गाना सुनना है मैम।
0: बता दीजिए।
1: कौन सिंह का गाना है? निधिया के मारल भोला आँखियों ना खोली है।
0: अच्छा, और गाना सुनाना भी है?
1: जी मैम, आप मनोरमा मैम को, सभी जितना सुनते हैं रेडियो रिमझिम परिवार, सभी को सुनाना है मैम।
0: ओके जी, फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत सारे आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: थैंक यू। हाँ जी मैडम जी, आपको गाना सुनना है?
1: जी जी बिल्कुल सुनाऊंगी। नाम बता
0: दीजिएगा।
1: अपना नाम बता दीजिए आप।
0: अरुण कुमार मिश्रा, गोपालगंज से बोल रहा हूँ।
1: अच्छा अच्छा, और कौन सा गाना बोले हैं अभी?
0: नशा शराब में होती से नाचती है बोतल।
1: जी जी, और गाना सुनवाना भी है किसी को?
0: हाँ जी, ये पूरा अपना रेडियो रेंज इनका जितना थोड़ा ग्राउंड है तो सुनाना है, और फैमिली को भी सुनाना है, जितना भी साथ है उनका तो सुनाना है।
1: और आप बताइए, आप ठीक हैं?
0: जी ठीक है जी।
1: ओके, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो हेलो हेलो हेलो।
0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार

0: फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 91.4 FM में।
2: नमस्ते मैम, कैसे हैं?
1: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
2: तो
1: क्या हो रहा है अभी
2: आप ही के पास? कौन सा?
1: अच्छा हाँ, कॉल आया हुआ था किसी का।
2: आज सब बढ़िया है ना?
1: आज सब ठीक है।
2: गाना सुनना है?
1: बता दीजिए। कौन सा
2: गाना?
1: हाँ
2: मेरा रोड़।

0: आज आपकी आवाज में भी गाना सुन ले, आप भी बहुत अच्छा गाती हैं। अच्छा वो दोनों का आवाज सेम लगता है।
1: हाँ सेम लगता है, लेकिन मुझे गाना नहीं आता।
0: अच्छा
1: उनसे भी गाकर जाएंगे।
0: अच्छा यहीं पे हैं।
1: हेलो।
0: हाँ हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल है? वो भी ठीक है। अच्छा लगता है, आवाज बहुत ही अच्छा है, गाना बहुत ही अच्छा गाती है। आप दोनों की आवाज बिल्कुल मिलती हुई है।
1: हम दोनों का आवाज एक ही जैसा है। हाँ। कोई पहचानता भी नहीं है घर को, कोई कहीं
0: पे। अभी मैं कंफ्यूज हो गई।
1: कोई पहचानता नहीं।
0: तो तबीयत कैसी है?
1: ठीक है उनका तबीयत।
0: ठीक है ना।
1: ठीक है, इसलिए तो गा के सुनाई आपको।
0: बढ़िया है, ठीक हो गई। और गाना डेडिकेट है
1: आपको? है मनोरमा मैम को है और दोनों सर है उनको भी है, बाकी सब सभी को है
0: जी। ओके फिर गाना प्ले कर रहे हैं।
1: थैंक यू मैम, सुना लीजिएगा।
0: ओके रेडियो रंजन में कॉल किए इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: जी नमस्कार मैडम जी, मैं सुनने जिला गुना मध्य प्रदेश से।
1: जी जी, कैसे हैं आप?
0: आज मैडम जी आपका रेडियो सुन रहे हैं और बेटे हैं, सोपर ही हैं।
1: बता दीजिए गए नहीं तो पहले अपना उसके बाद उनका। हेलो
0: जी जी,
1: हाँ जी बोलिए।
0: बस बैठे हैं दुकान पर और रेडियो सुन रहे हैं आपका।
1: अच्छा जी, और ठीक है ना? खाना वाना खा लिए?
0: हाँ हो गया खाना माना सब हो गया है।
1: चलिए जी, फिर गाना बता दीजिए मुझे, कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: जी मैडम जी, गाने के बोल हैं, पिक्चर का नाम है आशा।
1: आशा
0: आशा, और उसमें गाने के बोल हैं, तूने मुझे बुलाया शेरा वाली है, मैं आया मेरा वाली है, मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ मैडम जी सावन बाद।
1: अच्छा जी,
0: रक्षाबंधन के बाद जा रहा हूँ इसलिए भजन सुनना चाहता हूँ।
1: अच्छा, और गाना सुनाना भी है?
0: जी, भारती मैम को, सोनी मैम को, मनोरमा मैम को, और गोपाल ओझा जी है, गजराज सिंह लोधी है, जितेंद्र धाकड़ जी है।
1: जी जी बिल्कुल, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4
0: बैंड जी,
1: ये आपको आज बज जाएगा नहीं तो कल बज जाएगा।
0: ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।
1: जी जी बिल्कुल।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911।

0: स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: वालेकुम
0: अस्सलाम।
1: थोड़ा कितना सुन रहा था
0: जी? बिल्कुल सुनाऊंगी, नाम बता दीजिए अपना।
1: हमारा नाम है रफीक अली।
0: जी जी, और कहाँ से हैं आप?
1: हम बोल रहे हैं गोपालगंज पठानपट्टी बजाते हैं।
0: जी, और गाना कौन सा सुनना है आपको?
1: गाना सुनना है साड़ी वाला नहीं है?
0: कौन सा?
1: कमर में साड़ी नहीं है? नहीं, सॉन्ग है जो
0: कमर में दागी भैया।
1: हाँ जी जी।
0: और गाना सुनाना भी है?
1: गाना की गाना सुनाना है, जितने लोग सुन रहे सब लोग रेडियो लगे सब लोग उठाना चाहता
0: है। जी जी बिल्कुल, चलिए गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
6: स्वागत है मैडम।
5: वालेकुम अस्सलाम,
6: क्या खैरियत है?
5: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
6: मेरा भी ठीक है। कितना देर से लगा रही हूँ मैडम।
5: अच्छा,
6: मुझे गाना सुनना है।
5: बता दीजिए कौन सा?
6: आज की रात।
5: अच्छा, आज की रात मजा हुस्न का।
6: हाँ।
5: अच्छा जी, और गाना सुनाना भी है?
6: हाँ, सुनाना भी है। सबसे पहले आपको और उसके बाद से सबकत अली को और तमाम सुनने वाले रेडियो रिमझिम सबको सुनाना है।
5: जी जी बिल्कुल। और तबीयत ठीक है आपकी?
6: हाँ ठीक है
5: जी। तो चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: थैंक यू मैम,
5: वेलकम।
7: आज तक क्षमा पे परवाना मरता था, लेकिन आज परवाने पे ये क्षमा मरने को तैयार है।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में। नमस्ते।
0: हेलो
1: जी।
0: हाँ नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, क्या हाल चाल है?
0: विकास कुमार बोल रहा हूँ, हिमतापुर से।
1: कैसे हैं आप?
0: बढ़िया मैम, आप कैसे हैं?
1: ठीक है।
0: और बताइए, मौसम मौसम कैसा है?
1: मौसम तो अभी सुहाना बना हुआ है गोपालगंज का।
0: अच्छा, सुहाना बना रखा है। इधर तो बहुत बहुत तेज धूप है
1: जी।
0: इधर बहुत धूप है, गर्मी भी बहुत तगड़ा हो रहा है।
1: गर्मी भी तेज है। नहीं तो अभी मतलब इधर फिलहाल थोड़ा ठीक है।
0: इधर में क्या है ना मैडम, वो कंपनी का एरिया है ना, कंपनी स्टैंड इंडर एरिया है ना, इसलिए थोड़ा गर्मी रहती
1: है। तो वहाँ कंपनी के रूम में रहते हैं हम लोग, या फिर मतलब अपना रूम लेके?
0: क्या चीज़?
1: आप लोग वहाँ रहते हैं तो कंपनी के रूम में रहते हैं कि अपना रूम लेके?
0: नहीं, कंपनी से अलग रहते हैं रूम।
1: चलिए तो फिर ठीक है।
0: कंपनी में कौन रहेगा, इतना गर्मी होता है जी, हालत खराब हो जाएगा।
1: तो आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: हमको आज गाना सुनना है तो दिल ऐसा जिसने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। यही वाला?
1: पूरा नहीं गाइए, पूरा नहीं गाइएगा, थोड़ा
0: बढ़िया लग रहा है ना।
1: हाँ।
0: ये पुराने सॉन्ग है।
1: और गाना सुनाना भी है किसी को?
0: सबसे पहले आपको।
1: अच्छा,
0: जितना रेडियो रंजन सुनने वाला है सबको। और सब बढ़िया है ना मैं?
1: हाँ, और सब बढ़िया है।
0: वो जो नंबर दे रहे थे, वो तो नंबर को ऐसे भी ऑडियो कॉल लगाते हैं तो लग रहा है
1: ऑडियो कॉल लगा
0: तो, जो बुधवार को जो नंबर आप दिए थे 2291 वाला है लास्ट में, वो ऑडियो कॉल भी लग रहा है।
1: तो कॉल लग रहा है पर उस पर कोई कॉल उठाएगा नहीं, केवल व्हाट्सएप पे उस पर मैसेज किया जाएगा।
0: अच्छा, मैंने जैसे बोल करके भी मैसेज कर सकते हैं तो गाना सुन लेंगे ना?
1: हाँ, व्हाट्सएप पे बोल कर मैसेज कर लीजिएगा कि मुझको ये गाना सुनना है तो हो जाएगा।
0: अच्छा।
1: हाँ, व्हाट्सएप पे आप बोल के मैसेज डाल दीजिए, हो जाएगा।
0: ओके,
1: गाना सुनते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ding ding bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में। मैडम जी नमस्ते। मैडम जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
6: मैं भी ठीक हूँ।
5: नाश्ता हो गया आपका?
6: जी आपका हो गया। रात समाचार बताए अच्छा बनी न?
5: हाँ हाँ हम ठीक बने, बस
6: रेडियो का परिवार अच्छा बन।
5: सबके कृपा बात
6: अच्छा रहे, कहीं प्रोग्राम अच्छा चलते रहा।
5: तो कौन सा आज गाना सुने के बाद?
6: गाना सुना दी सजनो बैरी भैले हमारा।
5: अच्छा, और गाना सुना हो के बाद?
6: जी सबसे पहले आपको जितना रेडियो मार्गे सुनता है शब्दों सुन सबके साथ।
5: चलिए फिर गाना प्ले करते नहीं सुना चाहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
6: मैडम जी नमस्ते।
5: नमस्ते।

0: हेलो जी नमस्ते, मैं नेपाल बिहारी जी छोटा संघ ग्राम कोणामन सिंह प्रदीप चंपारण बिहार से संजय कुमार साहब बात कर रहे हैं।
1: जी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: इसके लिए दिल से धन्यवाद। अपना सुनाइए अपना और हाल खबर रेडियो रिमझिम संपूर्ण परिवार कैसे हैं, आप कैसी हैं?
1: हम सभी ठीक हैं।
0: चलिए आप पूरी टीम के लिए हमारे ओर से बहुत बहुत शुभकामना जाता है कि एकदम स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, मुस्कुराते रहे, ऐसे ही हम लोग से बात करते रहे, अपना हम लोग फरमाइश बजवाए, आप लोग बजाए, हम लोग मनोरंजन करने के लिए तैयार है, मनोरंजन
1: करते
0: रहे।
1: जी जी बिल्कुल
0: जी जी जी। और सुनिए और पावन महीना तो आप लाइफ जा रहे हैं, आप कैसे, अब कितना एक तुम्हारी अभी बाकी है शायद, तो आप क्या तैयारी कर रही है, आप अभी रखते हैं कि नहीं,
1: मतलब
0: आप तुम्हारी करती है कि नहीं?
1: नहीं अभी तो हम नहीं करते हैं क्योंकि थोड़ा काम ही ज्यादा रहता है तो कर नहीं पाते हैं। और मान लीजिए खोलना है तो फिर करेंगे तो प्यास और भूख तो लग ही जाएगा।
0: जी जी जी जी चलिए दिल से धन्यवाद। चलिए आप नहीं किए तो क्या हो गया, हम भी तो सही ना दीजिए, हम भी तो हम लोग तो है नहीं है, दीदी के लिए है होता है। जी जी ठीक है, उन लोग करेगा, हम लोग को फल भी मिलेगा उनको जी जी और सब विशेष हम लोग तो मालूम चलिए गया कि आप भी ठीक है, हम भी ठीक है। अपना उधर मौसम बता दीजिए थोड़ा।
1: मौसम यहाँ का सुहाना बना हुआ है अभी,
0: मौसम इधर भी है लेकिन धूप है, गर्मी है, तनखा गर्मी है, फिर भी ठीक है। चलिए बरसात के मौसम है, कभी धूप कभी छांव होता ही है। जी तो आज हमारे मनपसंद के गाना आज बजा दीजिए,
1: बता दीजिए।

0: कोई रहता है, ओ हो तुम नजर की सामने। यही संग सुना दिए आज
1: जी जी। और गाना सुनाना भी है।
0: गाना सबसे तो पहले आपको रेडियो रिमझिम संपूर्ण परिवार को और दोस्त में हो गया सिखाने से मामस्ता जी हमारे से उत्तम कुमार जी रामलास पर पत्र सुहाज कृष बगा से अजिन पाया चला बहुत पूर्णतम से नरेश सोनी दीपक दास उदय भंडारे छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से राजेंद्र यादव भारती पंतलाल गौतम उत्तर मऊ बिहार से प्रदेश से कहिए ना कि उत्तर प्रदेश से विशेषकर को हमारे नाम कहने पता नहीं तमाम दोस्त को मोहम्मद फलाल अंसारी है मझोलिया को विशेष करके उनको सुनाते हुए अभी आपसे विदा लेंगे। नमस्कार।
1: नमस्कार। रेडियो रंजन में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029494111। जी हाँ, 80029494111। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: नमस्ते
6: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: हम तो बुझे कि आज खाना नहीं उठेगा।
6: नहीं नहीं उठेगा।
5: और सब बताइए।
6: और सब ठीक है, आप बताइए।
5: मेरा भी ठीक है। खाना ना हो गया है?
6: हाँ खाना हो गया है, खा के ही आई हूँ।
5: चलिए बढ़िया है। अभी तो काम अपना छोड़ कर लगा रहे हैं तो उसको पहला बार में कॉल लग गया।
6: अच्छा चलिए, आज तो बढ़िया है।
5: मतलब आज ज्यादा परेशानी नहीं हो जाए। तो मौसम कैसा है गोपालगंज का?
6: अभी तो मौसम सुहाना बना हुआ है गोपालगंज का।
5: इधर भी वैसा ही है। मेरे को गाना सुना दीजिए। अंकुश राजा की आवाज में सुना दीजिए रक्षाबंधन सॉन्ग।
6: अच्छा, अंकुश राजा की आवाज में रक्षाबंधन का सॉन्ग।
5: वो सॉन्ग बजा दीजिए, बहे तो कबो ना भूला।
6: कौन सा?
5: बहनी तुम तहरों के कबो ना भूला, अंकुश राजा की आवाज में।
6: और गाना सुना
5: होगा पहले तो आपको, उसके बाद कोनी दीदी को, मनोरमा दीदी को, करिश्मा को स्पेशल में। अभी करिश्मा जी मशीन चला रही है, कपड़ा सी रही है।
6: अच्छा,
5: और जितना रेडियो सुन रहे सभी लोग को सुनाना है।
6: ठीक है।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिम 94।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: अरे कौन सा सुबह पर फोन लगाए हैं? अभी लगा रहा है, एक घंटे लगा रहे हैं फोन।
0: अच्छा तो बिजी जा रहा हूँ।
1: आप कांस्टेबल लगाए हैं आज?
0: हाँ।
1: वो गाना सुन रहे हैं मैडम जी, है ना?
0: नाम बता दीजिए।
1: और वो थानेदार फिल्म का
0: शादी
1: आ रहा हूँ, थानेदार फिल्म का जब से वो शादी आ रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ।
0: जी जी, गाना तो सही बता रहे हैं, पर आप अपना नाम भी बता दीजिए।
1: लकड़ी बुजा से बोल रहे हैं मैडम जी, है
0: ना?
1: हमारा नाम है हरिश पटेल, लकड़ी दरगाह से सीवान जिला, ठीक है?
0: और गाना सुनाना भी है।
1: हाँ, पूरा रेडियो रिमझिम जितना लोग सुनते हैं सबको खूबी है
0: ना।
1: आज फर्स्ट बार फोन किए हैं, सौ बार तो कम नहीं लगाए हैं, कॉल किए हैं तब लेकर लगाए आज। एक घंटा लगा रहे हैं, एक घंटे बोल के 10 मिनट लगा रहे हैं, अपने 200 हो गए मोटे मोटी।
0: सब कोई का लगातार कॉल आते रहता है ना, इसीलिए तुरंत
1: मैडम सब गाना बच जाएगा हमारा।
0: ये आपको 5 बजे जो शो चलता है 5 से 7 यही हेलो माय चॉइस का,
1: शाम के?
0: हाँ, शाम को मिल जाएगा आज सुनने को, नहीं तो कल शाम को।
1: शाम को ना?
0: आज शाम को भी मिल सकता है सुनने को, सुन लीजिएगा।
1: ठीक है मैडम, नमस्कार।
0: नमस्कार, रेडियो रिमझिम में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: जी नमस्ते मैम।
5: नमस्ते
6: जी, क्या हमारा हिंदा बोल।
5: कैसे हैं आप?
6: बढ़िया है जी, हम आ रहे हैं मैम
5: जी। अच्छे हैं।
6: अरे सब आए तो पूजा है ना मैम?
5: पूजा है, पूजा
6: का आज। वो क्या बोलते हैं, वो नागपंचमी का जो नई पूजा होता है 2 दिन बाद।
5: हाँ हाँ, सच में
6: वही पूजा। मेरे घर पर भी पूजा हो रहा था, सुबह में मेरी मैडम फोन करी, बोली की आ जाइए मुड़ी खीर खाने के लिए।
5: मेरे यहाँ भी हुआ है।
6: और बताइए क्या हाल चाल है?
5: और सब ठीक है। नहीं, सावन में थोड़ा ज्यादा ही पूजा होता है।
6: जब और जैसे नागपंचमी होगा तैसे वो तो पूजा का हम लोग भी बढ़िया है, एकदम मस्त है, तंदुरुस्त है एकदम। मंगलवार का दिन गाड़ी पकड़ेंगे, यहाँ से चले आएंगे अपने देश में।
5: जी जी आइए। और बताइए, आज गाना कौन सुनना चाहते हैं?
6: गाना तो सुनना है वो नील कमल का राखा बंधन वाला।
5: हाँ।
6: क्या उसको गाना
5: गाड़ी से?
6: गाना तो नहीं आता है लेकिन गाते
5: गाइए ना, अच्छा लगेगा।
6: ये नया सॉन्ग है मैम।
5: हाँ।
6: अभी नया अभी गाना ये लॉन्च हुआ है, नील कमल का है।
5: गा रहे हैं, बोलते हैं कि हम गाते ही नहीं
6: है। नहीं मैम, मैं तो घर पे मैं अरजाम अरजाम गा रहे। वो जो अरजाम है कीर्तन नहीं होता है, हरे राम हरे कृष्ण वाला।
5: हाँ होता है
6: वो सब। हम जाते हैं गाने, वो गाने के लिए जाते हैं अरजाम।
5: अच्छा जी।
6: लेकिन मेरी मम्मी बोलती है कि बेटा ये सब करने से धर्म कर्म नहीं चलेगा बेटा, 2000-3000 रुपए मिलता है तुम्हें 24 घंटा का। हम मम्मी से बोलते हैं कि मम्मी उतना कम है बताओ 24 घंटा में, भगवान को तो भजन हम गा रहे हैं, कौन सा स्टेज पे डांस कर रहे हैं।
5: ये तो सही बात।
6: मम्मी बोलती है कि नहीं बेटा ये मत करो, तुम बेशक दुकान वकान कर लो सब्जी जी का अपना, आटा उटा चलेगा तो आटा उटा में जाना। और बताइए, खाना वाना हो गया है सुबह में?
5: हाँ खाना तो हुआ है।
6: अच्छा, सबसे पहले आपको ये गाना सुनवाना चाहते हैं, ठीक है?
5: जी जी।
6: जितना रेडियो रंजन सुनने वाले हैं सब उड़ता हो। एक मेरे अभिषेक भाई है, वो बनारस के हैं, गाजीपुर का, वो निरहुआ के गाँव का, यूपी का, उत्तर प्रदेश का।
5: जी।
6: वो बोल रहे हैं कि गाना तो बहुत बहुत गाना फेवरेट है फरमाइश ये हो भाई।
5: हाँ।
6: हम बोले राखा बंधन का है ना यार।
5: हाँ इसीलिए। चलिए फिर गाना प्ले करते हैं।
6: ठीक है, ओके मैम।
5: नमस्ते, रेडियो रेंज में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
6: ठीक है, ओके।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपके रेडियो न्यूज़ 90.4
1: में। जी भारती जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: क्या हाल चल रहा है?
0: हमारा हाल चाल तो ठीक बरबो बताइए।
1: हाँ ठीक है बानी, लगातार कॉल हुआ हर लाग गए बैठे। हम दिल्ली से बोलता नहीं तो बढ़िया से नाश्ता पानी कैसे आई है कि ना?
0: हाँ सब पूजा रहा वाला तो जल्दी जल्दी में लेट हो गया तो ना ही कहीं है आज।
1: हाँ देखा था ना कि 11 पहुँच गया, पता ना भारती जी रास्ते में गाड़ी का मौसम कैसा होता है?
0: मौसम तो कभी धूप कभी छाँव और ये हवा भी बहुत
1: कुछ होगा इनका भेजना दी हवा नहीं खेल चलो यहाँ दिल्ली में बहुत उमस हुआ है समझे नहीं
0: उमस पावे तो बारिश कहीं हुई जरूर
1: बादल तो छेलेगा लेकिन बारिश हो जाए तो
0: बारिश तो मैंने उमस बात हो जरूर
1: देखिए उमस वाला जो दिन वचन कार्तिक महीना तक उमस वाला चल गया मौसम ऐसा होकेला धान के खेती के लिए होकेला जब तक उमस ना हो सही से तो धान बढ़िया से अपन फसल जो पकाव ना कर माने फसल के हिसाब से मौसम होकेला तो हर समय के नहीं खे ये अपना हिसाब से जो भी मौसम बा तो आज के गाना बचे समझे
0: नहीं
1: कहा तू खैया हो या बहरा न जाइया। सबसे पहले रउआ के सोनू भाई बानी और जो सवाल बाकी जगह और भी कॉल कर जोड़ी तो नमस्कार फिर हम मिला था नहीं अपने के दोपहरिया में
0: रेडियो रूम से मैं कॉल करनी है खातिर बहुत बहुत धन्यवाद
1: अपने के भी धन्यवाद और दिन शुभ हो।

0: का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान,
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं।

0: बढ़िया
1: है। बारह मैम ये तो आज वो रिपीट नहीं चला मैम।
0: कौन सा?
1: कल वाला रिपीट जो चलता है ना सुबह में,
0: वही तो रिपीट चल रहा है।
1: नहीं नहीं चल रहा है अभी वो वाला हेलो माय चॉइस वाला,
0: वही सेम रिपीट चल रहा है।
1: हम 9 बजे सुन रहे थे तो नहीं चल रहा था,
0: तो थोड़ा 1-2 मिनट इधर उधर हो जाता है, हो गया। वही चल रहा है,
1: बस अलग अलग गाना बज रहा था लेकिन वो रिपीट नहीं चल रहा था, लगता है कुछ दिक्कत हुआ था
0: पता नहीं। लेकिन अभी तो देखी हूँ, आई हूँ, मैं भी सुनी हूँ तो मेरा ही चल रहा है।
1: चलिए तो गाना फरमाइश करते हैं। कितने वक्त है मैम? हम
0: 3 नंबर पे।
1: अच्छा मैम, वो गाना का फरमाइश ये है, गाना है मेरे महबूब कयामत होगी।
0: मेरे महबूब कयामत होगी,
1: हाँ ये बोला।
0: और गाना डेडिकेट है?
1: डेडिकेट है भारत में रहने वाली भारतीय मैम यानी आपको, और सभी आरजे को।
0: करेंगे सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4।
1: धन्यवाद मैम, बाय
0: बाय।
2: है दोस्तों, इश्क का दस्तूर ही कुछ ऐसा, जो इसको जान लेता है ये साला उसी

0: हेलो,
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्ते दीदी,
1: नमस्ते।
0: क्या हाल है?
1: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
0: मेरा भी ठीक है।
1: तो क्या
0: खाना
1: हो?
0: खा कर आए?
1: हाँ
0: पहचान रहे हैं क्या?
1: हाँ हाँ गणेश।
0: 2 दिन से टाइम नहीं मिला तो नहीं जुड़ रहे, कल भी नहीं जुड़े हैं, परसों भी नहीं जुड़े हैं। मेरा फरमाइश था सोमवार के दिन, एक हफ्ता कम्प्लीट हो गया था, तो मंगलवार बुधवार हो गया, 10 दिन हो गए मेरे फरमाइश के लिए। टाइम नहीं मिल रहा है, कल भी टाइम नहीं मिला है, परसों भी टाइम नहीं मिला है।
1: आपका फरमाइश आज ही ना कम्प्लीट।
0: संडे वाला दिन तो स्पेशल है,
1: करिश्मा जी का बुधवार को, आपका मंडे को।
0: तो सोमवार के संडे संडे के दिन जो फरमाइश बजेगा, जितना लोग बजेगा सब लोग का बजेगा, बस टाइम रहना चाहिए। टाइम रहेगा तो बजेगा, नहीं रहेगा तो नहीं बजेगा। तो आपका घर की पूजा हो गया है?
1: नहीं।
0: कब पड़ेगा?
1: होगा शुक्रवार को।
0: अच्छा।

0: हम लोग का तो आज
1: मतलब आज पूजा होता है, लेकिन शुक्रवार को ये माता जी के मंदिर में कढ़ाई चढ़ता है।
0: अच्छा, और सब बताइए।
1: और सब ठीक है, फरमाइश बता दीजिए, आज कौन से गाने की है?
0: आज तो कॉल कर रहे हैं तो आप बिजी, इतना बिजी, अभी 11 बजे से 5 मिनट पहले ही से कॉल लगा रहे थे। पता नहीं कब मोबाइल खुलता है, अभी फोन लगाए तो बिजी बिजी बिजी बता,
1: मोबाइल खुल जाता है।
0: मनोरमा दीदी आई?
1: हाँ वो भी आई है।
0: अच्छा, कल भी आपके पास थी क्या मनोरमा दीदी?
1: नहीं।
0: तो अभी आती है सीखने के लिए आपके पास?
1: नहीं, कभी कभी एक साथ बैठते हैं, अच्छा लगता है।
0: अच्छा, मतलब सर बोलते हैं कि चल आज सीखने के लिए क्या?
1: क्या गाना बता दीजिए मुझे।
0: अब आप ही बताइए, फोन लगाए हाँ, मगर इसमें झगड़ा करेगी दीदी, मैं बतियाएंगे आप बताइए। इतना देर से तो परेशानी हम झेल रहे हैं, बोले कि नहीं दीदी हम बतियाएंगे।
1: कोई बात नहीं, वो आप कर दीजिए या वो कर दे, बात देखिए, फरमाइश सुन लीजिएगा लोग की।
0: तो मेरे गाना बजाना है नीलकमल सिंह की आवाज में, देव भाई सॉन्ग।
1: कौन सा गाना? गाना बता दीजिए।
0: जब साथ के देख के ना रहे तो प्यार का है कोई।
1: और
0: सबसे पहले आपको मनोरमा दीदी को, सोनी दीदी को, करिश्मा को, पूरा रेडियो झूल कर रहेंगे। नहीं, नीलकमल सिंह की आवाज में ये गाना।
1: ठीक है फिर,
0: ठीक है,
1: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
0: नमस्ते
1: नमस्ते।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Presented by Lupa।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।